103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। हमारी सुनने वाली सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा

103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं, आइए सुने चिंतन।

मनुष्य का व्यवहार किसी दर्पण से कम नहीं होता। इसमें उसका अहंकार और संस्कार दोनों ही दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार आईना हमें हमारा वास्तविक स्वरूप दिखाता है, उसी प्रकार हमारे द्वारा दूसरों के साथ किए जाने वाला व्यवहार भी हमारी असली पहचान सामने लाकर रख देता है। इसलिए कोशिश करें अपने व्यवहार में विनम्रता, दया और करुणा का भाव रखने की, क्योंकि ये तीनों ही आपके संस्कारों की नींव दर्शाते हैं।

चिंतन के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आज की वंदना कार्यक्रम की शुरुआत होगी सभी मांगलिक कार्यों को पूर्ण करने वाले गजानन गणपति जी की इस वंदना के साथ।

श्रोता, इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब आप सुनेंगे रामचरितमानस से एक और भक्तिमय प्रस्तुति मानस गान।

तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचकर भरत पुलकित हैं। हृदय में श्री राम सीता और लक्ष्मण के लिए उमड़ते स्नेह से आंखों में आंसू उमड़ आए हैं। निर्दोष भाव से वे भरद्वाज जी के सम्मुख अपने उद्गार

0: फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 6:05 पर, कार्यक्रम रहेगा सुरमई सांझ, और 6:30 पर सुना ना भूलिए मौजा ग्राएं दिया कार्यक्रम। 7:10 पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे सुनेगा विविध गीत संगीत का कार्यक्रम सबरस, और 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कुछ देशभक्ति गीत। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे एक ही कलाकार कार्यक्रम, जिसमें आज आपसे बात होगी संगीतकार श्रीवास्तव की। जी हाँ, आदेश श्रीवास्तव के बारे में आज आपसे बात होगी और सुनवाएंगे कुछ इनके गीत। गूंज पहाड़ों की कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर, और 10 बजे सुनिएगा लाइव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे। समाचार हमारे केंद्र से सुने जा सकते हैं रात्रि 8:45 पर, और रात 9 बजे आप सुनेंगे News@9। सभा के अंत में रात्रि 11 बजे हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुने जा सकते हैं। श्रोताओ, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से। हमारी आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में, और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। भारत फ्रांस मैत्री संबंधान प्रशंसयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस नगरे स्वामीनारायण मंदिरस्य उद्घाटनम अकरोत्। तेन राष्ट्रपति मैक्रों वर्यस्य योगदानम संस्मृत्य प्रोक्तम यत एआई प्रौद्योगिक्याः अथ जलवायु संकट निवारणस्य दिशि उभौ देशौ जागतिक नेतृत्वं वहतः। मंदिर निर्माणम सांस्कृतिक सेतुरूपेण कार्यं करिष्यति इति तेन प्रतिपादितम्।
2: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन भ्रामक वार्तानां खंडनं कृतम्। यासु इसरो संस्थायाः निजीकरणस्य उत तस्याः भूमिकायाः न्यूनीकरणस्य संभावना व्यक्ता आसीत्। सामाजिक माध्यमेषु प्रसारिते एकस्मिन् संदेशे इसरो संस्थया स्पष्टीकृतं यत् न तु अस्याः निजीकरणं करिष्यते न च अस्याः महत्त्वं न्यूनं भविष्यति। संस्थया उक्तं यत् अंतरिक्षक्षेत्रे निजी क्षेत्रस्य सहभागितायाः मुख्य उद्देश्यम् इसरो संस्थां भारतस्य भावी अंतरिक्ष कार्यक्रमस्य अग्रिम जनाः अनुसंधानेषु अधिक प्रभावी रूपेण ध्यानं केन्द्रीकर्तुं सक्षमं करणम् अस्ति। यदा च उद्योग क्षेत्रं परिपक्व प्रौद्योगिकीनां क्षमतानां च विस्तारं करिष्यति। दिल्ली राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा रेखा गुप्ता इत्यनया नवदिल्ल्याः सत्यनिकेतन क्षेत्रे भवन पतनस्य घटनायाः मजिस्ट्रियल इति दण्डाधिकारी अनुसंधानस्य आदेशः प्रदत्तः, तथा च भवनस्य स्वामिनः विरुद्धं FIR इति प्राथमिकी पञ्जीकर्तुम्

0: मंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बताया गया है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई होगी। इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। ये इमारत पेइंग गेस्ट आवास के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कल दोपहर करीब 1:30 बजे इमारत ढहने के समय उसके बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल दुबई पहुंचे। वे संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। वे दुबई में आयोजित एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश को निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा। भारत ने AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC Under-20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of the Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said from technology, AI and defence to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. He said both sides also celebrating this year as the India-France Year of Innovation.
2: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं और भारत का विचार कहता है समानम मनः सहचित्तमेषां अर्थात हमारे मन समान हो हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
1: Delhi Chief Minister Rekha Gupta has ordered a ministerial inquiry into the building collapse incident in Satyaniketan area of New Delhi and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। फ्रिक्वेंसी वही आप सभी की जानी पहचानी सी, जहां आपको इंटरटेन मिलता है एकदम नॉनस्टॉप। तो चलिए आप भी तैयार हो जाइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ, क्योंकि आगाज हो चुका है आज के सुबह सुहानी प्रोग्राम का, जिसे लेकर आ गई है आपकी अपनी रेडियो दोस्त नीमा शर्मा। तो चलिए भी रोजाना की तरह शुरुआत होगी आज भी इस ब्यूटीफुल थॉट के साथ। दोस्तों, ईश्वर ने हमें ये खूबसूरत सा जीवन दिया है, क्या आपने कभी इसके लिए उनका शुक्राना अदा किया है? नहीं तो कोई बात नहीं, आप हर रोज सुबह उठते ही आंखें बंद करके शुक्राना अदा करें जीवन में मिलने वाली हर छोटी बड़ी खुशियों के लिए। आभार व्यक्त करें अपने माता पिता का, जो आपको एक बेहतर जीवन देने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। और हाँ, शुक्रिया अदा करें ऐसे हर शख्स का जिसने आपको जीवन में कोई ना कोई सबक सिखा दिया हो। सबके प्रति आभार व्यक्त करने की आपकी ये आदत आपको एक बेहतर इंसान तो बनाती ही है, साथ ही आपके मन में किसी के प्रति कोई बोझ भी नहीं रहता। और हाँ, एक और बात, जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं ना, तो वो ईश्वर के प्रति आपका सबसे बड़ा शुक्राना होता है। तो चलिए भाई, जीवन में यूं ही सभी का शुक्रिया अदा करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और साथ ही सुनते रहिए हमारे साथ सुबह सुहानी कार्यक्रम।

जी हाँ, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है सुबह के 7:23 और 5 सेकंड, और इस वक्त आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुबह सुहाने। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आज के दिन मनाए जा रहे कुछ खास दिवसों की। आपको बता दें कि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, जिसे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाने की पहल की गई। जी हाँ श्रोताओं, आपको बता दें कि आतंकवाद, संगठित अपराध, साइबर क्राइम और नशीली दवाओं की तस्करी जैसे सीमा पार के खतरे से निपटने के लिए ये वैश्विक स्तर पर सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल और सहयोग को मजबूत बनाता है। ये दिन दुनिया भर को पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के योगदान को सम्मानित करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुफिया एजेंसियों और विशेषज्ञता साझा करने पर भी जोर देता है। और कार्यक्रम में और भी आपसे बातें होने वाली है, खास दिवस और भी है आपसे शेयर करने के लिए, लेकिन उससे पहले आप सभी को सुनवा रहे हैं ये गीत। आप एंजॉय करते रहिए, दिल से यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी धर्मशाला पर। जी हाँ, सुनते रहिए और साथ ही साथ मुस्कुराते रहिए।

जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि आज हम कौन कौन से खास दिवस मना रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज एक और खास दिन है जिसे हम मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज के रूप में, जो हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि वायु प्रदूषण विश्व स्तर पर सबसे बड़े पर्यावरणीय स्वास्थ्य जोखिमों में से एक है, जिससे निपटने के लिए वैश्विक सहयोग और निवेश की आवश्यकता रहती है। श्रोता, वायु प्रदूषण न केवल मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि जलवायु, आर्थिक विकास और हमारी प्राकृतिक पर्यावरण पर भी ये बुरा प्रभाव डालते हैं। जरा सोचिए, हरी भरी वादियों, खुला नीला आसमान भला किसे पसंद नहीं, पर यह खूबसूरत प्रकृति तभी हमें सुख देती है जब हम इसका ख्याल रखते हैं। दोस्तों, हम सभी कभी ना कभी थोड़ा थक कर उस नीले आसमान की तरफ देखकर थोड़ा सुकून महसूस करते हैं, पर कभी ये नहीं सोचा हम सभी ने कि उस नीले आकाश को भी स्वच्छ वायु की ज़रूरत होती है। वो भी तभी साफ दिखाई देगा जब फिजाओं में स्वच्छ हवाएं चलेगी, और ये पूरी तरह से हम सभी पर ही निर्भर रहेगा कि हम अपनी प्रकृति, अपने आसपास को पॉल्यूशन फ्री किस तरह से रख पाएंगे। चलिए, आप सभी भी इस पर थोड़ा सा

श्रोता, इसी के साथ आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर।

0: सुबह सुहानी
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:40 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ ब्याग।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ भ्याग। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सरिता बुशहरी की आवाज में ये लोकगीत।

0: टाइगर की गारंटी।
1: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं ईमेल बेस्ड प्रोग्राम गीतांजलि। और अगली मेल जो हमें मिली है वो हमें कर रहे हैं मेरे हमदम मेरे दोस्त। फिल्म से कोई सभी गीत सुनने के लिए मेल किया है दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, और इनके साथ ही है हेमलता और सी आर कुलकर्णी। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से हमें मेल किया है रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, और इनके साथ ही है प्रियंका मन्नत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल। ये सुनना चाहते हैं हमारी पसंद से कोई सा भी गीत, और किसी भी गीत में हमारा नाम शामिल कर

0: संवाद। हमें आज के कार्यक्रमों के लिए आपसे प्रतिक्रिया की आशा रहेगी। हमारा टोल फ्री नंबर है 8800-440-5559 और साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमें संदेश भेज सकते हैं। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। जी हां, दोपहर के 12 बज चुके हैं और यहां पर हम लेकर आ गए हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। रोजाना की तरह लेकर हाजिर हो गए हैं हम आप सभी का मनोरंजन करने के लिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आज के सैनिकों के लिए कार्यक्रम की शुरुआत होगी शेरशाह फिल्म के इस गीत के साथ।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सैनिक भाइयों कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दो पत्ती से। इस गीत को गाया है सचेत परंपरा और कौसर मुनीर ने।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सैनिकों के लिए कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कलंक फिल्म से। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने, संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट।
1: सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनिए गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म से।

सैनीवायु कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सैयारा फिल्म से विशाल मिश्रा और हंसिका पारीक की आवाजों में ये गीत।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनो सखी।

कार्यक्रम सुनो सखी लेकर हाजिर हो गई है आपकी अपनी दोस्त सुमन। कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते। सखियों, आज के कार्यक्रम में हम करेंगे आपके साथ ढेर सारी बातें और सुनवाएंगे आपको प्यारे प्यारे गीत। और गीत सुनवाने से पहले आपको बता दें कि आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे हिमाचली संस्कृति के बारे में। लोक परंपराएं ही हमारी पहचान है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल है, उन सभी बातों को, जानकारियों को आप तक पहुंचाएंगे। और सखियों, हमारे रीति रिवाजों की बात करें तो हमारे रीति रिवाज, भाषा, खान पान, वेशभूषा और त्यौहार हमें दुनिया में एक अलग और अनूठी पहचान देते हैं। हमारी संस्कृति हमारी पहचान का अभिन्न अंग माना गया है। यही मान्यता मूल्य, रीति रिवाजों, व्यवहार और कलाकृतियों का समूह है, जो किसी समूह या समाज की विशेषता भी बताता है। ये हमारे विचारों, व्यवहार और कार्यों को एक अनूठे तरीके से आकार भी देता है और साथ ही साथ हमें अपनेपन की भावना से भी जोड़ता है। एक अवसर हमें मिलता है हर जगह इकट्ठे होने का। जैसे रीति रिवाजों को जब हम मनाते हैं तो सभी इकट्ठे होते हैं और सभी को पता चलता है कि किस तरह के रीति रिवाज है, और ये रीति रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी चलते ही रहते हैं। सखी, अगर लोक परंपराओं की बात करें तो हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत और पहचान की रीढ़ है। ये परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से या प्रथाओं के माध्यम से पहुँचती रहती हैं। लोकगीतों की सखियों हम बात कर रहे हैं तो हर क्षेत्र का अपना संगीत होता है जो वहाँ के जीवन को दर्शाता है। संस्कार गीत बच्चों के जन्म, शादी विवाह, मुंडन जैसे अवसर पर गाए जाते हैं, और बदलते मौसम के स्वागत के गीत जैसे कजरी और होली के समय फाग, लोक नृत्य ये खुशी और उत्सवों को प्रकट करने का सबसे सुंदर माध्यम है। भारत के हर राज्य की अपनी अनूठी नृत्य शैली भी है, जैसे पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा, गुजरात का गरबा डांडिया, राजस्थान का घूमर कोलबेलिया और असम का बिहू, उड़ीसा का छऊ और छत्तीसगढ़ का पंथ नृत्य होता है। तो हर जगह का अपना ही जो है लोक गीत और संगीत नृत्य होते हैं। तो सखियों, कार्यक्रम में हम लोक कथाओं की भी बात करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस पहले प्यारे से गीत के साथ। तो आप इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोता सखी, इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो कार्यक्रम में हम हिमाचली संस्कृति की बात कर रहे थे, साथ ही साथ थोड़ा सा अगर हम लोक कथाओं की ओर जाएं तो ये कहानियाँ मनोरंजन के साथ साथ जीवन के बड़े सबक, नैतिक शिक्षा सिखाती हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ जानवरों के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान देती हैं और कहावतें और मुहावरों की अगर हम बात करें तो समाज का सदियों पुराना अनुभव जो छोटी छोटी बातों में सिमटा होता है। लोक उत्सव हमारे हिमाचल के त्यौहार प्रकृति और समाज के प्रति आभार जताते हैं। कटाई के त्यौहार पोंगल, लोहड़ी, मकर संक्रांति और ओणम जो नई फसल आने की खुशी में मनाए जाते हैं, ये हमें हमारी जड़ों से जोड़कर रखते हैं। और आधुनिक समय में भले ही तकनीक बढ़ गई है, लेकिन जीवन के असली रंग, भाईचारा और प्रकृति से जुड़ाव आज भी हमारी लोक परंपरा में सुरक्षित है। तो सखियों, ये तो थी हमारी हिमाचली संस्कृति की बात। अब हम कार्यक्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस के बारे में, पुलिस सहयोग दिवस की हम बात करेंगे, जिसे हम यानी आज 7 सितंबर को मना रहे हैं। ये दिवस पहली बार 1923 में मनाया गया था। और हाँ, ये दिन वैश्विक सुरक्षा में विश्व के कानून परिवर्तन समुदाय के महत्वपूर्ण कार्य को मान्यता देता है। इसे 16 दिसंबर 2022 को अपनाया गया था और पुलिस सहयोग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव में से नामित किया गया था। सखियों, ये दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वैश्विक मंच पर संसाधनों और विशेषताओं को साझा करने पर प्रकाश डालता है और साथ ही साथ अपराध और अन्य अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए सीमाओं के पार संसाधनों, खुफिया जानकारी और विशेषज्ञता को साझा करने के महत्व की भी याद दिलाता है। साथ ही साथ सखी, ये दिन पुलिस की निगरानी और जवाबदेही के लिए एक ढांचा स्थापित करने हेतु निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर जोर देता है। तो सखियो, ये तो थी पुलिस दिवस की बात। बहुत सारी बातें और जानकारियां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब उसमें थोड़ी सी हम बात करेंगे नीले आसमां के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे हर साल हम आज के दिन मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 सितंबर यानी आज के दिन वायु गुणवत्ता में सुधार और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मजबूत करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य विषय हवा की दौड़, हर सांस का मतलब है। और साथ ही साथ वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के सबसे बड़े खतरे और वैश्विक स्तर पर मृत्यु और बीमारियों के मुख्य मुद्दों में से एक है। अगर हवा सही होगी तो कहीं ना कहीं हम बीमारियों से बचे रह सकती हैं, और हवा अशुद्ध होगी तो बहुत सारी बीमारियों से सखियों हम घिर जाएंगे। इसलिए हवा का शुद्ध होना बेहद ज़रूरी है। अपनी बातों और जानकारियों के साथ साथ हम आप तक पहुंचा रहे हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सखे इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और घड़ी की सुइयां जो है हमें बता रही हैं कि अब कार्यक्रम में समय हो गया है रसोई में जाने का। बहुत सारी सखियां रसोई में पहुंच चुकी होंगी क्योंकि घर परिवार की रसोई की जिम्मेदारी होती है हमारी बहनों के हाथ में। तो सखियों, बहुत सारे पकवान हम बनाती हैं और अगर मीठे की बात की जाए तो बहुत सारा मीठा खाने को मन करता है खाना खाने के बाद। और बहुत सारे अगर हलवों की बात की जाए तो हलवे तरह तरह के बनाए जाते हैं, जैसे कि मूंग दाल का हलवा, सूजी का हलवा, गाजर का हलवा। लेकिन आज इन सभी हलवों से अलग हलवा आज हम बना रही हैं, सेब का। बहुत सारे बढ़िया से स्वादिष्ट मीठे मीठे सेब आजकल मार्केट में आ गए हैं। तो सेब खाने में तो वैसे मीठा होता है, इसका हलवा बनाया जाता है तब भी मीठा होता है, लेकिन स्वाद में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं मीठा सा सेब का हलवा। हलवा बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मार्केट से लाने हैं सेब, उन्हें अच्छे से धोना है, उनका छिलका उतारना है और बीज से जो बीज निकलते हैं उसकी भी कटिंग करनी है। और उसके बाद क्या करना है सखी, उसके बाद करना है सेब को कद्दूकस। कद्दूकस करने के बाद थोड़ा सा घी कढ़ाई में डालना है। देसी घी अगर आप डाल लें तो उसका स्वाद दोगुना और बढ़ जाएगा। अब क्या करना है, उसमें काजू भून लें और उन्हें निकाल लें। अब सेब जो हमने कस करके रखा है उसे धीमी आंच पर भून लें, क्योंकि सेब में थोड़ा सा पानी होता है और उसे थोड़ा ड्राई होने में सूखने में समय लग जाता है। सूखने के बाद आपने क्या करना है, सेब के बीच में डालनी है चीनी। चीनी को भी मिलाना है क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है। अच्छे से भूनने के बाद जब आपको लगे कि आपका जो ये सेब है वो सूख गया है तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा मीठा चख भी सकती हैं, क्योंकि आजकल हमारे बहुत सारे सखियां या बहुत सारे श्रोता जो हैं डायबिटिक हैं तो मीठा कम खाते हैं, इसलिए जिनको शुगर है उनके लिए आप वैसे भी निकाल सकती हैं बिना मीठा डाले, क्योंकि सेब की अपनी मिठास होती है। और जो मीठा खा सकते हैं उनके लिए हमें मीठा भी डालना है और मीठे के बाद थोड़ा सा कलर डाल सकती हैं जिससे कि आपके हलवे का रंग जो है चेंज हो जाए। उसके बाद आपने क्या डालना है, इलायची पाउडर डालना है। इलायची पाउडर डालने के बाद आपने जो काजू भून के रखे हैं काजू डाल सकती हैं, बादाम डाल सकती हैं, किशमिश डाल सकती हैं, गरी डाल सकती हैं, जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल है, जो भी ड्राई फ्रूट आपके घर में है उसे आप हलवे में डाल लें और उसे बढ़िया से कटोरी में सजाएं। और सजाने के बाद तो मुझे नहीं लगता है सखियों कि ज़्यादा सोचना चाहिए, खाना खाने के बाद जल्दी से उसे सर्व करें, खाएं और खूब इंजॉय करें। और साथ ही साथ इसे बनाने में ज़्यादा समय तो नहीं लगा, मुझे भी आपसे बातचीत करते समय नहीं लगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको खाने में भी समय लगेगा, क्योंकि पकाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और जब खाने की बारी आती है तो 2 मिनट में हम खा पी के फ्री हो जाते हैं। होता है ना सखियो, इसी तरह से हम सभी के साथ खाना बनाने में घंटों लग जाते हैं लेकिन खाने में मिनट भी नहीं लगता है। तो सखियो, खैर कोई भी चीज़ खानी हो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करने पड़ती है और जब मेहनत हम करते हैं तो मेहनत रंग लाती है और स्वाद भी दोगुना बढ़ जाता है। बनाते समय थोड़ा प्यार से बनाएं, जब प्यार से बनाएंगी तो खाने का मज़ा दोगुना होता है और साथ ही साथ हमारा पकवान जो होता है, हमारा व्यंजन जो होता है वो भी बड़ा स्वादिष्ट और लजीज बनता है। लजीज खाने की अपनी ही बातचीत होती है, खुद भी खाएं अपनों को भी खिलाएं, एक नई चीज़ है ट्राई करें, नई चीज़ को ट्राई करना अच्छा लगता है। और हमें से बहुत सारी सखियां ऐसी हैं जो नए नए पकवान बनाना और खाना चाहती हैं। देसी खान पान के साथ कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और आप तक पहुंचाते हैं बेवफा सनम फिल्म का ये प्यारा सा गीत। एंजॉय करते हैं इस गीत को।

सखी इस प्यारे से एक गीत के साथ अनुमति दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और तकनीकी सहयोग दिया है अंकित धीमान ने। प्यारी सखी नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सकी एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर दोपहर का एक
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस परिषद में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वडोदरा में प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुरक्षा उपायों और जारी बचाव अभियान की समीक्षा करने के लिए नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
2: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा।
2: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
1: इस बीच भवन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार ए मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा और कई अन्य नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि सोन नदी के जलस्तर में कमी से कुछ राहत मिली है। सोन नदी पटना के पास गंगा में मिलती है। इसमें पानी कम होने से दीघा तथा गांधी घाट पर गंगा के जलस्तर का दबाव कम हुआ है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। उधर मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट है। रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवियर बिटल की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बिटल की ये यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 485 अंक गिरकर 76,000 पर और निफ्टी 145 अंक गिरकर 23,753 पर कारोबार कर रहा था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की आज शाही सवारी का आयोजन हो रहा है। अंतिम शाही सवारी में भगवान महाकाल के 7 अलग अलग रूपों के दर्शन होंगे। सवारी शाम 4 बजे मंदिर से शुरू होगी और महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा और रामानुज कोट होते हुए रामघाट पहुंचेगी। आकाशवाणी उज्जैन दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक इसका लगातार प्रसारण करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Home Minister Amit Shah is chairing the 28th meeting of the Western Zonal Council in Panaji today. Chief ministers and senior ministers of Goa, Gujarat and Maharashtra, along with representatives of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, are participating in the meeting. The council provides a structured platform to discuss issues affecting two or more states or the centre and states together and strengthen mutual cooperation. Matters requiring coordinated action and those remaining unresolved at the official level could be taken up for consideration. Later, Amit Shah will present the President's police colour to Goa Police. The Enforcement Directorate ED has conducted searches at 7 premises in Kolkata, Delhi and Ranchi in connection with a case involving Akhbar-e-Mashriq Private Limited, an Urdu daily newspaper, and its director and TMC MP, Nadeemul Haq. ED has recorded an enforcement case information report on the basis of an FIR registered by Bidhan Nagar Police Commissionerate. The investigation agency said the case relates to allegations concerning the publication and dissemination of material allegedly promoting communal disharmony. It said the case also contains allegations regarding illegal transactions, unaccounted cash transactions and funding from suspicious sources. Delhi Chief Minister Rekha Gupta, along with Delhi Minister Manjinder Singh Sirsa, visited the site of the building collapse and took stock of the situation in the Satyaniketan area of New Delhi this morning. Talking to reporters, Ms. Gupta stated that the government is in touch with the parents of the affected students.
4: Around 80% of the debris has been removed. Only debris equivalent to the basement levels remain. So far, 12 people have been found, of whom 6 are dead and 6 are in stable condition. We are in touch with the parents of all of them and are making every possible effort to ensure that they do not face any difficulties. Action will be taken against the owner of the building. All dangerous buildings in the surrounding area will also be identified and demolished.
3: Manjinder Singh Sirsa said the National Disaster Response Force team is continuously engaged in the operation. Mr. Singh said the Chief Minister has directed the Commissioner and the Chief Secretary to immediately suspend all officials responsible for this matter and to take strict action. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Luxembourg, Xavier Bettel, in the national capital today. In a social media post, Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said the visit provides an opportunity to further strengthen the multifaceted relations between India and Luxembourg. Mr. Bettel arrived in New Delhi for an official visit earlier today. The Indian Space Research Organization, ISRO, has issued a clarification on reports circulating in the media regarding speculations and misinformation that there is an attempt to privatize ISRO or reduce its role. In a social media post, ISRO said it will neither be privatized nor will its importance be diminished. It added that participation of the private sector in space is aimed at enabling ISRO to focus even more strongly on the next generation of India's space program while industry scales up mature technologies and capabilities. The United States, South Korea and Japan today began a 5-day joint military exercise, Freedom Edge, in international waters east and south of South Korea's Jeju Island. The exercise is proceeding on schedule even as key Seoul Washington drills were recently scaled back upon U.S. President Donald Trump's order. South Korea's Joint Chiefs of Staff said the annual defensive exercise will focus on strengthening the three countries' operational and joint response capabilities across maritime, air and cyber domains. The drills are aimed at countering North Korean nuclear and missile threats and maintaining regional stability. The fourth edition of Freedom Edge is being held as scheduled despite the recent scaling back of the U.S.-South Korea Ulchi Freedom Shield exercise following an order from U.S. President Donald Trump. Benchmark domestic equity indices were trading in negative zone during the afternoon session today. The Sensex declined 485 points to 76,030, while the Nifty fell 145 points to 23,753 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जो शमा की तरह रोशनी बनकर आया, तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। फिल्म अलबेला का ये गीत आपने सुना और हमने आपसे पूछा था कि कलाकार कौन से हैं, तो आपको ये बताना है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, दिया ही बहुत रोशनी के लिए। दिया सिर्फ रोशनी नहीं करता बल्कि चारों ओर के अंधकार को दूर कर देता है। इसी प्रकार इल्म या ज्ञान का दिया इंसान की अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है, उसके विचारों को नई दिशा देता है जिससे वो अपना और समाज का विकास कर पाता है। ज्ञान का दीपक अनश्वर होता है, खूब तेज इल्म जिसे कोई चोर भी ना ले सके। कोई अगर आपने अपने लिखे हुए शेर शमा पर लिखे हैं तो आप हमें ज़रूर भेज सकते हैं, और कोई गीत अगर शमा पर लिखा है तो वो भी आप भेज सकते हैं। वैसे लाइट्स तो सभी को अच्छी लगती है, और ख़ासकर तब जब अंधेरों में जलती है। लैंप, झूमर, लालटेन, दिए, मोमबत्ती, यानी तमाम जो शामें होती हैं वो इससे जगमगाती हैं। ऐसे बहुत सारे गीत भी हैं श्रोताओं जो इसी तरह के सिचुएशन में फिल्माए गए हैं। आपको इनमें से कोई गीत जो पसंद हो आप बता सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, कभी देखा है शमा को गौर से जलते हुए, वो परवाने की चाह में अपने को मिटा देती है और उफ तक नहीं करती। प्रेम की सबसे गहरी भाषा है शमा। किसी से गहरा प्रेम हो जाए तो उसे पाने की जिद कभी मत करना, बस चुपचाप किसी जलती शमा के पास बैठना। जो कला जो हम में से हर एक को आनी चाहिए वो है शमा का शुक्रिया कहने का। वो कैसे अपने को जलाकर तुम्हारी शाम और रात रोशन करती है। शमा खुद जलती है और हमें प्रेम करना सिखाकर हमारी आत्मा का एक ज़रूरी हिस्सा बन जाती है। शमा ही तो सृजन का मूल स्रोत भी है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि शाम ढलते ही घरों की दीवारों पर रोशनी के लिए लालटेन या चिमनी जलाकर उजियारा किया जाता रहा। ये दौर तो नहीं देखा पर जब इन्वर्टर नहीं आया था तब बरसात के मौसम में आंधी तूफान से बिजली की आपूर्ति बंद होने पर 2-3 दिन तक चिमनी की रोशनी में ही रहे। श्रोताओ, ऐसा तो होता है, और फिल्मों में बहुत सारी जगहें ऐसी भी दिखाई गई हैं जब बैलगाड़ी जाती है और उस पर लालटेन की रोशनी होती है। ऐसा भी कोई गीत, कोई सीन आपको याद आ रहा हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं।

इससे पहले जो अलबेला का गीत, फिल्म अलबेला का गीत हमने आपको सुनाया, भगवान दादा और गीता बाली पर फिल्माया गया, यह हमारे एक श्रोता ने लिखा है और ये गीत था पुनर्मिलन फिल्म से अमिता और जगदीप पर फिल्माया गया। इंदिवर की रचना थी, सी अर्जुन की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे मामू की बारात बैलगाड़ी में गई थी तो बहुत मज़ा आया था जब मैं छोटी थी। यानी कि बैलगाड़ी में अगर कोई रास्ता ऐसा होता है श्रोताओं, तो उसमें ज़रूर रोशन होती है शमा, किसी लालटेन के तौर पर या चिमनी के तौर पर। एक और श्रोता ने लिखा है कि शमा परवाना, दीपक पतंगा और ढलती हुई रात, इनका रिश्ता बिना शर्त मोहब्बत, त्याग, समर्पण और बलिदान का प्रतीक है। इस गहरे और रूहानी रिश्ते ने सभी को आकर्षित किया है। ये कोई साधारण जलना नहीं है, ये तो आत्मा का परमात्मा में विलीन होना है। और इन्होंने आगे ये लिखा है कि लौ दीपक की जलती है राह दिखाने के लिए, परवाना मचल जाता है खुद को मिटाने के लिए। जी हाँ, रिश्तों में भी ठीक ऐसा ही होता है कि रिश्तों में आजकल समर्पण कम देखने को आता है। तो इस बारे में भी अगर आपको कुछ लिखना है तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। और हमने आपसे पूछा था कि जो पढ़ाई जब हम कभी करते थे तो शमा की रोशनी में अक्सर पढ़ाई की जाती थी, ऐसा कुछ अगर आपको याद है तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि शमा जलती रही अपनी रोशनी में, परवाना मिटता रहा उसकी चाहत में। इश्क भी कितना अजीब है, जिसे पाना मुमकिन नहीं, उसी पर दिल सबसे ज़्यादा आता है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की जो इबारत है, शमा केवल रोशनी का प्रतीक नहीं बल्कि त्याग, प्रेम, समर्पण और उम्मीद की मिसाल है। शमा की लौ छोटी होती है लेकिन उसका उजाला बड़ा होता है, दूर तक प्रकाश फैलता है। इंसान कभी अगर अपने भीतर की अच्छाई, प्रेम और संवेदना की लौ जलाए रखे तो किसी के जीवन का अंधेरा कम कर सकता है। शायद इसीलिए शमा हमेशा से उम्मीद, प्रेम और त्याग का खूबसूरत प्रतीक रही है। जी हाँ, ये बहुत ही सटीक बात है श्रोताओं, कि हृदय में हमेशा, दिल में एक शम्मा जलती रहनी चाहिए। ये दो अभिनेत्री कौन हैं और ये किन के बारे में बात कर रही हैं?

साधना और अमिता पर फिल्माया गया ये गीत था मेरे महबूब फिल्म का, शकील बदायूं ने का लिखा। एक श्रोता ने लिखा है, बैलगाड़ी जाती हुई और लालटेन जलती हुई देखी गई, याद कीजिए फिल्म तीसरी कसम हीरामन हीराबाई को लेकर फरबीजगंज के मेले बैलगाड़ी से जा रहा है। राज कपूर और वैजयंतीमाला कलाकार थे। जी हाँ, आपने देखी होगी शायद ये फिल्म और बड़ी ही खूबसूरत, बड़ा ही खूबसूरत इसका पिक्चराइजेशन भी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि बिजली और आधुनिक स्ट्रीट लाइट के आविष्कार से पहले सड़कों शहरों में कोयला गैस से जलने वाले लैंप पोस्ट का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता था। शाम को इन दीपों या लैंपों को जलाने और बुझाने के लिए विशेष कर्मचारियों या चौकीदारों को रखा जाता था। कई जगह नागरिकों के लिए ये नियम था कि वे अपने घरों की खिड़कियों के पास रोशनी का प्रबंध कर दें। बचपन में हमने भी देखा है, शाम होते ही केरोसिन के लालटेन को गोईठा यानी उपले के राख से साफ करके फिर उसे मुलायम कपड़े से पोंछकर लालटेन जलाकर घर के दरवाजे दलान में रख दिया जाता था, जिससे सड़क गलियां जो है सभी तरफ

आया सावन झूम के इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, धर्मेंद्र पर फिल्माया गया। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह होती है तो रोती है शमा महफिल की, रात भर जिसने उजाला किया उसे ही बुझना पड़ा। एक और श्रोता लिखते हैं कि छायावाद की मेरी आदरणीय महादेवी वर्मा जी की कविता से कुछ पंक्तियों को साझा कर रहा हूँ। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। एक और श्रोता ने लिखा है, रोशन तुम्ही से दुनिया रौनक तुम्ही जहाँ की, इस गीत को इन्होंने बताया है। और वैसे तो अगर देखा जाए तो प्यार की जो शमा होती है वो दिल में हमेशा जलनी चाहिए। आज के जीवन में ये बात कितनी प्रासंगिक है ये आप हमें बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है कि परवाने को शमा पर जलकर कुछ तो मिलता होगा, यूं ही मरने के लिए कोई मोहब्बत नहीं करता। शमा परवाना प्रेम के प्रतीक स्वरूप हैं, जिनसे प्रेम की पराकाष्ठा और समर्पण का पता चलता है। सच्चा प्रेम किसी भी

परिणाम से डर कर पीछे नहीं हटता और फिर आगे इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। आपको ये फिल्म और कलाकार पहचानने हैं?

दिए की रोशनी से जगमगाता ये गीत था जो रोशन था बेहद खूबसूरत अभिनेत्री वैजयंती माला पर, और गंगा जमुना फिल्म का ये गीत था। इस गीत की डिटेल अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कि किसका लिखा हुआ ये गीत था। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि फिल्म दोस्ती में एक दोस्त रोड पर लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई करते हैं। जी हाँ, ये तो है। एक और श्रोता लिखते हैं कि देवदास फिल्म के आखिरी दृश्य में दिलीप कुमार जी बैलगाड़ी में बेसुध पड़े हैं और लालटेन की रोशनी में गाड़ी चली जा रही है। एक और इन्होंने ही बल्कि लिखा है कि बचपन में गाँव में हमारी भी बैलगाड़ी थी, बारिश में ऊपर टप्पर लगाकर शहर खरीदारी के लिए जाया करते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि 20 साल बाद फिल्म में भी शमा लालटेन के रूप में दिखाई गई है। जी हाँ, बिल्कुल। और गीत को भी इन्होंने याद किया है कि फिल्म में ये गीत था। आप ये नगमा सुने श्रोता और बताएं कि ये किसके ऊपर फिल्माया गया है, मतलब किन अभिनेता और अभिनेत्री पर।

आशिक फिल्म के इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखी है। राज कपूर और पद्मिनी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो है शम्मा परवाने की बात है, ढलती रात सदियों से मोहब्बत समर्पण और वक्त के गुजरने के फलसफे को बयां करता आ रहा है। शम्मा का वजूद एक खामोश तड़प है, परवाना एक समर्पित दीवाना आशिक जो मरने की हद तक, इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं बहुत लंबी चौड़ी। एक और श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं कि ढलती जाए रात इस गीत को इन्होंने लिखा है। जी हाँ, बहुत सारे गीत थे आज जो हमने इसमें सोचा था कि आपको सुनवाएंगे। देखते हैं कौन कौन से गीत हो सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि शमा और परवाने के बीच प्यार का रिश्ता अटूट निस्वार्थ और आत्मघाती प्रेम कहलाता है। शमा जलती रहती है और परवाना ये जानते हुए भी कि वो जल जाएगा फिर भी उसके प्यार में उसी तरफ खींचा चला जाता है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि शाम ढले खिड़की तले और मेरे महबूब न जा, ये तमाम गीत इन्होंने सुझाए हैं और पसंद किए हैं। एक और सवाल आपसे कि जो हमने किया था कि जीवन में वो कौन है जो शमा की तरह आपके लिए रोशनी बनकर आया, आप चाहें तो बता सकते हैं श्रोताओं।

रज़िया सुल्ताना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आपको बताना है श्रोताओं कि इस गीत में कलाकार कौन थे। वैसे हमारे कुछ श्रोताओं ने बताया भी है, तो हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। एक हमारी और श्रोता लिखती हैं कि अंधेरी रात में शमा की रोशनी जगमगा उठी, चांदनी की तरह बिखरती उस रोशनी में प्यार, वफा और समर्पण की एक अनोखी दास्तान छिपी थी। शमा और परवाने का रिश्ता सच्चे प्रेम, जुनून और तड़प की मिसाल है। कभी जफाओं की कसक, कभी वफाओं की आबरू, कभी महबूब की आगोश में बीतती रात, तो इन सभी एहसासों में प्यार अपनी पूरी शिद्दत से दिखाई देता है। शमा की तरह अपने लक्ष्य के लिए जलना और परवाने की तरह है। इसके आगे भी इन्होंने अपनी बहुत सारी बातें लिखी हैं श्रोताओं। तो आपसे हमने पूछा था कि जीवन में आपके वो कौन है जो एक शमा यानी रोशनी की तरह आया, तो आप इस बारे में लिख सकते हैं। और जलती हुई शमा एक हमने पूछी थी कि जो फिल्म गंगा जमुना का गीत हमने आपको सुनवाया था उसमें दीपक की रोशनी है, दीपक की रोशनी और शमा की रोशनी, और अगर हम झूमर की बात करें तो उसकी रोशनी, ये सभी रोशनियों में आपको सबसे अच्छी किसकी लगती है और किस रोशनी के नीचे आपने कभी कोई शाम बिताई हो, तो आप उस बारे में बता सकते हैं। यानी झूमर या कैंडल यानी मोमबत्ती या फिर दिए की रोशनी के तले कोई ऐसी सुंदर शाम बिताई हो जो आपके जहन में यादगार पल बन गई हो, तो आप ऐसी बातें हमें बता सकते हैं।

जहाँ आरा फिल्म का ये गीत आपने सुना मीनू मुमताज पर फिल्माया गया, और इसके पहले हमने आपको सुनवाया था रजिया सुल्ताना फिल्म का गीत जयराज और निरूपा रॉय पर फिल्माया गया। ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है और बिल्कुल ठीक है। तो हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि जब मैं छोटी थी तो लैंप में पढ़ती थी, बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था। हम 5 भाई बहन एक साथ बैठकर शरारतें भी बहुत किया करते थे। वो समय दो हंसों का जोड़ा ये फिल्म थी, गंगा जमुना दिलीप कुमार वैजयंतीमाला। इस गाने में नायिका के अपने अकेलेपन के दर्द को नायिका बताती हैं, ऐसा इन्होंने इस गीत के बारे में भी लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि शम्मा परवाना और ढलती रात तीनों मिलकर मोहब्बत की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां इश्क सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि खामोशी से मिटते जाने का हुनर है। परवाना एक पल में जलकर अपनी कहानी कह देता है, मगर शम्मा पूरी रात पिघलकर भी रोशनी बांटती रहती है। शायद सच्ची मोहब्बत भी ऐसी ही होती है, एक जलता है, दूसरा पिघलता है और रात चुपचाप बीत जाती है, पीछे रह जाती है बस थोड़ी सी रोशनी और बहुत सारी यादें।

ये कलाकार आपको बताने हैं श्रोताओं, और फिल्म बतानी है। एक हमारी श्रोता लिखते हैं कि लाइट चली जाती थी तब लालटेन से पढ़ाई की है। एक और श्रोता ने लिखा है कि धूल का फूल फिल्म में राजेंद्र कुमार लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि 60 के दशक में बैलगाड़ी से कई शादियों में हमने शिरकत की है, वो भी कई किलोमीटर

राजेश खन्ना पर फिल्माया गया कटी पतंग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिए की रोशनी में मेरी इनकी शादी के बाद इन्होंने लिखी है, तब बिजली नहीं थी, लालटेन दरवाजे पर जला करती थी, बाकी घर में दिए जलते थे जो मिट्टी के तेल से जलते थे। बाकी जो है एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि कटी पतंग फिल्म का ये गीत राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया गया और इस गीत की डिटेल लिखी है इन्होंने। अब आपको ये बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है, किस पर फिल्माया गया।

मुगले आजम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। खूबसूरत बेहतरीन अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया। श्रोताओं, हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि ये चराग अंजुमन तो है बस एक शब के मेहमा, तू जला वो शम्मा ए दिल जो बुझे कभी न जल के।

अभिनेत्री चित्रा पर फिल्माया गया नूर महल फिल्म का ये गीत था सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। श्रोताओं, आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम सुरीला सफ़र आज बस यहीं तक। आज का ये सफ़र आपने तय किया संगीता श्रीवास्तव के साथ।

आज की त्रिवेणी पनघट पर आधारित है। पनघट गांव के जीवन का धड़कता हुआ हृदय, जहां घड़ों में जल भरना, मन की बातें छलकती, खुशी के गीत गाती सखियों की टोली, हंसी की फुहारों, चूड़ियों की खनक, पायलों की रुंझन, लंबा घूंघट तो कभी दांतों तले दबा, उसमें से झांकती कजरारी अखियां, लोक गीतों की मधुर तान से पनघट का सौंदर्य और भी निखर जाता। भोर होते ही जब पनिहारी ने अपनी खाली घड़ी लेकर पनघट की ओर बढ़ती तो लगता मानो गांव की पगडंडी पर रंग बिरंगे फूल चल पड़े हों। सखियों की दुनिया बदल जाती, घर की जिम्मेदारियों से कुछ पल दूर वे अपने सुख दुख बांटती, एक दूसरे की चुटकी लेती और खिलखिलाकर हंस पड़ती। किसी की आंखों में सपने होते, किसी के मन में विरह और किसी के हृदय में किसी अनकहे प्रेम की हल्की सी दस्तक।

ब्रज में राधा कृष्ण की प्रेम भरी हंसी टिटोली, कहीं राह रोकने की शरारत, कहीं सखियों की हंसी और कहीं आंखों ही आंखों में कहे गए प्रेम के संदेश। पनघट के आसपास के वृक्ष झूम झूम कर हर्षित होकर हवा के संग नृत्य करते, हरे पत्तों की छटा आनंद के रस में सराबोर होते, मन को आकर्षित कर जाते। पनघट के रास्ते प्रेम का सुंदर पड़ाव बन जाते और मटकी भी अपने भीतर एक प्रतीक समेट लेती। वो केवल जल से भरा पात्र नहीं, स्त्री के जीवन की जिम्मेदारियों का मानो रूपक बन जाती। सिर पर धरी मटकी संभालते हुए पनिहारिन जिस सहजता से चलती, उसमें नारी के धैर्य, संतुलन और आत्मविश्वास की झलक दिखाई देती।

समय बदला, गांव बदले और जीवन की सुविधाएं बढ़ी। घर घर नल और जल की व्यवस्था ने पनघट की आवश्यकता को कम कर दिया, लेकिन वो उस समय की याद दिलाता है जब जीवन थोड़ा धीमा था, रिश्तों में ठहराव था और छोटी छोटी मुलाकातों में आत्मीयता हुआ करती थी। लेकिन आज कुएं सूने हो गए, पनघट की चहल पहल खो सी गई, गांव की पगडंडियां भी सूनी पड़ गईं। पनघट से भरी गगरी में भरा जल शीतल मीठा किसी पथिक की प्यास बुझाने में सक्षम हुआ करता था। पनघट भी एक ऐसी स्मृति है जहां कभी मटकी में पानी भरता था और लौटते हुए मन में पूरा संसार

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आयना सबालिंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में केंद्र और सदस्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें समन्वय और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों पर विशेष बल दिया गया।
1: बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। वे 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी माल गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे वडोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर जिलों के लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई। उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्य कृतियों का असमिया में अनुवाद करने की विश्वविद्यालय की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉ जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों तथा व्यापार मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
2: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
0: डॉक्टर जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में अपनी लग्जमबर्ग यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार एक दूसरे से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि

0: दोनों देश अंतरिक्ष, डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं को भी तलाश रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत और लक्जमबर्ग के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर श्री बेटल ने कहा कि लक्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। श्री बेटल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर एट AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया और सुरक्षा उपायों तथा जारी बचाव अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का 80% हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और 3 की हालत गंभीर है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
2: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम अभियान में निरंतर काम कर रही है।
3: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है, जितने अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी थी चाहे वो किसी भी रैंक का, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो बच्चे हैं यहां से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर, और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट देना होगा ताकि ये मनमर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना कर पाए।
0: इस बीच दक्षिण जोन के MCD उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायक अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। भवन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया है कि मलबे की भारी मात्रा के कारण बचाव अभियान शाम तक जारी रहने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री बुंदेला ने बताया कि NDRF बचाव अभियान के लिए विशेष और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है।
4: इसमें मतलब स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन में बेसिकली ब्रीचिंग सिस्टम, कटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो है इक्विपमेंट्स है सीमेंट और कंक्रीट काटने के लिए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं इनको स्लैब्स को रिमूव करने के लिए, इन्फ्लेटेबल बैग्स वगैरह भी है जो इस्तेमाल करते हैं, और शोरिंग सिस्टम है कि हाइड्रोलिक शोरिंग है, वुडन शोरिंग है। ये डिपेंड करता है किस तरह का वहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्या रिक्वायरमेंट है करती है। और डिटेक्शन सिस्टम, इसमें कैनाइन है या लाइट डिटेक्टर्स इक्विपमेंट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि ये मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वच्छ वायु एक मूलभूत आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ वायु जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
5: ये उन प्रयासों को पहचानने के लिए है जो पूरे देश में विभिन्न शहरों और वार्डों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि हवा की गुणवत्ता बनी रहे और प्रदूषक तत्व PM10 तथा PM2.5 का स्तर उन सीमाओं तक नीचे लाया जाए जो नियामकों द्वारा तय की गई है। स्वच्छ हवा सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है बल्कि ये एक व्यवहारिक लक्ष्य है जिसे समर्पित प्रयासों, उचित योजना और जमीनी स्तर पर प्रभावी काम के माध्यम से हासिल किया जा सका है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बड़ी क्षमता है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और कल्याण एक्सपो संजीवनी 2026 में श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी मजबूत चिकित्सा व्यवस्था के जरिए दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों

0: हैबिट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। आज शाम दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले चार दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बने दो मॉनसून सिस्टम ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इंदौर, उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के करीब 40 जिलों में हल्की से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश का असर राजधानी भोपाल में भी साफ नजर आया। यहां कलियासोत बांध के दो गेट एक बार फिर खोलने पड़े। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है।
3: पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार समेत 12 जिलों की 10 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। इधर गंगा के डाउनस्ट्रीम में हाथीदह, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर में नदी के रौद्र रूप से भयावह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पुनपुन और सोन नदी में अभी भी उफान जारी है। पूर्व मध्य रेलवे ने पुनपुन रेल पुल संख्या 21 पर सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज भी 10 मेमू रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द कर दिया है। इस बीच आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने मुंगेर में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की हर प्रकार से मदद की जा रही है। आकाश्वाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: उधर नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363 हुई है। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 डूरंड कप के विजेता टीम वेस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। टेनिस में अरिना सबालेंका और कार्लोस अल्काराज अमेरिकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की शीर्ष वरीयता प्राप्त अरिना सबालेंका ने अमेरिकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंड को हराया। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अमेरिका के टॉमी पॉल को पराजित किया। भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01-2331-4812-3717-1717-1 और 2331-4444। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। MCD दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में अरिना सबालेंका तथा कार्लोस अल्काराज अमेरिकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

अनपढ़ इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज। प्यार ही प्यार इस फिल्म का गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला शंकर जयकिशन ने मोहम्मद रफी की आवाज में प्यार ही प्यार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
3: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
2: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
3: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: डांसिंग का सर्वाधिकिया ये गीत आपने सुना, आनंद बख्शी की रचना थी, मुकेश की आवाज में ये नगमा था माय लव फिल्म से।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गंगा की लहरें इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, चित्रगुप्त का संगीत। सदाबहार नगमे कार्यक्रम की यही है श्रोताओं आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजने को हैं। आप आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार व सामयिक चर्चा जिले की चिट्ठी रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार चिकित्सा अधिकारियों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस एनपीए देने पर विचार करेगी। उन्होंने आज शिमला में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में बताया कि मरीजों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी चिकित्सा महाविद्यालयों को सुदृढ़ किया जा रहा है और खाली पद चरणबद्ध ढंग से भरे जा रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश में कैंसर के मामलों में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार प्रदेश में कैंसर देखभाल संस्थानों को मजबूत करने पर 800 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसके अलावा एम्स दिल्ली की तर्ज पर अत्याधुनिक मशीनें और चिकित्सा उपकरण खरीदे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार जीन और मॉलिक्यूलर थेरेपी जैसी नवीन स्वास्थ्य उपचार तकनीकों की दिशा में आगे बढ़ने को लेकर भी योजना बना रही है। इस बीच मुख्यमंत्री आज से नई दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान वे विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का 9 सितंबर को शिमला लौटने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत शिमला जिले को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है। नई दिल्ली में हुए एक समारोह में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से जिला नोडल अधिकारी संजय कंवर को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने इस कार्य से जुड़ी पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि प्रदेश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने व स्थानीय उद्यमियों को योजना का लाभ पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करती है। उपायुक्त ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत 2,210 मामलों में ऋण स्वीकृत हो चुके हैं, जबकि 130 आवेदन ऋण प्रक्रिया के अधीन हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई 10 गारंटियों में से अभी तक एक भी गारंटी पूरी नहीं की है। उन्होंने आज सोलन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक के बाद कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों को झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई थी और अब अपनी गारंटियों से मुकर गई है। बिंदल ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं आज भी 1500 रुपए और बेरोजगार 58 साल वाली पक्की नौकरी का इंतजार कर रहे हैं।
1: आज 4 साल के बाद पूरा प्रदेश ये पूछ रहा है, वो पक्की नौकरियां 58 साल वाली पेंशन वाली वो नौकरियां कहाँ गई। साथ ही कहा था हम 5 लाख रोजगार भी देंगे। उन्होंने कहा 18 साल से ऊपर की हर बहन को हम 1500 रुपया महीना उनके खाते में डालेंगे। एक घर में एक होएगी, दो होएंगी, तीन होएंगी, चार होएंगी, सबको मिलेगा। आज भी वो 28 लाख बहनें अपने 75,000 का इंतजार कर रही हैं।
0: केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद दिवस को जन आंदोलन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के जरिए आयुर्वेद से संबंधित प्रमाण आधारित जानकारी देश भर के हर घर, स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थल तक पहुंचाया जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जाधव ने घोषणा की कि 11वां आयुर्वेदिक दिवस 23 सितंबर को नागपुर में मनाया जाएगा। इस वर्ष के आयोजन का विषय है स्वास्थ्यवर्धक भविष्य के लिए आयुर्वेद। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद दिवस केवल भारत की समृद्ध विरासत का उत्सव मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि इसे भविष्य की स्वास्थ्य आवश्यकताओं और संभावनाओं से जोड़ने का भी अवसर है। प्रताप राव जाधव ने इस बात पर जोर दिया कि आयुर्वेद दिवस भारत की प्राचीन ज्ञान प्रणाली को आगे बढ़ाने और इसे वैश्विक स्वास्थ्य सेवा के भविष्य के साथ जोड़ने का एक मंच है। राज्य पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने पेंशनरों की लंबित देनदारियों को लेकर राज्य सरकार पर लोगों को गुमराह करने और विधानसभा में गलत आंकड़े प्रस्तुत करने का आरोप लगाया है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने आज धर्मशाला में कहा कि मुख्यमंत्री ने मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा में बताया कि 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों के एरियर, लीव, एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी सहित अन्य बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है, जो पूरी तरह भ्रामक है।
2: माननीय मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश, उन्होंने कहा है कि मैंने और मेरी सरकार ने 57 साल के ऊपर सभी पेंशनरों को उनके बकाया राशि की अदायगी जो है वो कर दी गई है, जबकि ये बिल्कुल सत्य से परे है। ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन अधिसूचना जो है सरकार की तरफ से नहीं की गई है कि इस पेंशनरों को उनका पूरा एरियर जिसमें लीव इनकैशमेंट ग्रेच्युटी एंड कम्यूटेशन की अदायगी की गई हो, सरासर गलत है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ये कह रहे हैं कि 55% जो है क्लास 3 की देनदारियां दी गई हैं और क्लास 1 और क्लास 2 की 35% जो है वो अदायगी जो है हो चुकी है, और एक जनता को गुमराह करने के लिए ये जो बयान जो है दिया गया।
0: इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
3: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। अब पेश है सामायिक चर्चा। विषय है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, समावेशी विकास के माध्यम से भारत की सीमाओं का सुदृढ़ीकरण। वाचिका है राजकुमारी चंदेल।
0: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ने भारत के सीमावर्ती गांवों की भूमिका को पुनर्परिभाषित किया है। इसका उद्देश्य जीवंत, सशक्त और समृद्ध सीमावर्ती समुदायों का निर्माण करना है। ये जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है और सतत आर्थिक अवसर पैदा करता है। ऐसा करके ये सीमाओं पर फलते फूलते समुदायों को बनाए रखकर भारत की सीमा सुरक्षा को मजबूत करता है। सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को 2 चरणों में लागू कर रही है, जो मिलकर भारत की पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कवर करते हैं। पहला चरण उत्तरी सीमा के गांवों को कवर करता है, जबकि दूसरा चरण इसी दृष्टिकोण को अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमाओं तक बढ़ाता है। दोनों चरणों का कुल लक्ष्य 11,639 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय से 2,600 से अधिक गांवों को कवर करना है। चरण एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे राज्यों के साथ मिलकर लागू किया गया है, जबकि चरण दो एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। दोनों चरणों का उद्देश्य जीवन स्थितियों के सुधार, स्थानीय आजीविका पैदा करना और सीमावर्ती समुदायों को सशक्त बनाना है। ये पहल गांवों को विकास के जीवंत केंद्रों के रूप में विकसित करके देश की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का कार्य करती हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के पहले चरण की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में उत्तरी सीमा के गांवों के लिए की गई थी। इसमें 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 19 जिलों में उत्तरी सीमा से सटे 46 ब्लॉक के गांवों की पहचान की गई। इनमें से लगभग 1,42,000 आबादी वाले 662 रणनीतिक गांवों को व्यापक विकास के लिए प्राथमिकता दी गई। ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख हैं। इस योजना को 4,800 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिए है। ये कार्यक्रम सभी मौसमों के अनुकूल सड़कों, पेयजल, भरोसेमंद बिजली, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा आवश्यक स्वास्थ्य व शिक्षा के अवसंरचना का समर्थन करता है। ये आजीविका और समग्र जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए पर्यटन सुविधाओं और बहुउद्देश्य सामुदायिक केंद्रों को भी बढ़ावा देता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025 को इसके दूसरे चरण को मंजूरी दी। पहले चरण के विपरीत ये पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित है और गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसे औपचारिक रूप से फरवरी 2026 को असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव से लॉन्च किया गया था। इस योजना के लिए 2028-29 तक के वित्तीय वर्षों के लिए 6,839 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमाओं से सटे लगभग 2,000 गांवों को व्यापक विकास के लिए चिन्हित किया गया है। ये 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है। भारत सरकार ने सीमावर्ती गांवों को मजबूत करने के लिए इसके तहत एक व्यापक पैकेज को मंजूरी दी है। ये योजना अवसंरचना सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से मूल्य श्रृंखलाओं, स्मार्ट क्लासरूम, पर्यटन सर्किट और सतत आजीविका का समर्थन करती है। ये सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और दूरसंचार कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य जीवन स्थितियों में सुधार करना, आजीविका सृजित करना और लोगों को सीमावर्ती गांवों में रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसी के साथ सामूहिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
5: अभी आप सुन रहे थे सामायिक चर्चा। विषय था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, समावेशी विकास के माध्यम से भारत की सीमाओं का सुदृढ़ीकरण। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
6: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
7: इसमें इसकी जो थीम रखी गई है वो क्लीन एयर फॉर क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु कार्यवाही के लिए स्वच्छ वायु होना ज़रूरी है। इसका मतलब यही हुआ कि वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन दो अलग चुनौतियां नहीं बल्कि दोनों का एक ही मतलब है। गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का प्रदूषण, पराली जलाना, ये हमारे हवा को भी ख़राब करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ा देते हैं।
8: जबकि हवा हम सबके लिए ज़रूरी है, बिना हवा के हम जी नहीं सकते हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी भी तो बनती है कि हम याद रखें कि स्वच्छ वायु विलासिता नहीं है बल्कि हमारे भविष्य में किया गया निवेश है। और स्वच्छ वायु और नीला आकाश तभी होगा जब स्वस्थ विकास होगा। और हम सब की निजी तौर पर भी जिम्मेदारी बनती है। हमारे हाथ में जो कुछ है वो हम कर सकते हैं। कम से कम इर्द गिर्द पौधारोपण तो कर सकते हैं, पौधे लगाएं तो शायद थोड़ी बहुत शुद्ध हवा आपको मिल सकती है। फिलहाल कथा सुधा सुनते हैं।
9: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
10: कथा सुधा में आज प्रस्तुत है भगवती चरण वर्मा की कहानी, वरना हम भी आदमी थे काम के।
11: लोग मुझे कवि कहते हैं और गलती करते हैं। मैं अपने को कवि समझता था और गलती करता था। मुझे अपनी गलती मालूम हुई मियां राहत से मिलकर, और लोगों को उनकी गलती बतलाने के लिए मैंने मियां राहत को अपने यहाँ रख छोड़ा है। मियां राहत वास्तव में कवि हैं, वो नामी आदमी नहीं हैं। उनका कोई दीवान अभी तक नहीं छपा और शायद कभी छपेगा भी नहीं। मुशायरे में वो नहीं जाते, या यूँ कहिए कि मुशायरों में वो नहीं पढ़ते। एक बार मुशायरे में उन्होंने अपनी गज़ल पढ़ी तो उनको इतनी दाद मिली कि बेचारे घबरा गए और उस दिन से मुशायरे में न पढ़ने की कसम खा ली। और दूर की नहीं हाँकते पर फिर भी कवि हैं, इतने बड़े कि आजकल के नामी नामी शायर सब एक साथ उन पर निछावर किए जा सकते हैं। यदि आप 40-50 साल के एक ऐसे आदमी को मेरे बंगले के बारामदे में देखें, जो लंबा सा और किसी हद तक मोटा सा कहा जा सके, जिसका चेहरा गोल भरा हुआ और उस पर चेचक के दाग, मूछ नदारत लेकिन दाढ़ी तोंद तक पहुंचती हुई, सिर पर पट्टे और बाल बीच से खिंचे हुए, आंखें बड़ी बड़ी ऊपर उभरी हुई और उनमें सुरमा लगा हुआ, चिकन का कुर्ता और लंकलाट का गरारेदार पजामा पहने हुए हो तो आप समझ लो कि यही मियाँ राहत हैं। वो आपसे झुककर सलाम करेंगे, अदब के साथ आपका नाम पूछेंगे, आपको कुर्सी पर बैठलाकर मुझे आपकी इत्तिला देंगे और फिर धीरे से वहाँ से खिसक जाएंगे। आप उनको मेरा नौकर किसी भी हालत में नहीं समझ सकते और मैं उनसे मालिक का बर्ताव करता भी नहीं हूँ। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, बुजुर्ग की तरह उन्हें मानता हूं। मियां राहत से मेरी मुलाकात 3 साल पहले हुई थी। यूं तो इसके पहले भी मैं उन्हें देखता आता था, पर उस समय मुझे उनके नाम और उनकी खूबियों का

0: बताना था। इलाहाबाद के स्टैनली रोड और कैनिंग रोड के चौराहे पर खाकी वर्दी पहने लाल पगड़ी बांधे हुए मियाँ राहत को मैंने सवारियों को रास्ता बतलाते हुए देखा था। इक्के वाले झुककर मियाँ राहत को सलाम करते थे और उनकी कुशल क्षेम पूछते थे और मियाँ राहत मुस्कुराकर उन सबको जवाब देते थे। साथ ही इक्के वाले और तांगे वाले उल्टे सीधे दाएं बाएं जहां से तबीयत होती थी इक्का तांगा ले जाते थे। मुझे शक था कि मियाँ राहत शायर अवश्य होंगे। कभी कभी सवारियों को अपने भाग्य पर छोड़कर मियाँ राहत एक नोटबुक और एक पेंसिल लिए हुए चौराहे के एक कोने में नजर आते थे। कभी कभी वो अपनी पेंसिल से नोटबुक में कुछ दर्ज भी कर लेते थे। पहले तो मैंने समझा मियाँ राहत किसी का चालान कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने उनका गुनगुनाना सुना तो बात समझ आ गई। उस दिन मैं सिविल लाइंस में घूमने जा रहा था। शाम का समय था। इलाहाबाद के शौकीन रईस अपनी अपनी मोटरें लेकर घूमने को निकल पड़े थे। स्टैनली रोड और कैनिंग रोड के चौराहे पर जब मैं पहुंचा तब पैर आप ही आप रुक गए। आंखों ने मियाँ राहत को ढूंढ ही तो निकाला। एक किनारे खड़े हुए मियाँ राहत कागज पर अपनी पेंसिल चला रहे थे। रुक कर मैं राहत को देखने लगा। इसी समय चौक की तरफ से एक कार तेजी से आई और अपनी दाहिनी ओर मियाँ राहत पर चढ़ती हुई आई। कार की स्पीड 60 मील प्रति घंटे से कम ना होगी। मियाँ राहत अपनी नोटबुक और पेंसिल के साथ इतने मशगूल थे कि उन्हें कार के आने की जरा भी खबर ना थी। मैंने खतरे को देखा और जोर से चिल्ला उठा, मियाँ भागो नहीं तो जान गई। मियाँ राहत उछले, लेकिन कार इस तेजी के साथ चल रही थी कि उनके हटते हटते उसके अगले मडगार्ड का झोंका मियाँ राहत को लग ही तो गया और राहत ला हौल विला कुवत कहते हुए जमीन पर आ गए। मैं दौड़ा और कार भी थोड़ी दूर चलकर रुक गई। मैंने मियाँ राहत को उठाया। चोट ना आई थी, सिर्फ घुटने और कोहनी कुछ छिल गए थे। उठते ही मियाँ राहत ने अपनी पगड़ी दुरुस्त की और वर्दी से धूल झाड़ी। उस समय कार से एक 24-25 वर्ष की युवती उतरकर मियाँ राहत के पास आई। बहुत सुंदर, गोरी और यौवन भार से लदी हुई। मुस्कुराते हुए उसने मियाँ राहत से पूछा,
1: ओहो, अरे आप ठीक तो हैं? चोट तो नहीं लगी?
0: मियाँ राहत ने प्रायः 10 सेकंड तक बड़ी गंभीरता पूर्वक उस युवती को देखा। इसके बाद वो भी मुस्कुराए।
2: नहीं, चोट तो ऐसी कोई लगी नहीं, लेकिन जरा देखभाल कर मोटर चलाया कीजिए।
0: युवती ने 5 रुपए का नोट मियाँ राहत को देते हुए कहा।
1: वो क्या है ना कि अभी हाल ही में मोटर चलाना सीखी है। एक मिनट, लो ये 5 रुपए, अपने बचने की खैरात बांट देना।
0: अपने हाथ हटाकर जेब में डालते हुए मियाँ राहत ने अपना मुंह फेर लिया।
2: मिस साहब, मेरी क्या, मैं तो आप लोगों का गुलाम हूँ। आप लोगों पर अपनी जान न्योछावर करने में भी मैं फख्र समझूंगा। आप ही अपनी इस खुशकिस्मती पर कि इस चौराहे पर मैं था, ये खैरात बांट दीजिएगा।
0: वो युवती मुस्कुराती हुई चल दी। मियाँ राहत ने उसे झुककर सलाम किया। इसके बाद उन्होंने अपनी नोटबुक और पेंसिल उठाई। मैंने पूछा, मियाँ तुमने इनका चालान क्यों नहीं किया? मियाँ राहत बोले,
2: क्या करूं बाबू साहब, दिल गवाही नहीं देता। इन परिजादों की तो परस्तिश करनी चाहिए और आप चालान करने की बात करते हैं।
0: इतना कहकर मियाँ राहत और कोने में खिसक गए और नोटबुक और पेंसिल का झगड़ा सुलझाने लगे। मैं वहां से चल दिया, पर चलते चलते मुझे ये दो पंक्तियां सुनाई पड़ी जो शायद मियाँ राहत ने उसी समय बनाकर नोटबुक में दर्ज की थी। किसी हसीन की मोटर से दब के मर जाना, किसी हसीन की मोटर से दब के मर जाना, ये लुत्फ यार हमारे नसीब ही में ना था। न जाने क्यों उस दिन के बाद से मेरे हृदय में मियाँ राहत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मियाँ राहत

0: मेरे यहाँ प्रायः आया करते थे और घंटों मुझे अपनी कविता सुनाते थे। मैं उनकी कविता समझता भी था और उनकी दाद भी देता था। इस घटना को हुए 2 मास हो गए थे। सत्याग्रह संग्राम जोर से चल रहा था। कई दिनों से मियाँ राहत मेरे यहाँ ना आए थे। एक दिन शाम के वक्त बरामदे में बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था कि मियाँ राहत आए। उनकी मुद्रा देखकर मैं घबरा गया। आंखें डबडबाई हुई, चेहरा पीला और पैर लड़खड़ा रहे थे। मैंने पूछा, मियाँ राहत, खैरियत तो है? ये तुम्हारी क्या हालत, क्या बीमार तो नहीं रहे? कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने कहा,
1: बाबू साहब, उफ, बाबू साहब।
0: इसके बाद वो लगातार ठंडी सांस भरने लगे। मैं वास्तव में घबरा गया था। मैंने पूछा, क्या कुछ तबीयत खराब है?
1: नहीं।
0: मियाँ राहत ने ठंडी सांस ली। तुम्हारे बीवी बच्चे तो अच्छी तरह हैं?
1: हाँ।
0: राहत ने फिर एक ठंडी सांस ली। अरे भाई, कुछ बतलाते क्यों नहीं कि क्या हुआ? मियाँ राहत ने बहुत करुण स्वर में आरंभ किया,
1: बाबू साहब, उस दिन की बात तो आपको याद है ना, जिस दिन मैं मोटर से दबते दबते बचा था।
0: हाँ हाँ, भला उस दिन की बात मैं भूल सकता हूँ?
1: बाबू साहब, अब कैसे बताऊं, उस दिन वो जो मिस साहब मोटर चला रही थी, वो, अरे क्या बताऊं, वो मिस साहब एक वो जो बड़ी पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी, उस पार्टी में काम करती है।
0: हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, उनका नाम सुशीला देवी है ना?
1: है? बाबू साहब, यही नाम है। आज वो गिरफ्तार हो गई।
0: अरे तो फिर इससे क्या?
1: अब क्या बतलाऊं बाबू साहब, अरे मुझे भी दरोगा साहब के साथ उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाना पड़ा था।
0: मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मियाँ राहत रोने वाले हैं। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद मियाँ राहत ने फिर कहा,
1: बाबू साहब, ये सरकारी नौकरी बड़ी खराब है। इसमें अपनी रूह को चांदी के चंद टुकड़ों पर बेच देना पड़ता है। जानते हैं बाबू साहब, आज मैंने अपनी रूह का गला घोंटकर कितना बड़ा गुनाह किया।
0: मैंने कहा, मियाँ राहत, इस सोच विचार से कुछ फायदा नहीं। तुम नौकर हो, तुमने अपना फर्ज अदा किया है, इसी के लिए तो तुम तनख्वाह पाते हो। मियाँ राहत चिल्ला उठे,
1: मैं नहीं चाहता ये तनख्वाह। इस गुलामी से मैं आजिज आ गया हूं।
0: मैंने देखा मियाँ राहत की भावुकता जोरों के साथ उमड़ी हुई है और रंग बिगड़ा हुआ है। मैंने कहा, मियाँ तुम्हारी बीवी हैं, बच्चे हैं, उनका पेट भरना तुम्हारा फर्ज है। उनसे भी कभी पूछा है कि वे तनख्वाह चाहते हैं या नहीं? जाओ अपना काम करो। बीवी बच्चों का नाम सुनते ही मियाँ राहत की उमड़ती हुई भावुकता पर ब्रेक लग गया।
1: क्या करूं बाबू साहब, कुछ समझ में नहीं आता।
0: इस बार उन्होंने एक बहुत गहरी सांस ली और उनकी आंखों से 2 आंसू टपक पड़े। दूसरे दिन शाम के समय जब मैं काम से लौट रहा था तो मियाँ राहत के मकान के सामने से निकला। वहां जो दृश्य देखा वो जीवन भर कभी ना भूलूंगा। मियाँ राहत जमीन पर सिर झुकाए बैठे थे और उनकी बीवी उनके सिर पर बिना गिने हुए तड़ातड़ चप्पलें लगा रही थी। बीवी रो रो कर कह रही थी,
2: अरे निगोड़ा निगोड़ा, कल वहां कहीं का नौकरी छोड़ाया हम लोगों को भूखा मारने के लिए। भूखा मारेगा हम लोग क्या खाएंगे, बच्चे कैसे रहेंगे? ले नौकरी छोड़ने का मजा, ले मजा ले।
0: मियाँ राहत की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे और वो ये शेर बेर बेर गा गा कर पढ़ रहे थे।
1: हाय, इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना वरना हम भी आदमी थे काम के। हाय।

0: सिखियां और सखा ये गाना सुन रहे थे। अब चंचल जी घड़ी की ओर देख रही हैं कि ये ब्रेक का समय हो गया है, तो लेते हैं
1: अंतराल का समय हो गया है और अंतराल के बाद हम फिर आएंगे बातें करने।
0: छोटा सा ब्रेक।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली
1: और गीत ये कथा सुधा से पहले हमने बात की थी स्वच्छ वायु नीले आकाश के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। आज तीन बड़े अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं यानी कि 7 सितंबर को। एक है विश्व ड्यूशेन जागरूकता दिवस और ये हर साल 7 सितंबर को हम मनाते हैं। ये एक पेशे दुपोषण का अनुवांशिक दुर्लभ रोग है और इसमें क्या होता है कि शरीर में डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन है वो नहीं बनता जिसकी वजह से मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं और मुख्य रूप से ये बीमारी जो है लड़कों को या पुरुषों को प्रभावित करती है और लड़के अधिकांश 15 वर्ष की आयु तक चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं और इस दिन का उद्देश्य यही है कि इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके ताकि जो उपचार हैं वो भी समय रहते किए जा सकें।
0: बिल्कुल। और चंचल जी आज अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस भी है, 7 सितंबर है। 7 सितंबर 1923 को वियना में अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग बना था जिसे आज हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं। इसी ऐतिहासिक याद के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2022 में प्रस्ताव पारित किया और 2023 से हर बरस 7 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है।
1: और ममता जी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं और अपराध अपनी कोई सीमा नहीं देखते, साइबर अपराध है, मानव तस्करी, मादक पदार्थों के अपराध हैं, आतंकवाद है, ये एक देश से शुरू होते हैं और दूसरे देश में जाकर समाप्त होते हैं। तो एक देश की पुलिस अकेले वहाँ कुछ नहीं कर पाती, तब ऐसे समय पे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस यानी कि इंटरपोल की बहुत ज़रूरत पड़ती है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं और इसीलिए पुलिस अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग ज़रूरी भी है। इंटरपोल, संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय पुलिस संगठन मिलकर सूचना साझा करते हैं और चोरी हुए पासपोर्ट पकड़ते हैं, अपराधी तंत्र को तोड़ते भी हैं। इस वर्ष का विषय हमें गहरी बात भी सिखाता है, वो है विश्वास यानी भरोसा। इस वर्ष 2026 का विषय कमजोरी से सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था में विश्वास और वैधता का निर्माण है।
1: बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का भी ये मानना है कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग जो हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, शरणार्थी हैं, दिव्यांगजन हैं, ये सभी लोग सबसे पहले अपराध का शिकार बनते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि उन्हें न्याय भी सही से नहीं मिल पाता है। इसीलिए पुलिस व्यवस्था केवल क्षमता से नहीं बल्कि जनता के विश्वास से भी बनती है।
0: बिल्कुल।
1: और एक लाइन में अगर कहें ममता जी तो सीमा पार सहयोग तभी सुरक्षित हर योग, या फिर विश्वास ही है शक्ति, पुलिस है जन की भक्ति।
0: सही बात है और हमें चाहिए कि हम उन सभी पुलिस कर्मियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें जो दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे हैं और संकल्प लें कि हम विधि के पालन में सहयोग करेंगे। और अब एक गाना सुनते हैं ये।

0: कौन अपना कौन पराया फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सखियां और सखा सुन रहे थे। और चंचल जी, जब हम कोशिश करते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि हमें सफलता मिल जाए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद, कठिन परिश्रम के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है, तो क्या करना चाहिए? क्या हार मान के बैठ जाना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमें तो बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर कुछ भी पाना है तो उसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। और वैसे भी समाज में प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत, रुपया, पैसा, तरक्की, पढ़ाई में अव्वल आना, कुछ भी होने दो, लक्ष्य अगर आपको प्राप्त करना है तो संघर्ष के बिना तो वो संभव ही नहीं है। और ममता जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि संघर्ष हमारे जीवन को तराशता है, निखारता है, संवारता है, और फिर हमें एक ऐसे सांचे में ढाल देता है कि दुनिया में हम किसी भी जगह पर एक मिसाल भी बन सकते हैं। और हम जो भी अथक प्रयास करते रहते हैं, जिसे हम संघर्ष कहते हैं ना, उसके बाद ही हमें सफलता मिलती है, और निसंदेह वो अतुलनीय भी होती है।
0: बिल्कुल इसी तरह की एक बात हमारी एक सखी कह रही हैं, इसी तरह की बात कि जिंदगी के बुरे दौर में मिलने वाली छोटी बड़ी असफलता से बजाय घबराने के हमें उसी में से रास्ता खोजना चाहिए। कई लोग अपनी असफलता की तरफ कुछ ज्यादा ही देखते हैं और नए सपने देखने का जोखिम उठाने से डरते हैं। दरअसल सफलता का हर तार हमारे भीतर ही जुड़ा होता है, आवश्यकता है उसे तार को सही तरीके से कसने की। उस तार को, अपने भीतर के तार को सही कसकर ही कोई एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर विजय पताका फहरा पाता है।
1: बिल्कुल सही बात है, जीवन के संघर्ष जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव हमें कराते हैं और अच्छे बुरे का ज्ञान भी करवाता है, हमेशा सक्रिय रहना सिखाता है, समय की कीमत हमें पता लगती है, और इन सब चीज़ों से प्रेरित होकर हम सशक्तिकरण के साथ फिर से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाते हैं और जीवन जीने के जो सही ढंग हैं उसको सीख पाते हैं।
0: बिल्कुल, दुनिया का हर व्यक्ति जीवन में सफलता की उम्मीद करता है, जिसके लिए वो परिश्रम भी करता है। कई बार कुछ अलग करने की इच्छा और प्रबल प्रेरणा से हम अपने मुकाम के करीब पहुंच भी जाते हैं, लेकिन कुछ कठिनाइयों को सामने देखकर हार मानकर अपनी सफलता से वंचित हो जाते हैं।
1: इसी तरह से एक संदेश हमें ये कह रहा है कि सफलता का रास्ता कठिनाइयों और संघर्ष से होकर गुजरता है। कठिनाइयाँ इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं, असफलताएँ मुश्किलें असली ज्ञान और अनुभव सिखाती हैं। बड़ी सफलता के लिए लंबा धैर्य और निरंतर प्रयास इसकी सबसे बड़ी कुंजी है। सुडौल अक्षर को लिखने के लिए बचपन में ही स्कूलों द्वारा, हमें शिक्षकों द्वारा एक दो पेज लिखने के लिए कहा जाता था, और निरंतर अभ्यास से लिखावट में सुधार आता है, अक्षर सुंदर हो जाते हैं। इसी तरह से जिंदगी में भी सफलता के लिए ये सूत्र लागू होते हैं।
0: जब लिखने के लिए कहा जाता था सुलेख लिखना,
1: हाँ,
0: तो सबसे कठिन लगता था कि अरे क्या मतलब, कठिन से मतलब कि उबाऊ लगता था, कि एक दो लाइन लिखने के बाद लगता था कि वही बात क्यों लिखवाया जा रहा है, कि भारत हमारा देश है, हमारा देश जानो प्राणों से प्यारा है, और उसी एक लाइन को बार बार लिखना, तो तब ये बात नहीं समझ में आती थी कि अगर ऐसे ही अभ्यास की आदत पड़ी रहेगी तो आगे जब कठिनाई आएंगी तो कठिनाइयों से जूझने की आदत पड़ेगी। और बहुत सारे ज्ञानी लोग भी कहते आए हैं कि जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। याद रखें कि अपनी मंजिल का आधा रास्ता तय करने के बाद कभी पीछे मुड़कर ना देखें, बल्कि पूरे जुनून और विश्वास के साथ बाकी की आधी दूरी तय करें। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर भी हमें उतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है जितनी दूरी

0: करने पर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं।
1: ये बात आपने बड़ी सही बताई, कई बार आधे रास्ते में आके लगता है ना कि चलो भाई वापस चलें, कितना दूर है, जबकि अगर हम थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ जाएं तो शायद उतनी ही दूरी पर मंजिल।
0: यहाँ पर तैरने वाले का उदाहरण सबसे अच्छा होता है कि जो लोग तैराक होते हैं, अगर नदी पार कर रहे हैं और आधी नदी तक उनका हौसला टूटने लगे तो क्या कर सकते हैं, बीच नदी से पीछे जाएंगे तो भी उतना ही पानी है और आगे जाएंगे तो भी उतना ही पानी है। तो इसलिए बेहतर है कि आप हाथ पैर मारते रहें, कोशिश करते रहें।
1: बिल्कुल, आगे बढ़कर मनचाही सफलता नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी काम हम कर रहे हैं उसका अनुभव हमें मिलेगा। और बार बार हार कर अपनी हिम्मत के साथ लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना, यही संघर्ष होता है।
0: और यहाँ पर बात ये बनती है कि हमें गाना सुनवा दें।

0: तो चंचल जी, हम बात कर रहे थे सफलता प्राप्ति का रास्ता संघर्ष से होकर ही गुजरता है, और हमारे श्रोता भी इस मुहिम में आगे आ चुके हैं और वो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि संघर्ष ने मुझे तो बहुत कुछ सिखाया है, कभी ठोकर देकर संभलना, कभी आंसू पोंछकर मुस्कुराना। आज जो थोड़ा भी मजबूत हूँ उसमें मेरी मुश्किलों का बड़ा हाथ है। शायद ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि संघर्ष हमें तोड़ने नहीं, हमें अपने आप से मिलाने आता है। क्या बात है,
1: सही बात है ममता जी। जीवन में जब तक संघर्ष नहीं होगा, जीवन जीने के आनंद को, सच्ची खुशी को हम अनुभव भी नहीं कर सकते। जिस तरह बिना चोट के पत्थर को भी भगवान का रूप नहीं दिया जा सकता, कहने का मतलब यह है कि कोई भी मूर्ति जब गढ़ी जाती है तो कई बार उस पर चोट की जाती है, तब वो अपना आकार लेती है। और ठीक वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी संघर्ष की तपिश ना हो तो वो निखरेगा कैसे और शिखर तक पहुंचेगा कैसे, या फिर अपनी मनचाही सफलता को कैसे पाएगा।
0: बिल्कुल, और संघर्ष के सूत्र को हम समझ लें तो उस पर चलने की कोशिश हमें करनी होगी, कि मतलब अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो सफलता मिल ही जाएगी देर सवेर। संघर्ष के डर से जीवन में कभी अपने कदम पीछे नहीं लेने हैं। आज का संघर्ष हमारे कल को सुरक्षित करता है। ये सत्य है कि जीवन में कई बार बुनियादी सामाजिक पारिवारिक समस्या आन खड़ी होती है, तब लक्ष्य के प्रति संघर्ष की इच्छा शक्ति को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जीवन का संघर्ष कई गुना बढ़ भी जाता है।
1: और हमारे श्रोता कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुश्किलों से घबराने की बजाय उनसे सीखता है, वही आगे चलकर सफलता का असली आनंद महसूस करता है। इसीलिए रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं, हिम्मत ना हारें, कदम ना रोकें और अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि संघर्ष जितना सिखाता है सफलता उतनी ही अच्छी लगती है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि सच तो यही है, सफलता का रास्ता संघर्ष से है, लेकिन ईश्वर संघर्ष रहित जीवन भी देते हैं। किसी किसी को चांदी और सोने के चम्मच और थाली वाले घर में ही जन्म दे देते हैं, तो उनके लिए संघर्ष के मायने बिल्कुल अलग होते हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि बिना संघर्ष सफलता मिलना काफ़ी मुश्किल है। जीवन में संघर्ष और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि बिना संघर्ष या कठिनाइयों का सामना किए बिना जीवन में सफलता हासिल नहीं की जा सकती, मतलब बिना संघर्ष के।
1: बिल्कुल, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत भी उतनी ही शानदार होगी, हम इस बात को याद रखें। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, गीत सुन लें।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: भाई गाना हो गया, अब खाने की बात भी जरूरी है।
1: हाँ, गाने के बाद खाना।
0: बिल्कुल, और हमारे श्रोताओं ने जो व्यंजन लिख भेजे हैं हम वही उन तक पहुंचा रहे हैं। कश्मीरी दम आलू और सामान्य आलू दम के बीच मुख्य अंतर उनकी ग्रेवी सामग्री और बनने की विधि में होता है। कश्मीरी दम आलू में इसमें प्याज लहसुन और टमाटर का बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता है। इसकी ग्रेवी मुख्य रूप से फेंटे हुए दही पर आधारित होती है। सामान्य आलू दम उत्तर भारतीय या पंजाबी शैली के आलू दम में प्याज लहसुन और टमाटर की गाढ़ी ग्रेवी बनाई जाती है। इसमें काजू का पेस्ट या क्रीम भी डाली जाती है जिसमें ये अधिक मलाईदार बनता है। कश्मीरी आलू दम में सूखा हुआ अदरक, सौंठ पाउडर और सौंफ पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है।
1: तो ये तो हुई एक संदेश की बात। अगले संदेश में इसको बनाने की पूरी रेसिपी बताई गई है और इसमें बताया गया कि कश्मीरी दम आलू बिना प्याज लहसुन बनने वाली बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक रेसिपी है। इसके लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो है बेबी आकार के पोटैटो, यानी कि 500 ग्राम हमें आलू लेने, छोटे छोटे आकार के। सरसों का तेल लेना है ग्रेवी के लिए और तलने के लिए। ताज़ा फेटा हुआ दही करीब एक कप लेना है। सौंफ पाउडर एक बड़ा चम्मच लेना है। सौंठ यानी सूखे हुए अदरक का पाउडर आधा बड़ा चम्मच लेना है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिसे थोड़ी रंगत अच्छी आ जाएगी वो एक बड़ा चम्मच लेना है। दो चुटकी हमें हींग लेनी है और खड़े मसाले में हमें लेने हैं जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग और इलायची। नमक लेना है हमें स्वाद अनुसार। अब बनाने के लिए जो आलू है उनको तैयार कर लें, उनको थोड़ा 50% तक उबाल कर और छील लिया जाता है। अब किसी कांटे से या टूथपिक से आलू में छेद कर दिए जाते हैं ताकि मसाले इनमें अंदर तक जा सकें, और इन आलू जो छोटे छोटे आलू हैं इनको सरसों के तेल में मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तल लेना है, और थोड़ा सा इनकी जो ऊपर की लेयर है वो क्रिस्पी हो जानी चाहिए तब तक हमें इन्हें तलना है। और मसाले का एक पेस्ट बनाना है, उसके लिए एक कटोरी में फेटा हुआ दही, कश्मीरी लाल मिर्च, सौंठ पाउडर, सौंफ पाउडर और थोड़ा सा पानी मिलाकर ये पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। तड़का लगाने के लिए उसी कढ़ाई में जिसमें हमने आलू तले थे थोड़ा सरसों का तेल गर्म छोड़ देना है। उसमें जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, हींग डाल देनी है। फिर ग्रेवी डालकर थोड़ा धीमी आंच पर उसे पका लेना है। फिर दही का पेस्ट डालना है और तब तक तेल अलग ना हो तब तक इसको पकाना है। फिर जो हमारे तले हुए आलू हैं थोड़ा सा नमक डालकर इन्हें भी डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डालकर जब तक वो तेल थोड़ा सा अलग होने ना लगे तब तक पकाना है 10-15 मिनट तक। जब आलू थोड़े से नरम हो जाएंगे तो आपके समझ लीजिए कि कश्मीरी दम आलू जो हैं वो तैयार हैं।
0: तो ये रेसिपी हमारे श्रोताओं ने भेजी थी और हमने पढ़कर सुनाई, और अगली बार किसी और रेसिपी की बात होगी। और अब घड़ी की ओर देखिए कि अब गाना बजाने का समय है और सुनाते हैं ये गाना। सुनाते हैं

0: आर पार फिल्म का गाना था, गीता दत्त की आवाज़ थी। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम बोली बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: श्रोताओं नमस्कार। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सितंबर महीने में पहला सप्ताह पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और इस महीने को पोषण माह के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस उपलक्ष्य में आज सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है आहार विशेषज्ञ यानी न्यूट्रिशनिस्ट यानी डाइटिशियन अदिति प्रभु को। अदिति प्रभु से हम जानकारी हासिल करेंगे आहार के बारे में और किस तरह के आहार लेने चाहिए। अदिति जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें बताइए कि आज का जो मुद्दा है न्यूट्रिशन आहार विहार और डाइटिशियन की कब जरूरत पड़ती है और न्यूट्रिशन क्या है।
2: हम जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं, लोग हमेशा यही सोचते हैं कि रोटी सब्जी दाल चावल ये हो गया मेरा न्यूट्रिशन। जबकि एक डाइटिशियन जब आपके खाने को देखती है, वो न्यूट्रिशन को थोड़े अलग तरीके से देखती है, जिसमें वो देखती है कि आपके प्लेट में या थाली में क्या है, रोटी सब्जी दाल चावल है कि नहीं और वो कितनी मात्रा में है और उसको कैसे हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल्स विटामिन्स में कंपेयर कर सके। हम ये देखते हैं कि क्या वो संतुलित है और किस मात्रा में आपको उसकी ज़रूरत है, क्या आप वो सही मात्रा में सही समय पे लेते हैं। तो न्यूट्रिशन अगर हम सर्वसाधारण इंसान को अगर समझाने जाए तो आपको ये देखना है कि खाने में ना कि सिर्फ रोटी सब्जी दाल चावल, बगैर आपको ये देखना है कि आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फाइबर ये कितनी मात्रा में है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन ज़िंदगी के हर पड़ाव पे ज़रूरी है। तो हर पड़ाव पे ये न्यूट्रिशन की ज़रूरत हर किसी के लिए अलग अलग होती है, ना कि हम जब पोषण की बात करते हैं लोगों को सिर्फ बचपन बीमारी ये सब याद आता है, मगर न्यूट्रिशन आपको प्रेगनेंसी में भी ज़रूरी है, आपको अगर आप खिलाड़ी हो स्पोर्ट्स करते हो तो तब भी आपको ज़रूरी है, आपको आपके पीरियड्स शुरू होने वाले हैं या आपके पीरियड्स रुकने वाले हैं तब भी आपको ज़रूरी है, और आपको समझना ज़रूरी है कि आपकी ज़रूरत क्या है।
1: तो ये बताइए कि कैसे समझें, ये जो ज़रूरत होती है एक आम इंसान को नहीं समझ में आता है कि एक जो इंसान सामान्य रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको कितनी डाइट की ज़रूरत है, कितने आहार की और न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, पोषकता की खासतौर से कितना पोषण चाहिए, ये किस तरह से इसका निर्धारण कैसे हो।
2: ये तो आप जब भी डाइटिशियन के पास जाएंगे तब आपको एकदम डिटेल में बताया जाता है, ताकि आपको आपके ज़िंदगी की आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी है, आपकी आदतें कैसी है, आप क्या काम करते हो, आपको क्या बीमारियां हैं या आपकी क्या खाने में कमियां हैं, आप जहां रहते हो खाने में क्या पूरी तरीके से पोषण मिलता है, उस आधार पे आपको ये बताया जाता है कि आपको किस चीज़ की किस मात्रा में ज़रूरत है। सर्वसाधारण इंसान को अगर मैं थाली के भाषा में समझाऊं तो उनकी थाली में एक चौथाई हिस्सा धान होना चाहिए, जो कि आपको ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट देगा, ताकत देगा आपकी दिन की काम करने के लिए,
1: ऊर्जा भी देगा,
2: ऊर्जा मिलेगी आपको। आपकी थाली में एक चौथाई हिस्सा सब्जी होना जरूरी है, जो कि मौसम के आधार पे जो भी आपके इर्द गिर्द मार्केट में आपके अवेलेबल हो वो ज़्यादा आपको लेनी ज़रूरी होती है,
1: वो भी मौसम के हिसाब से,
2: मौसम के हिसाब से, क्योंकि हर सब्ज़ी हर मौसम में मिलती नहीं है और हम आजकल ज़्यादा कर जो साल भर मिलते हैं वही सब्ज़ियाँ खाते हैं। इसके अलावा एक चौथाई हिस्सा आपके प्लेट में होना चाहिए आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो आता है वो ज़्यादातर अगर आप शाकाहारी हैं तो दाल, फिर आपके पल्सेस जैसे मूंग, चौली, राजमा, छोले, इसमें से आ जाता है। अगर आप दूध लेते हो तो दूध पनीर इसमें से आ जाता है, और अगर आप मांसाहारी है तो आपको मच्छी फिश चिकन इसमें से आपको मिल जाता है। और जो एक चौथाई हिस्सा है इसमें आपको ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा सलाद ऐड करें, थोड़ा सा आपका दही ऐड करें, क्योंकि दही जो होता है प्रोबायोटिक होता है, आपके पेट के लिए अच्छा होता है। ये सर्वसाधारण ये थाली है जिसमें आधा हिस्सा तो ज़्यादातर सब्जियों से भर जाता है। ये संतुलन जो है हर इंसान के लिए थोड़ा बहुत बदल जाता है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी बाकी की ज़रूरतें क्या हैं, उस पे ये निर्भर करता है।
1: जी, और ये जो आपने बताई सब्जी, दो सब्जियाँ थोड़ा आराम से उबली हुई या कम मिर्च मसाले वाली, नहीं तो फिर वो मसाला खा के दिक्कतें और हो जाएंगी। यहाँ पर एक गाना ज़रूरी है, कौन सा गाना सुने? हमें तो लगता है कि वो सादा खाना की बात है, तो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ।
2: क्यों नहीं, एकदम सही गाना चुना है आपने।
1: ज्वारभाटा फिल्म का गाना सुनते हैं।
3: ये समझो और समझाओ।

0: लोग स्वाद प्रेमी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फास्ट फूड की ओर बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। हम फास्ट फूड की बात तो आगे करेंगे, फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए और बुज़ुर्गों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए।
1: अगर हम बच्चों की बात करें, पहले तो स्तनपान बहुत ज़रूरी है, पहले 6 महीने तो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद धीरे धीरे आपके खाने में जो भी खाना आता है वो धीरे धीरे बच्चों को शुरू कर देना चाहिए। ये कोशिश करें कि उसमें नमक शक्कर ये वर्ज रहे, या आप उसे खाने में ना रखें।
0: अच्छा अच्छा ओके।
1: आप ज़्यादातर बच्चों को जो वो मौसम के फल है, सब्जियां हैं, दाल चावल है, इससे शुरुआत करें। जितना हो सके ये समझना लोगों को ज़रूरी है कि बच्चे जो है ये देखकर ज़्यादा सीखते हैं, ना कि जो उनको बोला जाता है। सो अगर उनके माता पिता बहुत ज़्यादा चुन चुन के खाते हैं तो बच्चों के ऊपर उतना ही असर होता है। बढ़ती उम्र के साथ आपकी खाने में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चों को सही मात्रा में छोटे छोटे अमाउंट में खाना देना ज़रूरी है। हर बच्चे की भूख अलग अलग होती है, तो कुछ माता पिताओं को लगता है हम कम खाना दे रहे हैं, कुछ को लगता है हम बच्चों को ज़्यादा दे रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। आपके बच्चों को जितना ज़रूरी है उतना जाना चाहिए। उसके खाने में जो मौसम में मिलने वाली सब्जियां हैं, फल हैं, वो होना ज़रूरी है। दूध दही इसकी मात्रा सही तरीके से होनी चाहिए, और प्रोटीन भी उतना ही ज़रूरी होता है। मतलब दाल पल्सेस जैसे राजमा, छोले, पनीर, इसका भी आपको सेवन सही मात्रा में रखना ज़रूरी है। ये वही वक्त है ज़िंदगी का जहाँ पे कुपोषण ग्रामीण लोगों में ये बहुत देखा जाता है, क्योंकि कभी कभी लोगों के पास सही खाना होता ही नहीं है। और कई बार ऐसे होता है खाना तो है मगर लोगों को पता नहीं है कि उनको ये बच्चों को देना चाहिए या नहीं। जो पहले के ज़माने में था, आपके बुज़ुर्ग घर में होते थे जो आपको बताते थे कि आप अपने बच्चों को ये दे सकते हैं, आज कईयों के पास वो नहीं है साथ। जितना आप शहर की तरफ जाए, न्यूक्लियर फैमिलीज़ बहुत बढ़ गई है, तो वहाँ पे माता पिता बहुत डर डर के बच्चों को खाना देते हैं कि ये दूँ ये नहीं दूँ, ये सही है ये गलत है। इस सोच में कई बार बहुत खाना कम चला जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान देखना ज़रूरी है। वैसे ही अगर हम बुज़ुर्गों की बात करें तो बुज़ुर्ग जो होते हैं उनको दांतों के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनको बाकी के हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, जैसे उनकी भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, तो उनके हिसाब से उनका खाना भी बहुत संभाल के बना के उनको देना ज़रूरी है। जितना बचपन में खाना ज़रूरी है उतना बुज़ुर्गों के लिए भी खाना ज़रूरी है। उनको उस तरीके का खाना देना चाहिए जो वो खा सके। अक्सर बुज़ुर्ग जो होते हैं वो नहीं बदलते बहुत सही से, तो बहुत रिजिड होते, तो ऐसे वक्त पे दिक्कत आपको बहुत आ सकती है। मगर उनको ये समझाते हुए कि आपको ये ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप बुज़ुर्ग हो गए आपके बॉडी में मसल लॉसेस बहुत हो जाते हैं, आपके मेडिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है होना बट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आहार के ऊपर बहुत असर पड़ जाता है। तो ये वक्त भी ऐसा वक्त है जहाँ पे खाने में प्रोटीन पे ध्यान देना ज़रूरी है। क्या फल सब्जियाँ सही मात्रा में जा रही है, सही वक्त पे जा रही है, ये देखना ज़रूरी है। और उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है क्या ये पूरी तरीके से संतुलित आहार पूरे दिन में खा रहे हैं।
0: अदिति जी, मेरे जहन में एक बात आ रही है कि विटामिन्स कितना ज़रूरी है शरीर के लिए, क्योंकि आहार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है विटामिन्स। और ड्राई फ्रूट और फलों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि ड्राई फ्रूट्स खा लें तो हमें बहुत सारा पोषक तत्व तो मिल जाएंगे। तो ज़रा हमारे श्रोताओं को बताइए कि कौन से ड्राई फ्रूट्स में किस तरह के विटामिन्स होते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाएँ वो।
1: अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि अगर आपको विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत है तो सबसे ऊपर आते हैं फल और सब्जियाँ। और इसीलिए मैंने कहा कि मौसम के आधार जो भी आपके आजू बाजू में अवेलेबल है वो आपको लेना ज़रूरी है। जैसे बारिश के मौसम में कुछ सब्जियां मिलती हैं वो बाकी वर्ष भर आपको नहीं मिलेंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि वो आपको उस समय के लिए जो आपको विटामिन्स मिनरल चाहिए वो उतना प्रोवाइड करती हैं
0: जी।
1: तो सबसे पहले आपके खाने की लिस्ट में, आपके टॉप ऑफ द लिस्ट में होना चाहिए सब्जियां और फल जो कि मौसम के आधार पे हो। जैसे अगर हम मुंबई शहर की बात करें तो यहाँ पे आपको मार्केट में ज़्यादातर एप्पल, पेयर, उसके अलावा पपीता मिल जाएगा। मगर मौसम के आधार पे, जैसे अभी ये जो मौसम है ये आलू बुखारा का है, या अनार आपको अच्छे से मिल जाएंगे, आपको ये फल ज़्यादा खाने ज़रूरी है। जैसे सब्जियाँ हो गई, तो इस मौसम में बारिश के आपको बहुत ज़्यादा, हम जो रान भाजी बोलते हैं मराठी में या हिंदी में, हम उसको जो
0: पत्ती
1: वो
0: वाली सब्जी,
1: पत्ती वाली सब्जियाँ, मगर जो लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होती है, ऐसी वाली बारिश के मौसम में कम ऐसी सब्जियाँ आती है, जैसे फोड़शी हो गया, टाकला हो गया, वो आपको बारिश में ही मिलेगा।
0: अच्छा।
1: और वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अभी कंठोला आ गया, आप तो कंठोला आपको अभी ही मिलेगा, आपकी तबीयत खुद ही संभल जाएगी, आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको फाइबर की गोलियां या कुछ लेना नहीं पड़ेगा पेट साफ करने के लिए। तो ऐसी चीजें आपको मौसम के आधार पे खानी चाहिए। हम फिर मुड़ते हैं ड्राई फ्रूट और नट्स के बारे में। नट्स और ड्राई फ्रूट्स, ये दो चीज़ें अलग अलग है।
0: जी, जी।
1: लोग अक्सर इनको कंफ्यूज कर देते हैं। नट्स वो चीज़ हैं जो कि आपको विटामिन मिनरल देते हैं, जैसे बादाम हो गए, उसमें विटामिन ई आ गया आपका, उसमें हेल्दी फैट आ गए, थोड़े बहुत प्रोटीन भी आ गए जो आपकी तबीयत के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर आ गए अखरोट या वॉलनट जिसे कहते हैं, इसमें आपको विटामिन ई आया, ओमेगा आया, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा ब्राज़ील नट्स आ गया। अभी ब्राज़ील नट के लिए तो हिंदी नाम कोई है नहीं, ना ही कोई देसी नाम है उसका, उसे ब्राज़ील नट ही कहा जाता है, वो कि सेलेनियम रिच होता है, जिसको इन्फ्लेमेशन है, थायराइड का इशू है, उसके लिए वो बहुत फायदेमंद हो जाता है। वैसे ही जो कद्दू होता है, उसके बीज होते हैं पंपकिन सीड्स, बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत के लिए अच्छे होते हैं, उसमें मैग्नीशियम बहुत होता है। तो नट्स एंड सीड्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा आते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं? जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं, अभी जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं उसमें पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, मगर इसका दूसरा हिस्सा ये है कि उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है,
0: बढ़ जाता है।
1: अभी लोग क्या सोचते हैं, ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे हैं, किशमिश खा लेते हैं, अंजीर खा लेते हैं, और एक से तो मन कभी किसी का भरता नहीं है, तो चलो मुट्ठी भर उठा लिया, और फिर खुद को ही बताते हैं कि क्या है इसमें, ड्राई फ्रूट और नट्स तो हेल्दी होते हैं तो खा लेते हैं, ये नहीं सोचते कि इससे आपकी शक्कर बहुत बढ़ सकती है, ब्लड शुगर लेवल।
0: जी जी।
1: और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आपको पता होना चाहिए कि ड्राई फ्रूट और नट्स वो ऐसी चीजें हैं जो हेल्दी है, जो जरूरी है, मगर एक कम मात्रा में खानी चाहिए, ना कि वो चने सिंह की तरह आप पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके खाते रहे।
0: जी बिल्कुल। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना?
1: क्यों ना देश की धरती सोना उगले, ये थोड़ा सा सुन ले, क्योंकि मुझे लगता है हमारी देश की धरती है वो वाकई में हमें सोना देती है, जो मौसम की जो सब्जियां हैं, फल है, अनाज है, उससे हमारी सेहत तो वो ऐसे ही संभाल लेती है, तो उससे थोड़ा सा सेलिब्रेट किया जाए।
0: जी। उपकार फिल्म का गाना है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद अदिति जी हमें बताइए, आपने बुजुर्गों की बात की और बच्चों के न्यूट्रिशन की बात की, यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है वो है महिलाओं के पोषण की। महिलाओं के पोषण के प्रति परिवार बहुत लापरवाही भी करता है, खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए प्रचुर मात्रा में पोषण की जरूरत पड़ती है, और ऐसी महिलाएं जो श्रमिक वर्ग से आती हैं और गाँव में खेतों में काम करती हैं, तो इनके बारे में बताइए क्या कुछ इनके लिए जरूरी होता है। कई बार ये भी होता है कि उनके पास खाने की चीजें नहीं होती हैं, ऐसी स्थिति में क्या कुछ खाएं?
1: तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं थोड़ा एक मुद्दा लाना चाहती हूँ यहाँ पे
0: जी
1: कि जिंदगी के हर पड़ाव पे जो आपको आहार या पोषण की ज़रूरत होती है उसके लिए अलग-अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपको उस वक्त पे सही तरीके की मदद कर सकें। जैसे डॉक्टर्स में स्पेशलाइजेशन होता है वैसे डाइटिशियंस में भी होता है, और गर्भवती महिलाओं के लिए या आप शिशुपालन के वक्त आपको जो भी सहायता चाहिए लैक्टेशन के लिए वहाँ पे आपको अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपकी पूरी तरीके से इस समय में मदद कर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी औरत को अकेले महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी की बात करें जिंदगी का एक बहुत अहम चरण है आहार, इसमें बहुत लोग सिर्फ प्रेगनेंसी की ओर से देखते हैं, तो मैं तो कहूंगी कि आपको आपका पोषण प्रेगनेंसी के पहले से देखना ज़रूरी है। जब भी आप सोचे कि आपको प्रेगनेंसी धारण करनी है ये आपको आपका पोषण उसके पहले से
0: शुरू हो जाना
1: संभालना
0: चाहिए।
1: चाहिए, मतलब आपके सही विटामिन्स मिनरल्स आपका आहार, क्योंकि पहले 3-4 महीने में आपको नौशिया थोड़ा सा उल्टी होना है, बाकी सब प्रेगनेंसी के इश्यूज आ सकते हैं,
0: जी
1: कुछ खाने आपको सूट नहीं करेंगे तो ये आप तब ठीक करने जाओगे तो ये मुश्किल पड़ जाता है। तो आपको आपके प्रेगनेंसी होने के पहले आपको थोड़ा सा ख्याल रखना खुद का ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है कि आपके विटामिन मिनरल्स जैसे कि विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीज़ें आपकी सही मात्रा में है या नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुद के लिए और बढ़ते हुए बच्चे के लिए खाने की ज़रूरत होती है। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर्स में तीनों के वक्त खाना अलग अलग मात्रा में खाया जाता
0: जी
1: है, उसकी रेशोज भी अलग अलग होते हैं जिसकी प्रमाण होते हैं। अगर मैं एकदम सहज भाषा में बताऊं, जो मैंने थाली की बात की थी पहले, जहाँ पे 1/4 धान है, 1/4 प्रोटीन है, आप थोड़ी मौसम वाले सब्जियाँ, फल और दही दूध सलाद ये थोड़ा सा खा लें, तब भी आप आपकी सेहत का ख्याल रखोगे, ये बेसिक हो गया। अगर कोई आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपकी ज़रूरतें बढ़ सकती हैं
0: जी
1: जो कि आप संभाल सकते हो सिर्फ आहार के बलबूते पे।
0: जी ये यहाँ पर एक बात और है, एक तो माहवारी के समय महिलाओं के लिए और न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, दूसरा मेनोपॉज के समय, क्योंकि
1: जी
0: उस समय भी हमने सुना है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और इसमें तीसरा एक मुद्दा है लड़कियों के लिए जो खेल की दुनिया में जाना चाहती हैं, खास तौर से लड़कियों के
1: जी
0: लिए। खेल की दुनिया में तो यूँ लड़कों के लिए भी बहुत ज़्यादा पोषण की ज़रूरत पड़ती है, तो
1: बहुत
0: क्या
1: ज्यादा
0: स्पेशल कोई डाइट होती है?
1: जी, आप जो खेल में खेल रहे हो उस खेल के आधारित आपका पोषण जाता है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप क्या बैट्समैन हो, बॉलर हो, फील्डर हो, आप कौन से एज ग्रुप में आप खेल रहे हो, इसके बेसिस पे भी आपका खाना पूरी तरीके से बदलता है।
0: जी
1: जब हम स्पोर्ट्स वालों की बात करें तो उनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनको विटामिन्स मिनरल्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि उनको परफॉर्मेंस पे ज़्यादा है कि आप साल भर तो प्रैक्टिस कर लेते हैं मगर वो एक खेल आपको बता देता है कि आप सही खेले हो या आपने खुद का ख्याल सही से रखा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको, अगर आप महिला हैं और खेल की दुनिया में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि आपको आपके आहार के बारे में देखना ज़रूरी है, आपका पोषण सही होना चाहिए, जो कि लोग तो स्पोर्ट्स के पीछे, स्पोर्ट्स अच्छे कोच हो, अच्छे ट्रेनिंग मिले, इसके पीछे लग जाते हैं मगर आहार के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ज़्यादातर मैं ये देखती हूँ कि उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम रहती है या वो सही तरीके से नहीं खाते, क्योंकि वो उस वय में है जहाँ पे सुंदरता भी बहुत ज़रूरी है।

0: पूरे दिन में क्या खाते हो और कितना संतुलन आप मेंटेन करते हो, ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको फाइबर की बहुत जरूरत होती है। प्रोटीन आपको नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है, एकदम ज्यादा नहीं बट सही मात्रा में, जो कि आपको खाने से आराम से मिल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको आपका प्रोटीन मिल रहा है। विटामिन्स जैसे विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, इस चीजों को भी आपको ध्यान देना पड़ता है। फिर अगर आपको इंजरी हो गई तब भी आपका पोषण बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि आपको रिकवरी जल्दी करनी होती है, तो तब प्रोटीन की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। विटामिन मिनरल्स जैसे ओमेगा हो गया या विटामिन डी हो गया, ये बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरी पड़ जाता है। तो खेल के हिसाब से आपका पोषण बदल जाता है, आप कौन से लेवल पे खेल रहे हो इसके ऊपर भी बहुत बदल जाता है। आपका खेल क्या डिमांड करता है, जैसे कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें आपके बॉडी का फैट परसेंटेज एक सर्टेन अमाउंट में होना चाहिए,
1: जी
0: जो शरीर में चर्बी होती है वो एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से ही चलती है। आप ज्यादा करोगे तब आपकी परफॉर्मेंस पे परिणाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हर खेल के हिसाब से थोड़ा सा पोषण बदला जाता है।
1: जी बिल्कुल। एक गाना सुने
0: जी,
1: कौन सा?
0: क्योंकि हम स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ना कोई सक दे इंडिया का बढ़िया सा गाना हो जाए।
1: सुनते ही ये गाना।

0: अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग अवस्था के लिए अलग अलग डाइटिशियन होते हैं, ये नई बात है हमारे श्रोताओं के लिए। और आपने जिक्र किया कि आप पेट की तमाम बीमारियों के बारे में डाइट तय करती हैं, पेट की तमाम समस्याओं के बारे में आप अवेयर करती हैं, जागरूक बनाते हैं हमारे श्रोताओं को। तो बताइए कि पेट की किस समस्या के लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए और कितना संतुलन होना चाहिए आहार में।
1: सर, ज्यादातर मेरे पास आने वाले लोग होते हैं उनको एसिडिटी, ये बहुत ज्यादा मात्रा में देखी जाती है
0: जी।
1: इसके अलावा किसी को डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, पचन क्रिया ठीक नहीं काम कर रही है, या किसी को IBS, IBD ये थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं। डाइजेशन रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा केसेस आ जाते हैं, क्योंकि पेट आपका दूसरा दिमाग है, तो आपके दिमाग पे, संतुलन पे, आपके काम पे, सब पे असर पड़ने वाला है। और मुख्यतः क्या हो जाता है कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो जो आप खा भी रहे हो ना वो शरीर को लगेगा ही नहीं।
0: जी जी,
1: छोटे छोटे बदलाव बहुत काम आ जाते हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बदलाव जरूरी नहीं होते कभी कभी। जैसे अगर मैं बोलूँ तो हर कोई चाहता है कि

0: सुबह शुरुआत हो एक कड़क प्याली चाय के साथ
1: से, हाँ,
0: और वो चाय के साथ होती है फिर दो बिस्किट या फिर एक टोस्ट,
1: हाँ।
0: और वो चाय भी आपकी एसिडिटी के लिए एक बहुत अच्छी दोस्त होती है।
1: जी,
0: अगर एसिडिटी के इश्यूज हैं तो आपको सबसे पहले तो क्या आप सही वक्त पे खाते हो, और क्या ये वक्त आप हर रोज उसी वक्त पे खाते हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है।
1: अच्छा,
0: दूसरी चीज, आप वो वक्त पे क्या खा रहे हो। जैसे आप बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाओगे, मसालेदार चीजें खाओगे, तो आपको एसिडिटी बढ़ने ही वाली है। और एसिडिटी ऐसी चीज है कि आपको एक दिन का उपाय नहीं है वो, आपको जो भी आप उपाय कर रहे हैं वो आपको करीबन 3 से 4 हफ्ते करना पड़ेगा, तब जाके आपकी एसिडिटी कहीं जाके कम हो सकती है। तो सही वक्त पे खाना, सही क्वांटिटी में खाना, ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर मौसम में जो फल होते हैं, जैसे जब आपको एसिडिटी होती है, ज़्यादातर मेलन्स, कलिंगड़ हो गया या फिर तरबूज हो गया, ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि वो ठंडा देता है, आपके पेट को राहत देता है। मगर ऐसा भी होता है कुछ लोगों को उससे भी तकलीफ होती
1: जी, ब्लोटिंग होने लगती
0: बहुत
1: है
0: बहुत ज़्यादा। जैसे ककड़ी ऐसी चीज़ है जो आपको फ़ायदा दे सकती है मगर किसी को तकलीफ दे सकती है।
1: जी।
0: तो आपकी शरीर को क्या ज़रूरी है ये देखना ज़रूरी है, और उस हिसाब से आपका आहार होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 3 मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान दोगे, आपकी नींद, आपका पानी और आपकी खाने का समय और मात्रा। ये 3 चीज़ें आपने संभाल ली और आपने छोटे छोटे क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा खा लिया पूरे दिन में, तो आप सही रहोगे, आपको एसिडिटी की दिक्कत कम होगी। और जितना हो सके थोड़ा स्वाद को दुय्यम स्थान देके पहले पोषण के ऊपर ध्यान देंगे तो आपकी एसिडिटी आराम से संभल जाएगी।
1: इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है IBS, तो इसकी समस्या को दूर करने के लिए, मतलब ये सारी गैस, एसिडिटी, पित्त, IBS, इन सब से राहत पाने के लिए खाने वाली कौन सी चीजें जिसे अपना दोस्त बनाएं, और कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें दूर भगा दें, बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: IBS और IBD थोड़ा एडवांस लेवल की पेट के इश्यूज हैं, जहाँ पे आपको लो फॉडमैप के खाने की ज़रूरत होती है। आपको डाइटिशन के साथ काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपके खाने में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। बाकी के जो आपने बातें की उसमें आपके खाने में ज़्यादातर, जैसे मैंने कहा, कम मसालेदार, कम खड़े मसाले जहाँ यूज़ हो ऐसे खाने, कम मात्रा में कम तेल कम मसाले डाल के पकाए जाए और खाए जाए, तब आपको बहुत फायदेमंद देते हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि एसिडिटी और गैसेस के मामले में, कि आपकी दिन की शुरुआत और दिन का अंत, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब आप सबसे पहले क्या खा रहे हो और आपका रात का खाना वो पूरे दिन के सभी खाने में से थोड़ा हल्का हो और वो थोड़ा जल्दी हो, सोने के कम 2-2.5 से 3 घंटे पहले हो, ये बहुत जरूरी है।
1: जी जी बिल्कुल। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों की कितनी अहमियत है?
0: बहुत ज्यादा। बहुत कम लोगों को ये पता है कि मानसिक जो भी आप महसूस करते हो इसके लिए भी आपका आहार बहुत काम आ सकता है। बहुत बार ये होता है कि लोगों को विटामिन की कमियां होती है, मिनरल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी एंजाइटी ज़्यादा हो जाती है, बेचैनी ज़्यादा हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया और रील्स की
1: डिप्रेशन
0: देख के लोग बड़ी आसानी से डिप्रेशन, एंजाइटी के अल्फाज यूज कर लेते हैं, बट कई बार ये सिर्फ विटामिन और मिनरल की कमियों की वजह से होने वाली चीजें होती है, जहाँ पे आप थोड़े समय के लिए थोड़े से बेचैन हो जाते हो या आप काम पे ध्यान नहीं दे पाते। और जैसे ही आपने विटामिन मिनरल्स को सही कर दिया, आपको दिक्कतें कम हो जाती है। जब आपको कोई मानसिक बीमारी है जो कि डायग्नोस्ड हो और डॉक्टर ने आपको उसका डायग्नोसिस दिया हुआ हो, तो डायग्नोसिस के बेसिस पे भी आपका आहार बदलता है। जैसे कि आपको ADHD है, डिप्रेशन है, MDD है, तो हर एक बीमारी के हिसाब से आपका आहार थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। मानसिक चीज़ों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपके खाने में क्या ज़्यादा होना चाहिए, तो उसमें ज़्यादातर यहाँ पे नट्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है क्योंकि उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। प्रोटीन का बहुत महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे ADD है या ADHD है, इसमें पैकेट फूड में जो रंग आते हैं वो उनके सिम्टम्स को बहुत ज्यादा एग्रेवेट करते हैं, तो वो अवॉइड करना या नहीं खाना, उनसे दूर रहना या शक्कर से दूर रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फल सब्जी जितने विविध रंग के आप अपने प्लेट में रख सको वो उतना अच्छा। WHO बताता है कि हफ्ते में आपके कम से कम 30 इंग्रेडिएंट होने चाहिए। आप अनाज सब्जी फल या कोई धान है दाल है इसको गिन के देखिए क्या आप हफ्ते भर में 30 से ज्यादा इंग्रेडिएंट खाते हैं। भारत ऐसा देश है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स आसानी से मिल जाते हैं।
1: अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर फल जो लोग खा नहीं सकते हैं, सुबह बहुत जल्दी निकल जाते हैं, रात को देर से आते हैं, तो उनका ये सिद्धांत होता है कि शनिवार रविवार को बैठ के इकट्ठा फल खा लेते हैं और उस दिन खाना स्किप करते हैं या थोड़ा बहुत खाना खाते हैं अनाज, तो ये सही तरीका है क्या?
0: नहीं, हर चीज़ का एक रास्ता होता है। जैसे ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं जो सुबह 7 बजे निकलते हैं और 11 बजे 10 बजे आ जाते हैं, उनका एक सही उपाय है कि आप जहाँ काम करते हो ना वहाँ आजू बाजू में जो फल वाला हो उसके साथ जाके थोड़ी सी गपशप कर लो और उनको बता देना कि देखो भाई मुझे हर दिन का एक फल चाहिए। और ये मैंने किया हुआ है कि आप वो फल वाले से बात करो कि मैं हर दिन एक फल लेकर जाऊँगा, आपको वही सुबह मिल जाएगा और वो आपको याद दिलाएगा कि आपने फल लिया नहीं।
1: जी बिल्कुल, और होता उल्टा है कि लोग फास्ट फूड की दुकान ढूंढ लेते हैं और जाके फटाक से पैक करके खा लेते हैं, अमूमन यही होता है, वहाँ पर समोसा मिलेगा, बर्गर मिलेगा, आइसक्रीम शॉप ढूंढ लेते हैं। तो भाई खाने का असर सेहत पर होता है, गाने का असर भी बहुत अच्छा असर होता है। कौन सा गाना सुनवाएं आपकी पसंद का?
0: आप ही बता दीजिए कोई खाने के ऊपर गाना।
1: ऐसा गाना सुनते हैं जिसमें कि आइसक्रीम भी है और चॉकलेट भी है।
0: बढ़िया,
1: तो चलिए यही गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।
2: चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम टॉफियां पहले जैसे अब मेरे शौक है कहां गुड़िया खिला।

0: अदिति जी, अभी एक बड़ा ही जरूरी मुद्दा है बच्चों में, खास तौर से, वो चाहे बच्चे में चाहे बड़े भी, लेकिन बच्चों में ज्यादा है, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो रहा है। बार बार किसी को सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, खांसी होती है, तो इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए क्या कुछ खाना अपने जीवन में जोड़ ले रोजमर्रा की जिंदगी में, कुछ बताइए।
1: सही बात बोलूं तो आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मजबूत करने के लिए कोई अलग चीज़ कर...

0: ना जरूरी नहीं होता है।
1: जी
0: अगर आप अपने खाने को थोड़ा ध्यान से देखें, आपका खाना कहाँ से आ रहा है, आप कैसे बना रहे हो और किस तरीके से खा रहे हो, तो आपकी समस्या की राह यही है।
1: जी जी
0: अक्सर क्या हो जाता है, लोग जैसे मैंने कहा जो मौसम में आपको फल सब्जियां मिल रही है वो नहीं खाते, बच्चे दूध नहीं पीते हैं या उनको खट्टी चीजें पसंद ही नहीं होती है। इसमें क्या हो जाता है कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मजबूत करने के लिए आपको विटामिन सी चाहिए, तो ना नींबू जा रहा है यहाँ पे, ना
1: जी
0: संतरा जा रहा है, ना आप कोई विटामिन सी पेरू जा रहा है, तो इसमें आपको दिक्कतें आ जाती है। जैसे मैंने कहा, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी थालियाँ ना छोटी छोटी छोटी होती जा रही है, वही चार सब्जियाँ, वही दाल चावल, वही रोटी, हम अलग कुछ करने ही नहीं जाते, जिसके वजह से आप वो ही चार सब्जियों के गुण पाओगे, आपको
1: बिल्कुल
0: उसके आगे कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे बारिश के मौसम में आपको सज्जन फली की पत्ते मिलते हैं, मुरिंगा जिसे कहा जाता है,
1: मुनगा
0: वो इतना आयरन
1: सिंचन।
0: रिच होता है, फाइबर रिच होता है, मगर कितने लोग जानते हैं। मुझे अक्सर पूछा जाता है इसे बनाया कैसे जाए, पर ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपने बच्चों के खाने में भी डाल सकते हैं, रोटी में थोड़ा सा डाल दिया, दाल में थोड़ा सा डाल दिया, जैसे मैंने कहा कि आप ये चीज पे ध्यान दो कि आपके थाली में कितने रंग हैं, कितनी तरीके के इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हो, और आप अपनी इम्यूनिटी को आराम से संभाल पाओगे।
1: जी बिल्कुल
0: आपको कोई भी काढ़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी अलग से दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर हम क्या करते हैं, हमें सबको ना शॉर्टकट बहुत पसंद होता है। तो चलो इम्यूनिटी बढ़ानी है, सर्दी खांसी होती है तो हल्दी का पानी बना देंगे, बट हम भूल जाते हैं हम भारतवासी हैं, हम हल्दी वैसे भी खाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं,
1: जी जी जी
0: और हम जब हल्दी का पानी बनाते हैं हम अकेले हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें थोड़ी सी दालचीनी भी डालेंगे, थोड़ा काली मिर्च भी डाल देंगे, वो एकदम गरम मसाले का पानी हो जाता है।
1: बिल्कुल। क्या कुछ ऐसे फूड भी हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमें रोज मिलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है?
0: ज्यादातर अगर आप सब्जी और फलों के ऊपर ध्यान दें तो आपकी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वही चीज़ है जो हम कम खाते हैं। जैसे दिन में आपको कम से कम 200 से 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए,
1: जी
0: हम
1: जी
0: यहाँ पे 200-300 ग्राम चार लोगों के परिवार के लिए खाते हैं
1: बिल्कुल। एक पाव सब्जी लेके
0: बस।
1: बस मसाला डाल के बन
0: हाँ,
1: जाता
0: और
1: है पूरा।
0: उसमें ढेर सारा आलू, ढेर सारा प्याज और सब्जी बन गई, वहाँ पे दिक्कत आ जाती है।
1: जी बिल्कुल।
0: आप मेटाबॉलिज्म की बात करें तो आपको बेसिकली आपके खाने के संतुलन पे ध्यान देना जरूरी है, आप उसको कम ज्यादा करने नहीं जा सकते,
1: जी
0: आप
1: जी
0: उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं।
1: अदिति जी, आजकल एक फैशन हुआ है कि अपने वजन को कम करना है, कंट्रोल रखना है। लड़कियों में तो ये प्रवृत्ति बहुत देखी जा रही है कि दुबली पतली रखना, फिगर, जीरो फिगर। लड़के भी आजकल कम नहीं है, होड़ में शामिल है, और उसमें जिम संस्कृति आ गई है। हर तीसरा लड़का या तीसरा व्यक्ति जिम जाएगा। तो ये जो वर्कआउट है, वर्कआउट के पहले कितना आहार लेना चाहिए, वर्कआउट के बाद कितना आहार लेना चाहिए?
0: जी, वजन के पीछे भागना अच्छी बात है, बहुत ज्यादा भागना थोड़ी सी गलत बात हो जाती
1: जी
0: है। सिर्फ वजन के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि ये इंसान सही में तंदुरुस्त है या नहीं। कभी कभी लोग वजन में थोड़े से हैवी होते हैं मगर उनके बॉडी में मसल की मात्रा ज्यादा होती है और फैट परसेंटेज कम होता है।
1: जी जी
0: कई बार ऐसे होते हैं कि दुबले पतले होते हैं लोग मगर उनका
1: जी
0: फैट परसेंटेज जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है।
1: जी जी
0: इसके लिए हम कहते हैं कि सिर्फ वजन के आधार पे या बीएमआई के आधार पे किसी की भी तंदुरुस्ती के ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते।
1: जी बिल्कुल
0: जब हम बात करते हैं वर्कआउट की, आज क्योंकि हम ऐसे दौर पे रहते हैं जहाँ बाहर की खेल कूद, ट्रैवल, ये सब थोड़ा सा कम हो गया है, जहाँ हम पहले चल के जाया करते थे अभी एस्केलेटर्स हैं, बस है, रिक्शा है, बाइक है, तो हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम कदम इस्तेमाल करते हैं वही कम है। लोग 1,000-2,000 पैदल इतना ही चल लेते हैं, उसके ऊपर वो चलते ही नहीं है। और इसके लिए जिम्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तरीके का शारीरिक व्यायाम भी उतना ही ज़रूरी है। तो जब आप जिम करते हो, जिम में आप क्या करते हो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक रूटीन होना ज़रूरी है। बस अखाड़े चले गए और आपको जो पसंद आया आपने कर लिया, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक ही समय या एक समय जो होता है, जिसे ये नहीं कहते कि 9 बजे तो 9 बजे जाओ, मगर सुबह के समय पे जाके वर्कआउट करो, तो एक वो टाइम फिक्स करना ज़रूरी है। जब भी आप वर्कआउट करने जाए तो वर्कआउट के पहले थोड़ा सा तो खाना ज़रूरी है, जैसे कोई भी फल खा लीजिए, या अगर आप नाश्ता कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, आइडियली डिनर के बाद तो वर्कआउट हम मना कर देते हैं, बट लंच या नाश्ते के बाद जो हम करते हैं वर्कआउट, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपको कभी भी वर्कआउट करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और जब भी वर्कआउट किया जाता है तब मसल टूटते हैं, उनको रीबिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वर्कआउट के बाद आप कितने समय में क्या खाते हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वर्कआउट के बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा सही में होनी चाहिए, कि जो भी आप प्रोटीन इस्तेमाल करें, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चीला बना दीजिए, या कोई दाल एक कटोरी खा लीजिए, या थोड़ा सा पनीर ले लीजिए, या आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा ले लीजिए, तो आपका प्रोटीन थोड़ा सा संभल जाता है। मगर प्रोटीन के साथ थोड़ी मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब आप फल इस्तेमाल करो या कोई भी धान इस्तेमाल करो, ये बहुत आसान कर देता है। और वर्कआउट के बाद 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपका खाना ये हो जाना चाहिए।
1: जी, एक गाना सुने।
0: जी,
1: कौन सा?
0: आप भी बता दीजिए कोई गाना।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: अदिति जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पित्त की समस्या है, आईबीएस की समस्या है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से उन्हें मना करते हैं कि खट्टी चीज़ें मत खाओ, और नींबू तो खट्टा ही होता है, और नींबू लोगों को पसंद भी है, और ये कहते हैं कि नींबू के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। तो क्या करना चाहिए? मतलब अगर नींबू खाओ तो एसिडिटी बढ़ती है, नहीं खाओ तो दिक्कतें होती है, जिसमें संतरा, नींबू और बहुत सारे साइट्रस फ्रूट हैं शामिल।
1: मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान को देखना चाहिए कि उनको क्या सूट कर रहा है क्या नहीं। जैसे आपने कहा, किसी किसी को नींबू से तकलीफ होती है, किसी को बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपको नहीं होती, आराम से खा सकते हो। अगर आप सिर्फ नींबू की बात करें या विटामिन सी की बात करें, आपको वो चाहिए आपके लाइफ में या तबीयत के लिए, तो सिर्फ नींबू एक चीज़ नहीं है जहाँ से विटामिन सी मिल सकता है। अगर मैं बोलूँ तो नींबू तो अक्सर गलत ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार नींबू काट के फ्रिज में रख देते हैं आधा, या नींबू काट के बहुत घंटे खुला रहता है। अगर विटामिन सी ऐसे खुला रख दिया तो
0: ओहो
1: वो ख़राब हो जाता है, निकल जाता है उसमें से।
0: जी,
1: तो आप सिर्फ खटास के लिए उसको खा रहे हो, विटामिन सी के लिए तो खा ही
0: ओहो
1: नहीं रहे हो।
0: जी,
1: वैसे ही नींबू आप एकदम गर्म उबलते हुए पानी में डालोगे तब भी आपका नींबू का फ़ायदा नहीं होगा। नींबू सिर्फ खटास करेगा, वो विटामिन सी आपको नहीं देने वाला है। तो आपको नींबू किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए खाना बनने के बाद ऊपर से नींबू देते हैं। आप विटामिन सी की अगर बात करें तो नींबू छोड़ के भी आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। आप जैसे कीवी इस्तेमाल करें या संतरा इस्तेमाल करें। आपको अगर खट्टी चीज़ें मना की है तो आप पेरू का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होता। आप मीठा वाला ले लो,
0: अमरूद।
1: अमरूद, तो उसमें आपको अच्छा खासा विटामिन सी मिल जाएगा। जो बेल पेपर्स होते हैं, कैप्सिकम, वो भी आपको बहुत ज़्यादा विटामिन सी भी दे सकते हैं। नींबू तो एक ही चीज़ है, आप संतरा, कीवी, ये सारी चीज़ें भी आराम से ले सकते हैं। कीवी देसी फल नहीं है, बट वो बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी का। हमारे देसी ऑप्शंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे
0: आंवला,
1: आंवला एक चीज़ है। उसके अलावा पपनस, पोमेलो बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हिंदी का मुझे वर्ड नहीं पता है, बट वो भी ग्रेप फ्रूट बेसिकली, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। अमरूद का मैंने आपको बता दिया, तो
0: करौंदा,
1: करौंदा भी विटामिन सी है, बट करौंदा भी दो तीन तरीके के हैं। जैसे नॉर्थ में फालसा है, उसको भी करौंदा बोलते हैं, और महाराष्ट्र का भी करौंदा अलग है, तो उसमें थोड़े थोड़े अंतर है। आपको आंवले की तरह छोटे आंवले भी आते हैं जो भी विटामिन सी युक्त होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या जिसको स्टार ये बोलते हैं, स्टार आंवला, तो वो भी आप इस्तेमाल कर
0: जी,
1: सकते हो।
0: आंवले के भी तो बहुत सारे रूप हैं। आंवला लोग उबाल के खाते हैं, चटनी बना के खाते हैं, और अचार कहते हैं, वो भी फायदेमंद है। तो इसमें फायदे वाले तत्व किस में होते हैं, बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जितनी हो सके आप कम से कम उसको प्रोसेस करके खाएं, उसमें सबसे ज़्यादा फायदा है। मगर मैं समझती हूँ कि कच्चा आंवला खाना सबके लिए नहीं पॉसिबल है, तो आप जिस भी रूप से खा सकते हो थोड़ा बहुत खा लीजिए। उसको मुरम्बा बना के या मीठा करके वो अवॉइड कीजिए। चटनी चल जाएगी, अचार चल जाएंगे, बिना तेल के या कम तेल में बने हुए अचार चल सकते हैं। बट आंवले का जो सीजन है उसमें आप चटनी के रूप में उसको आराम से खा सकते हो।
0: जी, एक बात और अदिति जी, फलों के साथ कुछ लोग नमक का प्रयोग करते हैं, मसाला नमक आजकल प्रचलित है, या फिर काला नमक, खास तौर से संतरे में, नींबू के साथ भी, या और भी फलों के साथ खाते हैं, अनार में भी लोग नमक डाल के खाते हैं, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, सही है या गलत
1: वो
0: है?
1: लोग अक्सर इसे स्वाद के लिए खाते हैं, ठीक है। हम अभी इस दौर में जी रहे हैं जहाँ हम खाने में बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये नमक की मात्रा जो बहुत ज़्यादा है वो हमें बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज की प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। लोग सफ़ेद नमक से मुड़ के अभी डेजर्ट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, मतलब हिमालय का नमक, या काला नमक, सेंधा नमक, और अलग अलग तरीके के नमक यूज़ कर रहे हैं। इसकी दिक्कत ये है ना कि इन नमक को टेस्ट नहीं किया जाता बहुत बार, इनमें क्या मिनरल्स है, वाइटमिन्स है, पता नहीं रहते। अगर आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज है या कोई मेडिकल इश्यूज है तो ये नमक आपको तकलीफ दे सकता है। जो सफ़ेद नमक है, हमें पता है कि वो जानकार दुश्मन है। हमें पता है वो बुरा है, हमें पता है कि जरूरी है जिंदगी में, मगर हमें पता है कि कम खाना है। बट जैसे आप सेंधा नमक की बात करें या लूनी नमक या डेजर्ट सॉल्ट की बात करें या हिमालयन सॉल्ट की बात करें, वो नमकीन जो उसकी मात्रा होती है वो कम होती है, तो अक्सर वो हम
0: ज़्यादा
1: थाली में ज़्यादा डालते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आती है और वो आपके इलेक्ट्रोलाइट इश्यूज़ या ब्लड रिपोर्ट्स को ख़राब कर सकता है, आपकी हेल्थ कंडीशन को एग्रेवेट कर सकता है। तो अगर आपको मेडिकल कंडीशन है, कम नमक, टेबल सॉल्ट बेस्ट। आपको ना सॉल्ट लाइट की ज़रूरत है, ना आपको काला नमक, पिंक नमक, सेंधा नमक की ज़रूरत है।
0: जी,
1: अगर आप सेहत में ठीक हो, आप अलग अलग नमक का इस्तेमाल कर सकते हो, मगर दिन के अंत में आपको ये देखना है पूरे दिन में नमक कितना खाया। अगेन WHO रेकमेंड करता है कि 3 से 5 ग्राम नमक होना चाहिए, जो कि होता है 1 चम्मच। हम कितना खाते हैं? कम से कम 4 से 5 चम्मच दिन के, तो आराम से
0: दाल में भी बिल्कुल।
1: तो आपको क्या अलग रूप से फलों के साथ नमक खाना जरूरी है? नहीं
0: जी, बिल्कुल। अदिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी कारगर बातें आपने बताई हमारे श्रोताओं को, बहुत सारी जानकारी मिली। हमें भी उम्मीद है, हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा ये कार्यक्रम, क्योंकि इतनी सारी जानकारी साझा की है आपने।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में पोषण सप्ताह और पोषण माह के उपलक्ष्य में आप सुन रहे थे न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी आप सुनेंगे आज ही के दिन अगले सप्ताह। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि ये सम्मान गोवा पुलिस की समर्पित सेवा, अनुशासन और राज्य के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति का निशान भी कहा जाता है। ये किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये समारोह तालेगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉक्टर जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जेवियर बैटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
2: Ours is a very trusted relationship.
3: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
1: इस अवसर पर श्री जेवियर बैटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह के लिखे एक लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया है कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। इसके लिए मानवीय जुड़ाव, शिक्षण पद्धति और विद्यार्थियों की क्षमताओं को पहचानने की क्षमता जरूरी है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहले शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र की यात्रा पर रहेंगे। वडोदरा में प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2026 का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। निदेशालय ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिकता को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है, उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा।
4: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
1: इस बीच पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्यनिकेतन में इमारत ढहने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए हैं। न्यायालय की पीठ ने कहा कि इस त्रासदी के लिए केवल भवन मालिक ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विश्वविद्यालय भी जिम्मेदार है। न्यायालय ने कहा कि विश्वविद्यालय ने दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों के लिए पर्याप्त आवास की व्यवस्था नहीं की है। न्यायालय ने बचाव कार्य में तेजी लाने और अधिक प्रयास करने के निर्देश दिए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज के महिला कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने आज सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजादा सेडान से होगा। वहीं सरिता कांस्य पदक के मुकाबले में चीन की वांग हुई तिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं साधना सरगम के इस भक्ति रचना से।

0: ये है मेरे बच्चे की आवाज जब उसका पेट भरा हो। ये है मेरे बच्चे की आवाज जब उसको सांस में तकलीफ है। और अब जानती हूँ, अगर खांसी जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज तो बिल्कुल नहीं, तुरंत इसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाऊंगी। निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: भजन अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं विशु भटनागर के गाई ये भक्ति रचना।

गैर फिल्मी भजन अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शाम के 5:25 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युवा मंच।

आसमान की बुलंदियों को छूने की। जरूरी है उसमें वो जुनून होना जो देता है हर सपने को नया आयाम। जरूरी है उसमें वो जज्बा जो रुकने नहीं देता है हमें तब तक जब तक हम उसे पा ना ले। तो कुछ ऐसा ही सफर रहता है हमारे सपनों की उड़ान का, जो हर दिन कुछ नया हमें सिखाकर जाता है, हर गलती के रूप में नया अनुभव कराता है, हर असफलता कभी तोड़ती है हिम्मत तो कभी जोड़ती है फिर से टूटे सपनों को। यकीनन युवा दोस्तों, हौसलों की उड़ान का यह सफर आसान तो बिल्कुल नहीं होता, बल्कि हम यह कह सकते हैं कि ये इम्तिहान होता है हमारे धैर्य का, ये परीक्षा होती है हमारे सब्र की, ये कसौटी होती है इस बात की कि हम विपरीत परिस्थितियों में बिखरते हैं या और निखरते हैं, थककर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं या फिर दुगनी ऊर्जा से फिर से जुट जाते हैं उस अधूरे सपने को पूरा करने में।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का युवा कार्यक्रम युवा मंच, जहां हम बात करते हैं युवाओं की सोच, उनके सपनों और उनकी सफलताओं की प्रेरणादायक कहानियों की। आज के हमारे कार्यक्रम में हम मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे युवा से जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से देश की प्रतिष्ठित UPSC सिविल सेवा परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करके एक नई मिसाल कायम की है। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आदित्य धीमान, जिन्होंने हाल ही में UPSC परीक्षा में सफलता हासिल करके अपने परिवार और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आदित्य जी, युवा मंच कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है और इस शानदार सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई।
1: थैंक यू मैम, धन्यवाद आपका।
0: आदित्य जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि UPSC जैसी कठिन परीक्षा को पास करने के बाद जब रिजल्ट आया तो उस समय आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी?
1: मैम, वही था कि जब रिजल्ट आया तो बहुत ज्यादा एक डर का माहौल रहता है और आप इसी क्षण का इंतजार करते हैं इतने सालों, और उस समय आपकी एक PDF डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ आगे क्या होगी, और आप इस एग्जाम में चीजें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप श्योर नहीं हो सकते कभी भी कि क्या आपका रैंक आएगा, कि आप सक्सेसफुल होंगे भी कि नहीं। तो डेफिनेटली जब रिजल्ट आया तो मैं तो मंदिर में बैठ गया था एंड वहां पे मैंने भगवान जी की मूर्ति थी उसको पकड़ा था और मैंने सोचा कि देखो अब मेरी साइड से हो चुका है जो हो सकता था, अब आपकी बारी, अब आप देख लेना। तो मैंने उन पे छोड़ दिया एंड फिर रिजल्ट अच्छा आया तो फिर सबसे पहले ऐसा था कि मुझे लगता था पहले कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा लाइफ में और एकदम से मेरे को बहुत खुशी होगी, बट उस समय ऐसा था, एक रिलीफ था और थोड़ा अच्छा लगा, बट एक खुशी आई वुड से बहुत कंट्रोलेबल थी। मेरे से ज्यादा खुश मेरे पेरेंट्स थे और मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे फैमिली मेंबर्स थे, लोग थे। तो वही है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं सालों साल और उस मोमेंट के लिए, बट फिर वो मोमेंट आता है तो आपको लगता है कि ये भी पास हो गया एंड आपके अराउंड जो लोग होते हैं वो आपसे ज्यादा खुश रहते हैं और उसकी आपको बहुत खुशी होती है और बहुत रिलीफ मिलता है।
0: जी, और आपकी इस सफलता के पीछे निश्चित ही लंबी तैयारी और संघर्ष रहा होगा। श्रोताओं को बताइए कि आपकी तैयारी की रणनीति क्या रही?
1: मैम, मैंने लॉ में पढ़ाई करी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल से। उस समय ये 5 साल की डिग्री है, BA LLB ऑनर्स की। मैं 2020 में कॉलेज पहली बार गया फर्स्ट ईयर में और 2025 में मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के 1 महीने बाद ही UPSC का प्रीलिम्स का एग्जाम था, तो मुझे बहुत क्लियर था। जब मैं थर्ड ईयर में हुआ कॉलेज के तो मैंने सोचा कि अब कुछ करना है, सोचना है लाइफ के बारे में कि आगे क्या करना है। पहले 2 साल तो कॉलेज जाते हैं तो वो जान पहचान, कॉलेज से एक्वेंटेंस बनाने में लग जाते हैं। जब थर्ड ईयर आया तो सोचना था कि अब क्या करना है। मेरे काफी मित्र जो थे वो कोई जुडिशरी कर रहा था, किसी को जज बनना है, किसी को वकील बनना है, कोई कॉर्पोरेट साइड जाना चाहता था। तो उस समय मैंने सोचा कि अब मेको क्या करना चाहिए। तभी मुझे लगा कि डेफिनेटली सिविल सर्विस, क्योंकि मेरे जो पिता हैं वो भी हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर रहे हैं, तो उससे हमेशा मुझे एक प्रेरणा मिली और उससे हमेशा एक मेरे को मोटिवेशन रहा कि मैं सिविल सर्विस कर सकता हूँ। क्योंकि सिविल सर्विस में मैंने हमेशा से देखा है कि आपके पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल है लोगों के लिए काम करने का, क्योंकि आप गवर्नमेंट में डायरेक्टली काम करेंगे और उस पोजिशन में काम करेंगे जहाँ पे आपके पास काफी अथॉरिटी और पावर रहती है, वहां पे डेफिनेटली इट इज जो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देगा लोगों की हेल्प करने का। और मुझे ऐसा लगता था वही मेरा पर्पस है।
0: और तैयारी के दौरान कभी ऐसा समय भी आया जब आपको लगा कि रास्ता बहुत कठिन है, उस समय आपने खुद को कैसे प्रेरित किया?
1: UPSC जैसे एग्जाम में जो बहुत लॉन्ग टर्म एग्जाम है, इसमें डेफिनेटली बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अनसर्टेनिटी बहुत है, डाउट्स बहुत रहते हैं अपने ऊपर, 0.001% का सक्सेस रेट है, तो आपको हमेशा लगता है कि UPSC आपको ही क्यों चुनेगा, क्या है आप में ऐसी बात। बट वही है मैम, हमें हमेशा ये समझना है कि आपका जो गोल है, उद्देश्य है, वो बहुत ऊंचा होना चाहिए। एक बार आपने वो सोच लिया तो आप उसकी तरफ काम करते हैं, और अगर आपकी डायरेक्शन अच्छी है, आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, आप उतनी मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इवन UPSC फर्स्ट अटेम्प्ट में अचीवेबल है।
0: जी, और आपकी इस यात्रा में आपके परिवार और शिक्षकों की क्या भूमिका रही, ये हम जानना चाहेंगे।
1: मैम, परिवार और जितने भी टीचर्स थे उनकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मोटिवेशन रहती है, बिकॉज परिवार को देख के ही आप अपनी, जब आप कुछ भी आप अगर अचीव करते हैं लाइफ में तो सबसे ज्यादा खुशी हमारे माता पिता को और हमारे दोस्त और परिवार वालों को ही होती है, एंड वो एक आपका मोटिवेशन का सोर्स है कि आपको अपने लिए नहीं तो उनके लिए करना है। वो हमेशा आपसे एक होप लगाए रखते हैं कि आप कुछ करेंगे लाइफ में। इन एडिशन जो दोस्त हैं मेरे और मेरे टीचर्स हैं, टीचर्स ने मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखा कि हर चीज पॉसिबल है, और उन्होंने मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन की वैल्यू बताई कि एजुकेशन तुम्हें कहां से कहां पहुंचा सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि बहुत सिग्निफिकेंट उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है थ्रू आउट द जर्नी।
0: जी, आदित्य, आपकी जिंदगी का वह कौन सा पल था जब आपने तय किया कि आपको सिविल सर्विस में ही जाना है?
1: मैम बहुत पहले से था, जब मैं 9th-10th में था तब मैंने क्लैट करके एक एग्जाम होता है फॉर लॉ, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का, उसकी तैयारी शुरू करी। उस समय मैंने सोच लिया था कि लॉ मैं इसीलिए करूंगा क्योंकि बाद में लॉ की पढ़ाई मुझे काम आएगी ब्यूरोक्रेसी में, जो कि उनका काम ही लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। तभी से मैंने अपना मन बनाया था, बट ऑफकोर्स उस समय बहुत ज्यादा ऊपर सर्फेस लेवल पे था, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मेरा उस समय गोल था। बट जब मैं 3rd ईयर में आया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं 3rd ईयर में डिसाइड कर रहा था कि मुझे क्या करना है, और 3rd ईयर में फिर मैंने फाइनली ये स्टेप लिया घर वालों से बात करके, दोस्तों से बात करके, और फाइनली खुद पे एक विश्वास मेरे अंदर पैदा हुआ कि मैं ये कर सकता हूँ
0: कि आपको यहाँ जाना है सिविल सर्विस जी में। जी, तो पढ़ाई के लंबे समय में ध्यान और एकाग्रता बनाए रखने के लिए आप क्या तरीका अपनाते थे, कुछ बताना चाहेंगे?
1: मैम मैं एक स्ट्रेटजी फॉलो करता था, उसे 50-10 का रूल कहते हैं, विच बेसिकली सेज कि आप 50 मिनट पढ़ाई करें और फिर 10 मिनट आप ब्रेक लें। इससे ये होता है कि आप अगर 3 घंटे लगातार पढ़ेंगे तो आपसे आपका जो फोकस है वो धीरे धीरे गिरता रहता है। अगर आपने स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग के 40-50 मिनट के आपके बहुत प्रोडक्टिव रहते हैं और फिर आपको टायर्डनेस आने लगती है। तो मैंने हमेशा से 50-10 रूल फॉलो किया है, 50 मिनट में पढ़ता था, 10 मिनट में ब्रेक लेता था, ऐसे 3-4 सेशन के बाद फिर एक आधे घंटे 1 घंटे की ब्रेक, एंड धीरे धीरे मैंने इसको आदत बना लिया और दिन में 7-8 घंटे 9 घंटे मैंने करना चालू करा, और इसी के कारण हो पाया, क्योंकि अदरवाइज 3-3 घंटे लगातार पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है।
0: जी, और यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपका सबसे पसंदीदा विषय कौन सा था और क्यों था, ये भी जानना चाहेंगे।
1: मैम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पॉलिटिकल साइंस और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना, उसमें सारे आर्टिकल्स के ऊपर बात करते हैं, जो कोर्ट्स ने जजमेंट्स दिए हैं उस पर बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ना, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है हर एक नागरिक भारत का जो है उसको अपना संविधान आना चाहिए। अगर आप अच्छे जागरूक नागरिक बनना चाहते हैं तो आपको अपना संविधान आना चाहिए, और उससे आप ये इंश्योर करेंगे कि ना कि आप सिर्फ अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बट आप अपनी फैमिली और बाकी लोगों को भी अवेयर कर रहे हो कि जो जितने भी लोग हैं, जितनी भी पावर है, जितने भी गवर्नमेंट आपके ऊपर बैठी है, वो आपसे ही बनी है। तो इसीलिए संविधान मेरे को बहुत पसंद है।
0: जी, और अगर आपको अपनी यूपीएससी यात्रा को 3 शब्दों में बताना हो तो वे 3 शब्द क्या होंगे?
1: मैम फर्स्ट वर्ड मेरे हिसाब से होगा परसिवरेंस, दूसरा शब्द पेशेंस, और तीसरा शब्द एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी। तो ये 3 शब्द हैं जिसके अराउंड मेरी पूरी प्रेपरेशन रही है।
0: आदित्य जी, आजकल बहुत से छात्र सोशल मीडिया से पढ़ाई करते हैं, आपके अनुसार ये कितना उपयोगी है?
1: मैम वो डिपेंड करता है आप कौन से एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, बट सोशल मीडिया के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, दोनों साइड्स हैं। अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होके, अगर आपने बहुत अच्छे से अलायंस करके आपने वो चैनल सब्सक्राइब किए हैं जहाँ से आपको एजुकेशन मटेरियल मिल रहा है, तो डेफिनेटली सोशल मीडिया भी आपका एक सोर्स बन सकता है पढ़ने का। वो इंडिया के किसी भी कॉर्नर में घर पे बैठ के वीडियोस पे कोचिंग भी ऑनलाइन आ चुकी है, उससे कर सकते हैं। सोशल मीडिया के साथ बस इशू ये है कि मैम आई थिंक उसमें बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं, तो इसीलिए मैं ये कहूंगा सोशल मीडिया का यूज आपको बहुत ज्यादा लिमिटेड वे में करना चाहिए, और अगर आप कर भी रहे हैं तो ऐसे करना चाहिए कि आपका सारा मटेरियल स्पेशली पढ़ाई रिलेटेड मेनली हो। मैंने पर्सनली सोशल मीडिया काफी टाइम तक अपना डीएक्टिवेटेड रखा था, लेकिन मैं बीच बीच में मैं देखता था, तो मेरे को मैं काफी सारे न्यूज चैनल्स के मैंने सब्सक्राइब किया था, तो मुझे पता चलता रहता था, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज न्यूज़पेपर से भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आपके पास बुक्स हैं और वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। तो सोशल मीडिया आपका अच्छा सोर्स है, बट आपको डिस्ट्रैक्शंस को फिल्टर आउट करना है।
0: जी, क्या कोई ऐसी असफलता या गलती थी जिसने सबसे बड़ा सबक आपको सिखाया हो?
1: मैम यूपीएससी सिविल सर्विसेज अभी जो मैंने दिया उसमें मेरे साथ जब इसका मेंस की परीक्षा होती है जिसमें 9 पेपर होते हैं, तो उसमें मेरा लॉ का ऑप्शनल था और उसमें एक पेपर में मैं थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया, तो 1-2 सवाल मेरे छूटे, जो कि कहते हैं कि मेंस में बहुत बड़ा ब्लंडर होता है कोई भी क्वेश्चन छोड़ना। तो मेरे को काफी उस समय मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया खुद से, और मुझे लगा कि मेरा नहीं होगा मेंस क्लियर, कि मैंने तो 2 क्वेश्चन छोड़ ही दिए हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने जो सबसे बड़ी सीख सीखी है, जो मेरा फेलियर नहीं बोलूंगा मैं उस समय, बट परसीव्ड फेलियर जो मेरा था, उससे मैंने ये सीखी है कि किसी भी चीज को, आपकी लाइफ में कुछ भी है, उसके ऊपर ऑब्सेस्ड नहीं होना है, उस पर आप पूरा एफर्ट मारो, आप जितना कर सकते हो करो, लेकिन आपके कंट्रोल में जितना है आप सिर्फ उतना ही करो। मतलब बोलते हैं कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जो आपके हाथ में है सिर्फ वही आपके हाथ में, अपना कर्म करो, उसके बाद रिजल्ट्स बाकी सब कुछ भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता।
0: जी, तो क्या कोई किताब, शिक्षक या व्यक्तित्व है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया?
1: मैम एक बहुत फेमस बुक है, उसका नाम है मेडिटेशंस, वो लिखी है मार्कस ऑरेलियस ने, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे, बहुत पुरानी किताब है, स्टोइसिज्म फिलोसफी पे है, फिलोसफिकल बुक है। अगर आप उसके चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको बेसिकली लाइफ लेसन बहुत सारे दिए हैं, तो उसको वैसे भी दुनिया की बहुत इन्फ्लुएंशियल बुक मानते हैं। तो अगर जिसने नहीं पढ़ी है मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशन, उसको एक बार पढ़नी चाहिए।
0: अच्छा वर्णन उसमें मिलेगा। और एक भावी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप युवाओं के लिए क्या बदलाव देखना चाहते हैं?
1: मैम स्पेशली जो मेरी एज के लोग हैं, मेरी उम्र अभी 23 साल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उम्र वाले जिनको आप जेन ज़ीज़ बोलते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक तो वो सोशल मीडिया में एक्टिव होना प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपनी पूरी लाइफ फोन को बना लो, इशू ये है कि आप जब भी रील्स या फिर जितना भी ट्रेंड चल रहा है आजकल, उसमें जब आप बहुत ज्यादा घुस जाते हो तो जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं वो आपकी एल्गोरिदम को पकड़ लेता है और वो आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं, और उसके कारण आप बहुत ज्यादा समय अपना वहां व्यतीत कर देते हैं। अभी वाला जो यूथ है उनके पास पेशेंस नहीं है। अब क्योंकि उनपे पेशेंस नहीं है, उनको इंस्टेंट सब कुछ चाहिए, अब तो उनको लगता है कि वो सब चीजें उनके पास इमीडिएटली आनी चाहिए। बट सक्सेस जो है मैम मेरे को लगता है वो टाइम लेता है, उसके लिए पेशेंस इंपॉर्टेंट है और वो अपने समय से ही आता है। क्योंकि यूथ इसीलिए बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है कि उनको इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलते, और इसके कारण से बहुत सारे इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज आप देख रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह बहुत ज्यादा राइज हो रही है। तो आई थिंक यूथ को मैं यही बोलूंगा कि आप अपने फोन से थोड़ा बाहर देखिए दुनिया को, दुनिया बहुत सुंदर है, दुनिया बहुत बड़ी है, लोगों से बात करें, स्पेशली जो आपके बड़े हैं उनसे बात करें, जब उनके समय फोन नहीं हुआ करते थे वो कैसे रहते थे, उनसे आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है और इतनी उम्र के बाद पहुंचे हैं किसी मुकाम पे। तो सक्सेस अपना समय लेती है और इसके लिए आपको पेशेंट रहना पड़ेगा।
0: अगर आपको अपने ही क्षेत्र में सेवा करने का अवसर मिले तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी?
1: मैं मेरे से यही क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं। तो हमेशा से मेरे को ऐसा लगता है कि दो जगहें हैं, दो चीजें हैं जहां से इंडिया पूरे भारत को बदला जा सकता है। पहली है प्राइमरी एजुकेशन और सेकंड है प्राइमरी हेल्थ केयर। मैंने देखा है थ्रू आउट इंडिया, अगर आप देखेंगे कहीं पे भी, प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत वीक है इंडिया का, प्राइमरी एजुकेशन भी बहुत वीक है। इंडिया के जो टॉप सिटीज हैं, आप अगर बॉम्बे दिल्ली लोगे तो आपको वहां पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मतलब स्कूल्स एजुकेशन सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा गांव की तरफ जाइए और आपको रियलाइज होगा कि जो डिस्पेंसरीज भी हैं लोकल, जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां पे आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। वहां पे आप पूरे गांव से लोग 3-4 गांव ट्रैवल करके जाएंगे तब जाके उन्हें एक डॉक्टर मिल पाएगा, और तब तक उनकी हेल्थ केयर का जो भी उनको क्राइसिस इमरजेंसी है उसका कोई पॉइंट नहीं रहेगा। इट लीड्स टू बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी ऑल्सो। तो मैं मुझे लगता है प्राइमरी हेल्थ केयर इज समथिंग जहां एडमिनिस्ट्रेशन, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आता हूं तो आई विल वर्क देयर डेफिनेटली। और प्राइमरी एजुकेशन अगेन मैम, इंडिया में सबसे बड़ा इशू ये है कि बोलते हैं कि लिटरेसी बहुत ज्यादा हाई हो रही है धीरे धीरे, बट लिटरेसी की जो डेफिनेशन है बहुत लिमिटेड है। सिर्फ आपको अपना नाम लिखने आना चाहिए, दैट्स लिटरेसी। बट अगर आप गांव में अगेन फिर से जाएंगे, हिमाचल फिर भी उसमें बहुत अच्छा कर रहा है हेल्थ केयर और एजुकेशन में, बट स्टिल मुझे लगता है काफी उसको और बढ़ा सकते हैं, उसका चैनल बढ़ा सकते हैं, स्कूल्स का चैनल बढ़ा सकते हैं। काफी ऐसे स्कूल्स हैं जहां पे एक भी टीचर नहीं है, एक टीचर है जो 200 बच्चों को पढ़ा रहा है। और ऑल्सो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी जो फैसिलिटीज हैं वो हमें पब्लिक हेल्थ केयर और पब्लिक एजुकेशन में लानी चाहिए। उसके लिए आई थिंक अगर इफ आई हैव दैट इन्फ्लुएंस एंड दैट कंट्रोल, तो मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग टू GDP रेशियो है इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन उसको बढ़ाए। क्योंकि एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि एक कैपेबिलिटी अप्रोच करके एक अप्रोच है जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं बहुत फेमस, उन्होंने दी थी। वो कहता है कि अगर आप हेल्थ केयर और एजुकेशन का ध्यान रख लोगे तो जो यूथ है वो खुद अपना ध्यान रख लेगा, वो खुद डेवलपमेंट करेगा और उसी से विकसित भारत बाय 2047 हो पाएगा। तो दिस इज समथिंग आई वांट टू।
0: बहुत अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और आज के युवाओं में आपको सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चुनौती क्या दिखाई देती है?
1: मैम सबसे बड़ी ताकत मेरे हिसाब से है कि जो आज के युवा हैं वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं और उन लोगों को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे वर्ल्ड चल रहा है। अगले 30 साल में हम ये देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी डोमिनेट करेगी। आप देख रहे हैं AI का दौर चल रहा है, तो जो युवा है उसके पास टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसको समझ है चीजों की, उसका अगर हम बहुत अच्छे से लेवरेज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो इंडिया अपनी उस टेक्नोलॉजिकल जो भी उसका डेवलपमेंट है उसके ऊपर लेवरेज करके बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी बन सकता है। हमने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1,00,000 करोड़ का एक सेटअप करा है फॉर AI इंडिया मिशन। तो इसलिए आई थिंक यूथ में ये पावर है। उनका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो अगेन दो चीजें हैं। पहला ये कि वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, इसी टेक्नोलॉजी ने उनको धकेल भी दिया है पीछे, बिकॉज उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन उन्हें नहीं आ रहा। और दूसरा मैम ये है कि नशे और जो भी डिस्ट्रैक्शन, स्पेशली नशे वगैरह की और जो भी हो रहे हैं, उसके कारण युवा अपने सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स को वेस्ट कर रहे हैं। और क्योंकि वो वेस्ट हो रहे हैं तो उनको लगता है कि वो सिर्फ उनको अफेक्ट करेगा या उनकी फैमिली को करेगा, बट अगर आप लार्जर इमेज देखेंगे इसकी तो इंडिया अब सबसे ज्यादा रिलाय कर रहा है अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड पे, जो कि इसकी यूथ पॉपुलेशन है, आगे ग्रो करने के लिए, तो वो इवन इंडिया की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है।
0: बिल्कुल। और अदिति जी जानना चाहेंगे कि पढ़ाई के बीच जब ज्यादा तनाव हो जाता था तब आप खुद को कैसे फ्रेश करते थे, कैसे तरोताजा रखते थे?
1: मैम मेरी कुछ हॉबीज हैं जो कि मुझे हमेशा रिफ्रेश रखती थी पढ़ाई के बीच में, एंड उस समय मैं कॉलेज तो मैंने कॉलेज से अपनी सारी प्रिपरेशन करी है। तो कॉलेज में जब एक बार मेरे नंबर ऑफ आवर्स जो मेरे को पुट इन करने हैं, नंबर ऑफ मेरी जो टारगेट्स हैं वो फुलफिल हो जाते थे दिन के, तो मैं अपने दोस्तों के साथ जाता था, चाय पियेंगे, उस पर बात करेंगे, डिस्कशंस होंगी, थोड़ा घूम के आ जाएंगे उससे, और साथ में मैं गाना गाता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं थोड़ा गिटार वगैरह बजा लेता हूँ, फोटोग्राफी का मेरे को शौक है रिसेंटली, तो ये सारी चीजें मेरे को डिस्ट्रैक्टेड रखती थी, डिस्ट्रैक्टेड इन द सेंस मेरे को मेरा थोड़ा मूड लाइटन अप कर देती थी।
0: आपने गाने की बात कही तो कुछ गुनगुनाना चाहेंगी, कोई ऐसा नगमा जो आपके दिल के बहुत करीब हो?
1: एकदम आपको सुनाते हैं हम, मैम लग जा गले है तो वो मुझे काफी अच्छा लगता है, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ।

0: बहुत
1: आसान
0: उम्दा आपने
1: है।
0: गाया और
1: थैंक
0: बहुत
1: यू।
0: दिल से आपने गाया, और इससे पता लगता है कि आप संगीत से कितना प्रेम करते हैं। और आखिरी सवाल आपसे कि जो युवा अभी बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जो सक्सेस है वो हमेशा फेलियर्स के बाद आता है, क्योंकि आपको हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट से चलना है लाइफ में, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमें हर मोमेंट पे, हर समय हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। हमें लगता है कि हमसे कुछ नहीं हो पाया तो वो एंड है लाइफ का, बट क्या पता कोई चीज़ आपके लिए उससे भी अच्छी रही हो। तो जैसे एक बोलते हैं कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और अच्छा, क्योंकि फिर वो खुदा का होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा अगर आपके मन का कुछ नहीं हो रहा है, अगर आप बार बार फेलियर्स का सामना कर रहे हैं, तो आप बस ये समझ लीजिए कि भगवान आपको टेस्ट कर रहा है और आपकी पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। और बिकॉज वो पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, तो ऑफकोर्स वो आपको और कुछ बड़ी चीज़ देना चाहता है लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंस और परसिवरेंस, आपको टिके रहना है, और साथ में आप में एक रेजिलियंस होना चाहिए कि छोटे छोटे तूफान आपको उड़ा ना सकें। आप हमेशा ग्राउंडेड रहो। जैसे एक पेड़ होता है, उसके जो रूट्स होते हैं वो नीचे तक होते हैं, तो तूफान अगर आता है तो वो पेड़ थोड़ा सा हिलेगा बट वो वापस वैसा बन जाता है।
0: जी
1: तो
0: जी
1: आपको बिल्कुल वैसा बनना है। जब भी आपको फेलियर फील हो, एक बार स्माइल कर दो और खुद को बोलो कि चलो एक्सपीरियंस हो गया, तो जस्ट मूव ऑन देन।
0: जी तो श्रोताओं, ये थे यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले आदित्य धीमान की प्रेरणादायक कहानी। उनकी ये सफलता हमें बताती है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत निरंतर हो और हौसले मजबूत हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। आदित्य जी, एक बार फिर आपको उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं, और युवा मंच कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: घबराने की कोई बात नहीं, 70% सांप जहरीले नहीं होते।
7: फिर भी जहरीले सांप के घाव को ना धोएं, ना काटें, ना चूसें, ना हिलाएं, तुरंत 108 नंबर पर एम्बुलेंस सहायता के लिए संपर्क करें।
8: सांप को ढूंढने या मारने में या तांत्रिक के पास जाने में समय ना गवाएं। अस्पताल पहुंचने में देरी जानलेवा हो सकती है। याद रखें, अगर सुबह उठते ही दिल मचले, उल्टी हो, पेट में दर्द हो, तो ये क्रेट सांप के काटने से हो सकता है, जिसके काटने के निशान कई बार दिखाई नहीं देते। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

स्वागत है एक बार फिर से हमारे युवा दोस्तों का। युवा दोस्तों, याद रखिए, उड़ान भरने के लिए पंख मजबूत होने से ज़्यादा ज़रूरी है हौसला बुलंद होना। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर मुश्किल एक नया सबक है। अपने सपनों पर भरोसा रखें, मेहनत और धैर्य से कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। गिरना बुरा नहीं, गिरकर ना उठना बुरा है। तो मिलेंगे अगले सेगमेंट में फिर से, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। चलते चलते हम आपको बता दें कि कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और हमें तकनीकी सहयोग मिला अंकित धीमान से। युवा दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:55 होने को हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी, साथ ही कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी भी।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ। शाम 6:30 पर समय होगा कार्यक्रम मोजांग ग्राइंडिया का। आज इस कार्यक्रम में बातचीत का विषय है मुर्गी पालन का कार्य। शाम 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम खेती बाड़ी। विषय रहेगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। साथ ही होगी भेंट वार्ता, होंगे मंडे भाव, मौसम की जानकारी और आपके मनोरंजन के लिए कुछ लोकगीत। रात्रि 8:00 समय है विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का और 8:30 पर देश गान सुनवाए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार पेश किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में आप सुनिएगा संगीतकार आदेश श्रीवास्तव पर संगीतबद्ध किए गए कुछ चुनिंदा गीत। रात्रि 9:30 पर गूंज पहाड़ों की लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। रात्रि 10:00 से 11:00 तक पसंद आपके गीत हमारे कार्यक्रम आप सुनिएगा। सजीव फोन इन कार्यक्रम आधारित होगा ये और स्टूडियो का नंबर हमारा वही होगा 01892224391। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:07:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 News@9। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 7:10 पर कार्यक्रम सुबह सुहानी में जानकारियों के साथ होगा संगम मनोरंजन का भी। महिलाओं के कार्यक्रम सुनो सखी का प्रसारण समय रहेगा दिन में 12:30 पर। ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की और कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:57 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किड बैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले
1: ले आ गया नया किड बैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सीबीएसई स्कूलों के अध्यापकों के लिए ड्रेस कोड, विद्यार्थियों के लिए वर्दी और स्कूल भवनों के लिए एक अलग व विशिष्ट रंग योजना जल्द तय की जाएगी। उन्होंने आज शिमला में शिक्षा विभाग की बैठक में बताया कि सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों के लिए ड्रेस कोड 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने सीबीएसई स्कूलों के लोगों को अंतिम रूप देने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन स्कूलों में अनुशासन और समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए दिन में 3 बार उपस्थिति दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित सीबीएसई स्कूलों में विद्यार्थियों को सस्ती दरों पर शिक्षा प्रदान की जाएगी और इन स्कूलों में पहले ही अध्यापकों की नियुक्ति कर दी गई है। इस बीच मुख्यमंत्री आज से नई दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान वे विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का 9 सितंबर को शिमला लौटने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 25 वर्ष पूरे होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज शिमला में बताया कि राज्य में ये अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे और सामाजिक सेवा से जुड़े विभिन्न कार्य किए जाएंगे। बिंदल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और 13 साल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश को विकास का मॉडल दिया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर, 11 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल और 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा जैसे अनेकों लाभ प्रदान किए गए हैं।
1: 17, 18, 19 और 20 चार दिन में हिमाचल प्रदेश में सब जगह रक्तदान शिविर लगेंगे और जितने ब्लड बैंक्स की कैपेसिटी 100% कैपेसिटी फुल करेंगे। स्कूली बच्चों को लेकर विकसित भारत की कल्पना, उसके ऊपर पेंटिंग कॉम्पिटिशन, डिबेट्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को सम्मानित करना, 25 साल सेवा समर्पण के तो 25 प्रकार के सेवा के अभियान। भारतीय जनता पार्टी हर मंडल में, हर पोलिंग बूथ पर अलग अलग प्रकार से सेवा के अभियान।
0: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज रिकांगपियो में परियोजना सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की और किन्नौर जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जनजातीय विकास विभाग के तहत किन्नौर जिले में 78 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि से अनेक विकास कार्य किए जा रहे हैं। नेगी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत भी विकास कार्य चल रहे हैं। उन्होंने बागवानी, कृषि, स्वास्थ्य, पशुपालन और सामाजिक कल्याण विभाग को राज्य सरकार की योजनाओं का पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। जगत सिंह नेगी ने जिले में सभी विकास परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने को कहा। सांसद कंगना रनौत ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज कुल्लू में जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिले में चल रही केंद्र प्रायोजित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। कंगना रनौत ने कहा कि जिले में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य, प्राकृतिक व जैविक खेती की अपार संभावनाएं हैं और अधिक से अधिक महिलाओं को इन कार्यों से जोड़ा जाना चाहिए। सांसद ने बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए किसानों, महिलाओं व बेरोजगार युवाओं को उद्यमिता से जोड़ना समय की मांग है। कंगना रनौत ने अधिकारियों को जिले के स्थानीय व प्राकृतिक उत्पादों को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश भी दिए। मंडी जिले में किरतपुर मनाली फोर लेन सड़क पर देवड़ हनोगी के बीच बनी सुरंग का आज सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य विपनेश शर्मा की मौजूदगी में ये ट्रायल हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष ने भी मौके पर पहुंचकर सुरंग व निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। प्राधिकरण द्वारा इस मार्ग को अगले चार दिनों में खोलने को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं नाइट इन लंदन फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

सिलसिला। इस फिल्म से गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में और साथियों की मिलीजुली आवाज़ों में। संगीत दिया है शिव हरी ने।

0: मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी।
1: प्रेम कहानी, इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
0: मिलेंगे हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो।

0: सुरमई सांझ फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अपनी रेडियो दोस्त रेनुमन कोटिया के साथ।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: संतोष, इस फिल्म का गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की मिलीजुली आवाजों में। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सांझ। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मोजा ग्राइंदियां।

0: कार्यक्रम मोजा ग्राइंदियां सुना करदे सारे किसान कने बागवान साथियां
1: जो मास्टर निधि दो हाथ जोड़ी कने राम राम कने दिखा ट्याले पर मैं आई हो ता मेरे सोगी हैं ग्राम सेवक जी। ग्राम सेवक जी तुहानू भी मेरी राम राम
2: जी। राम राम मस्टरैनी जी, राम राम कने सारे सुनने वाले किसान बागवान भाई भैन जो ग्राम सेवक दी भी राम राम कने भाई हर रोज़ की तरह हाँ ढेर सारी जानकारियां कने मिठे मिठे प्यारे प्यारे लोक गीत लेकर ही ट्याले पर हाजिर हो चुके हैं
1: जी।
2: कने मस्टरैनी जी आज तक दिखा जी मौसम जड़ा ऐसा खरा रहा है ना, धूप लगी रही है ना
1: जी,
2: बड़ी बाकी धूप थी। कने दिखा जी गल ये है कि जलू मौसम खरा होंदा ना
1: जी
2: सांझो जड़े खेती बाड़ी दे काम करने च थोड़ा जिहा आनंद आउंदा, हुण घाह पट्ठे दा भी काम पिया है ना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल,
2: घाह पट्ठे दा काम भी खरा हो जांदा
1: जी।
2: कने मौसम जड़ा ऐसा खरा रहिंदा हुण गां घाह दा जड़ा ऐसा ज्यादा काम पई जाना है ना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, दिखा सारा दिन चालू बरखा होंदी ही ता हाड़े काम जड़े हैं थे थोड़े बेटेमे हो जांदे। कने अगर मौसम अच्छा होए ता जियां सवेरे दा जड़ा समय है ता तीस चाहां फटाफट अपनी खेती च भी जड़ी ऐसा जाई के अपनी फसलां पर नज़र रखी होंदे कने दिखी होंदे भई कुत्थी मता पानी तो नहीं खड़ोते है कने

0: और दिखा ना अजकल कुछ बेलदार सब्जियां भी होंदियां सह भी ज्यादा पानी दे संपर्क च आई ने खराब हो जांदियां तां तिन्हां दा भी ध्यान रखना पौंदा।
1: जी
0: कन्ने
1: जी
0: दिखा ग्राम सेवक जी उना हटियाले पर आई हो तां आहां अपने किसान साथियों ने जुड़ियां कुछ एक गल्लां करनियां ने, कन्ने ऐसियां जानकारियां तिन्हां ने सांझा करनियां ने कि जिन्हां ते सह फायदा चुकन, कन्ने अपनी जड़ी है सह आर्थिक जो सुधारी सकन।
1: बिल्कुल तो
0: तां
1: ठीक
0: दिखा
1: गया।
0: सांझू जिहड़ा ऐसा खेतीबाड़ी दे कम्मां दे कन्ने कन्ने जिहड़ा ऐसे कोई होर काम भी अपनाना चाहिदा, जियां कि रेशम कीट पालन होई गया या मछली पालन होई गया या फिर मुर्गी पालन होई गया।
1: जी,
0: तां अज आहां गल करनी है मुर्गी पालन दे बारे च।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। तो दिखा मुर्गी पालन जड़ा ऐसा है, तुहां देखा ही होना कि साढ़े ग्राएं च जड़ा ऐसा है, एक एक दो दो कुकड़ियां जड़ियां ऐसे रखी होंदियां, कुकड़ियां गलांदे हैं ना मुर्गियां,
0: बिल्कुल
1: है
0: जी
1: ना।
0: बिल्कुल
1: तो कुकड़ रखे होंदे
0: जी
1: कन्नै, भाई कईयां तां शौकिया तौर पर भी रखे होंदे कन्नै कईयां जड़ा ऐसा एक व्यावसायिक तौर पर भी रखे होंदे, है ना।
0: बिल्कुल जी दिखा जी ना शौकिया तौर पर रखे होंदे तां सह क्या हुंदा कि एक तां उन्हां जो जिहड़ा है सह अपना घरे दा अंडा खाने जो मिली जांदा, कन्ने दिखा अंडे च प्रोटीन भी काफ़ी हुंदे, कन्ने सेहता ताईं भी खरा हुंदा, कन्ने कुछ एक जिहड़े बीमार आदमी हुंदे तिन्हां ताईं तां अंडा जिहड़ा सह काफ़ी अच्छा हुंदा, जिन्हां दा कुछ भार घटी गया या होर चीज़ां की कमी हुई है तां इस च प्रोटीन जिहड़ा सह बड़ा हुंदा।
1: जी
0: कन्ने दिखा जिहड़ा अपना घरे दा अंडा अगर खांदे हन ना तां जो पता है ऐसा एक साफ स्वस्थ जिहड़ा ऐसा साढ़े घरे दी है मुर्गी है दित्ते है। कन्ने अगर दूआ बाजार ही हुंदा तां कई बार क्या हुंदा कि सैतिना च नकली वगैरह भी हुंदे।
1: जी तां दिखा जी मस्टाणी जी, गल ये है कि अगर अहाँ शौकिया तौर पर करा देता तो इससे तो अहाँ आमदनी नहीं आते, है ना,
0: बिल्कुल
1: सदा
0: जी
1: सह अपने प्रयोग वास्ते करते। लेकिन अगर साड़ा एक बेरोजगार भाई बंधु मुर्गी पालन का व्यवसाय करता है, कने सह एक रोजगार के तौर पर करता है, तो इसी भाई बड़ा अच्छा मुनाफा जड़ा ऐसा इस व्यवसाय से हो ही सकता।
0: जी
1: अगर सह थोड़ा जहा प्रशिक्षण ले करी, कने थोड़ी दी जानकारी ले करी अगर इस व्यवसाय जो करे, तो इसी जड़ा ऐसा कोई बाकी नौकरी करने की जरूरत नहीं रहती है।
0: जी बड़ी छैल गल बोला दी। दिखा सानू कोई भी काम चालू करना चाहिए तो इस दे ताई प्रशिक्षण जरूर ले लेना चाहिए, कने इस कम्मे च तां खास करके ले लेना चाहिए, क्योंकि क्या हुंदा कि अगर अहां थोड़ी जी भी आना कानी कीती या ढील छड्डी, कने साड़ियां मुर्गियां जिहड़ियां ने सैतिना जो कुछ होई है तां फायदा लैने दी जगह हां जो घाटा भी होई सकदा। कने दिखा चालू जी इहनां दे बच्चे वगैरह चूजे हुंदे तां तिन्हां जो बड़ी ज़्यादा संभाला दी जरूरत हुंदी, इहनां जो भी काफ़ी ठंड लगदी, कने इहनां जो जिहड़ा है ना सह बल्बां दी रोशनी च भी जिहड़ा सह गर्मी दित्ती जांदी जिसते कि
1: जी
0: इन्हां दी
1: जी
0: बढ़ोतरी जिहड़ी है सह अच्छे ने होए। कने दूजी गल जिहड़ी है कि इन्हां जो चीलां वगैरह भी चुक्की के लई आंदियां अगर तुहां बाहर छड्डदे हन तां सह भी ध्यान रखना पौंदा, कने कुत्ता बिल्ली वगैरह नोल इन्हां हर चीज़ां ते इन्हां दा ध्यान रखना पौंदा।
1: बिल्कुल
0: दिखा जी
1: बिल्कुल
0: आहां अपने बच्चियां जो पालदे ना तियां तिन्हां बच्चियां दा भी छोटियां दा, क्योंकि तिन्हां तां बिल्कुल भी पता नहीं है कि आहां क्या करना है। कने दिखा संझा दी वेला साड़ी एक जिम्मेवारी बन दी कि जड़ा हाँ तिना जो एक घर बनाया हुंदा जिस जो ओड़ा वगैरह गलांदे तो तिस च भी सांझो जड़ा संझा दे वेले तिना जो बंद करना जरूरी हुंदा।
1: जी। मस्टरानी जी दिखा असां दे बल जड़ा ऐसे जानकारी तो बड़ी है ना,
0: जी
1: पर प्यारे प्यारे लोकगीत भी हैं साढ़े वाल, तो
0: जी
1: अहाँ एक प्यारा दिया लोकगीत सुनना है और इससे पहले एक संदेश सुने जाए, तो बाकी गलबात जड़ी से अहाँ बाद च करनी है।
0: जी
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।

0: तंबाकू का किसी
1: तो किसान साथी दिखा तो है प्यारा जिहा लोक गीत सुनिया कने हुण आहां फिर चलने गलबात दी तरफ
2: जी।
1: तो दिखा गलबात आहां करा दे हे मुर्गी पालन दे बारे च। तो दिखा मुर्गियां दी भी काफ़ी नस्लां हुंदियां कने सांझू जिहड़ा है हमेशा एक अच्छी नस्ल दी मुर्गी जिहड़ी है से पालना चाहिए जिसते कि सांझू जिहड़ी है अच्छे अंडे जिहड़े मिलन। कने दिखा जंगली मुर्गी जिहड़ी है वह भी बड़ी अच्छी हुंदी कने दिखा ये प्रजातियां जिहड़ियां से बड़ियां घट मिलदियां।
2: बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक गला दे। कने अगर अहां मुर्गी पालन दा व्यवसाय करना है तो सांझू जिहड़ा है से दो मकसद कने ये करना चाहिदा है जियां या तो अहां मुर्गी पालन दा व्यवसाय मांस वास्ते करन या अहां मुर्गी पालन दा व्यवसाय करन अंडे दे उत्पादन वास्ते।
1: बिल्कुल जी।
2: तो जे अगर अहां दोनों ही उद्देश्य जड़े से रखते हैं तो भी जड़ा ऐसे अहां इसी तिस हिसाबे ने जड़ा ऐसे मुर्गियां दी जड़ी नस्लां तिन्हां यो चयनित करी सकते हैं।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ पोल्ट्री फार्म का काम भी करी सकते पर सांझो उस चीज़ दिखना पौना कि साढ़े वाल जगह कितनी है कितनी हाड़े वाल क्षमता है कि हाँ कितने मुर्गे मुर्गी हैं जड़े इनसे उस रखी सकते।
2: बिल्कुल
1: कने फीड का बिल्कुल ध्यान रखना पौना कने अजकल जी बरसात थी तो उतू नमी वगैरह भी जरूर दिखना पौनी कने कई बार क्या होंगे कि उन्होंने ना बड़ी ज़्यादा कोई ऐसी बीमारी लगी आती जिसते कि वो सारे दे सारे खत्म हो जाते तो उन्होंने सारिया गलों का हाँ जो जो ध्यान रखना पौना जिसते कि अहाँ इस व्यवसाय से जोड़ा इसे मुनाफा कमान।
2: बिल्कुल
1: तो यह छोटी छोटिया गलां नहीं ना हाँ जो ध्यान रखी कि किसी भी कमे जो जोड़ा इसे करना चाहिए।
2: और खासकर मस्टरैनी जी एक गल और भी ध्यान रखनी कि अगर अहां मुर्गी पालन का व्यवसाय करना तो सब तो पहले जो तो हाँ गला दे भी जगह दे बारे च भी जड़ा ऐसा सांझो देखना चाहिए कि जगह जड़ी ऐसा बिल्कुल हवादार होना चाहिए है ना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
2: सुखी होना चाहिए कि साफ सुथरा जड़ा साइड जड़ा ऐसा साफ सुथरा होना चाहिए।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। कने दिखा कने कने सांझो जलू सवेर होंगी है ना तो दिखा सारी रात अहां उन्हां जो एक कमरे च बंद कित्या हुंदा तां जलो सवेर हुंदी तां उन्हां जो जरूर जिहड़ा ऐसा खुले च थोड़ी देर छड़ना है जिसते से बाहर जिहड़ा ऐसा अपने आप प्राकृतिक चीज़ां जो खाई सकन।
2: जी बिल्कुल। कने इस दे कने ही देखा जी बीमारियां ते बचाव दा भी जिहड़ा ऐसा ध्यान रखना बड़ा जरूरी है ना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
2: समय पर टीकाकरण और वैसे तो गलांदे ही हैं विशेषज्ञ कि साफ सफाई जिहड़ी ऐसा बड़ी जरूरी है।
1: बिल्कुल।
2: और अगर साफ सफाई हुंदी है तो कई रोग जिहड़े इनसे नहीं लगते हैं।
1: कने बिल्कुल जी दिखा जड़ा मुर्गियां दी बिठ वगैरह होंगी तो तिसते भी जड़ी ऐसे अहां खेतां च पाई के जड़ी ऐसे खेतां दी ताकत जड़ी ऐसे बधाई सकते।
2: जी बिल्कुल। और अगर अहां कमाई दी गल करिए ना मस्टरैनी जी तो अगर अहां 100 मुर्गियां ते अपना जड़ा ऐसा व्यवसाय शुरू करते हैं ना तो लगभग 8,000 ते लेके 15,000 रुपए प्रति महीना जड़ा ऐसा अहां तिथु ते कमाई सकते हैं ना।
1: जी कने दिखा गल की जाए अंडे की तो देसी मुर्गी का अंडा जोड़ा ऐसा कम से कम 15 रुपये च बाजारे च बिकता है तो दिखा बड़ा अच्छा एक मुल है तो हाँ दे कमां ने जोड़े ऐसे अपनी आर्थिकी सुदृढ़ करी सकते।
2: जी कने हुण जोड़ा ऐसा एक तो फिर अहां एक बार संदेश सुनना है।
1: जी
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।

0: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
1: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
0: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: जी हुण अहां गलबात करनी है अपने पर्यावरण दे बारे च, कन्ने इत्थों दी साफ सफाई दे बारे च, तिसदे संरक्षण दे बारे च।
5: जी तां मिस्टर रानी जी, दिखा वैसे तां अजकल स्वच्छता अभियान जिहड़ा है हर जगह चलिया है ना।
4: बिल्कुल जी,
5: स्वच्छता पखवाड़ा भी मनाया जाए करता है ना
4: जी।
5: और कूड़े दा जिहड़ा ऐसा अहां हर घर च, हुण ऐसा तां नहीं है कि घर च कूड़ा नहीं हुंदा, ता कूड़े दा जड़ा ऐसा सही निपटान करना जड़ा ऐसा एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है आजकल।
4: बिल्कुल जी बिल्कुल, दिखा सब ते पहले तो हाँ जो करे ते शुरुआत करना चाहिए दी कि हाँ जो जड़ा ऐसा अपने घरे च गिल्ला कूड़ा कने सुक्का कूड़ा हमेशा जड़ा है अलग अलग रखना चाहिए दा। चाहे ऐसा कूड़े वाले भी आते हैं दिखा, तलू तिथों समस्या नहीं खड़ी करनी है भी अहाँ कट्ठा करीते हैं तो असं अलग अलग होगा तो गांत इसका निपटान भी जड़ा ऐसा खरे ने होंदा है। क्योंकि जिस क्या होंगे कि कई बार प्लास्टिक बोतल होंगे, कुछ गत्ते होंगे, कुछ पोलीथीन होंगे, कने कई बार क्या होंगे कि साड़ा कूड़ा जड़ा ऐसा साड़िया कटोईया सब्जियां वगैरह होंदिया तो अस उस तरीके ने ही उन्होंने चीज़ों का निपटान किया जाता। अगर बोतल वगैरह नहीं या गत्ते हैं तो तिना निपटान अलग तरीके ने किया जाता, कने अगर गिला कूड़ा है तो इसका निपटान अच्छे तरीके ने जड़ा ऐसे अलग तरीके ने किया जाता
5: जी। कने दिखा जी अहाँ जड़ा साड़ा गिला कूड़ा है ना जी, इसी अहाँ एक गड्ढा खोदी के तिस च पाते जाइए, कने अहाँ एक कंपोस्ट खाद भी जड़ा ऐसे तिथु ते बनाई सकते।
4: बिल्कुल जी बिल्कुल, तो दिखा तिस जो अहाँ खरे ने जालू सह पिया रहना देना, कने सजालू काफ़ी गली सड़ी जाता तो असं साड़ी अपनी ही घरे दे कूड़े दी काफ़ी अच्छी खाद जड़ी असें बनी आती, तिना मुकाबला जड़ी असें कोई खाद नहीं करी सकती। बस तिना च दिखा हाँ कुछ एक होर चीज़ा मिलानियां, कने सह साड़ी खाद जड़ी असें इतनी अच्छी बनी आती, कने सह दिखा उन्हें ही खेतों साड़े कमे आई जाती, कने सह साड़ी जमीन जड़ी असें इतनी उपजाऊ हो जाती कि भाई क्या गलाना।
5: बिल्कुल, तो मिस्टरानी जी चलते चलते एक प्यारा दिया लोक गीत जड़ा है और हो
4: जी।

0: भाई मिश्रैनी जी दिखा घड़ी दी सुइयां सांझो उठने दा इशारा करा कर दिया।
1: बिल्कुल जी, कने इसी कने दसी दे ये कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रहा अंकित धीमान दा, कने प्रस्तुत करता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह, कने उन सांझो दोनों जो दिया अनुमति।
0: अच्छा जी, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मोजांग राइंदियां। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीटों और पुदुचेरी की 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यवसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: समारोह गोवा के तलेगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। श्री शाह ने 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। यह 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंधन निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लक्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया है कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहले शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को मजबूत कर रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैकटेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्य योजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण यह दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने सेमीफाइनल में आज सरिता को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. The Defence Acquisition Council today cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the Defence Forces. The approval was granted during a meeting of the Council held under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh. The proposals include procurement of chemical, biological, radiological and nuclear recce vehicles, advanced light helicopters and Sarvatra bridge system for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudra radars, design and development and subsequent procurement of marine gas turbines. Meanwhile, for the Indian Air Force, approval was granted to various proposals to enhance the war-fighting capability of fighters, transports and helicopters. The Defence Ministry said that 98% of total procurements will be made from the Indian industry. Union Home Minister Amit Shah today presented the prestigious President's Police Colour to the Goa Police at a ceremony held at Dr. Shyama Prasad Mukherjee Indoor Stadium in Talegaon in Goa. Mr. Shah also launched an AI-based voice assistant for the 1930 cyber fraud helpline, supporting 12 languages to provide quick assistance to citizens and tourists. Addressing the gathering, Mr. Shah praised the Goa Police for its service, professionalism, courage and discipline. He said the force has played an important role in maintaining internal security, protecting the coastline and safeguarding Goa's tourism and economy.
4: With 8 decades of glorious service, the Goa Police now proudly joins the distinguished ranks of police forces across the country that have been honored with the President's Colour. This prestigious recognition is a testament to the Goa Police's glorious history, professional excellence, courage, discipline, and unwavering dedication to duty. It is in recognition of these exemplary qualities and its outstanding service to the nation that the Honorable President has conferred the President's Colour upon the Goa Police.
2: गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
3: The Home Minister urged the force to take the lead in combating narcotics and work towards eliminating the menace by 2029. Mr. Shah also highlighted India's 7.8% GDP growth in the first quarter and its growing role in disaster relief and capacity building globally. Earlier in the day, Home Minister Amit Shah chaired the 28th meeting of the Western Zonal Council in Panaji. Delhi Chief Minister Rekha Gupta said the alleged owner of the building that collapsed yesterday in Satya Niketan has been arrested. In a social media post, the Chief Minister said 5 MCD officials, including the Deputy Commissioner, Superintending Engineer, Executive Engineer, Assistant Engineer and Junior Engineer have also been suspended with immediate effect. She said buildings with a fifth floor across Delhi have been ordered to be sealed immediately. The death toll in the Satya Niketan building collapse in New Delhi has reached 7. The search and rescue operation has completed at the site. All Indian Institute of Medical Sciences AIIMS in Delhi informed that a total of 12 victims were brought to the hospital. Of them, 6 died and 1 later succumbed to injuries. AIIMS added that 3 individuals who were rescued are in critical condition while 2 are stable. Of them, 1 has been discharged. The Election Commission today announced bypoll to Nagaon Lok Sabha seat in Assam. It has also announced assembly bypolls for 2 seats each in Tamil Nadu and West Bengal and 1 seat in Puducherry. The Commission said Madura Ratnakam and Dharapuram seats in Tamil Nadu, Reji Nagar and Nandigram seats in West Bengal and Thattanchavadi assembly seat in Puducherry will go to polls. Notification for the Lok Sabha and assembly bypoll will be issued on Wednesday. The Indian Embassy in China has requested the families of Indian nationals who remain missing in the devastating mudslide and flash flood last month to submit DNA samples to assist in the identification process. The embassy in a statement said families willing to provide DNA information are requested to submit the relevant data in the internationally recognized CODIS format to the Embassy of India. Reigning world champion Sheetal Devi has confirmed a medal for India by storming into the women's compound individual final on the third day of the stage 3 of World Archery Para Series in Ahmedabad today. And that is the end of this news bulletin.
0: आकाशवाणी का यह धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:10 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: कार्यक्रम खेती बाड़ी सुना कर दे सारे ही किसान कने बागवान साथी है जो मास्टर निधि राम राम कने मेरे सोगी टियाले पर हैं ग्राम सेवक जी। ग्राम सेवक जी तो अंजो भी मेरी राम राम
1: जी। राम राम मस्टरैनी जी तो अंजो भी राम राम कने सारे सुनने वाले किसान बागवान भाई बहना जो ग्राम सेवक दी प्यार भरी राम राम कने किसान साथियों टियाले पर हाजिर हो चुके ने एक बारी फ्री अपना कार्यक्रम खेतीबाड़ी लेकर ही
0: जी।
1: और हर रोज़ दी तरह आज भी यहाँ ढेर सारी जानकारियाँ साझा करनिया न मिठे मिठे प्यारे प्यारे लोग गीत सुनाने न कने कुछ अनुभव थोड़े तक पुजाने न।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल ता उसी कड़ी च आज अहां गल करनी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना दे बारे च।
1: जी
0: ता इस दी शुरुआत जेड़ी है 2015 च कीती गई थी कने इदा उद्देश्य है कि हर खेत जो पानी कने प्रति बूंद जेड़ी है से अधिक फसल किया मिलनी है कने दिखा पानी दी उपलब्धता बधाना कने जेड़ा पानी है से मिले तिदा सही तरीके ने हाँ किया उपयोग करी सकदे किया हाँ पानी दी बर्बादी जो रोकी सकदे यही सारा जेड़ा कुछ है इस योजना दा मकसद है। दिख ग्राम सेवक जी पहले मैं दिखती ही ना चलो शुरू शुरू तो हाँ खेती बाड़ी कर दे है तो जिथु तो हाँ अड़े खेत होंगे ना तिथु पानी नहीं होंगे हाँ तो मैं देखा है तुहाड़ा पड़ोसी कने तुहां ना बड़ी दुविधा च रहिंदे हे भई पानी तो है नहीं तो हुण खेतीबाड़ी कियां करिए पर तुहां बड़े समझदार थे तुहां शुरू च ही जिहड़ा ऐसा अपने खेते च पानी पजाई के छड्डिया।
1: बई दिखा मस्टरैनी जी मैं तुहाड़ी गल्लां टोका दा ना
0: जी
1: बई साढ़े टाइम च क्या हुंदा हा कि सारे जिहड़े ग्राएं दे लोग हन ना
0: जी
1: असां इक कोहली रख्या हुंदा हा
0: बिल्कुल जी
1: कने कोहली महाराज सै भ्यागा अक बंदा हा कि भई पानी लेना चला तो सारे ग्राएं दे हर घरे दा एक एक बंदा जड़ा सह कोहली कने जाना कने जड़ी साड़ी पुरानी कुल है ना जी
0: जी
1: अहां तिसदी रख रखाव मुरम्मत करी के जड़ा ऐसा खेतां च पानी पुजाई के ही छड़दे थे।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल दिखा ता ही तुहां फिर इतनी अच्छी खेती बाड़ी करना लगे है ना कने बाकी तुहाड़ा जड़ा से अखे वखे दे लोग भी कितनी खरी खेती कने दिखा तुहां टाइमे दे कदम चुकी ले हे ता ता जड़ी ऐसा तुहाड़ी खेती बाड़ी खरी हुई कने जे बैठे रहंदे भई जी अपी नलके होंगे इयां होगा उयां होगा ता आज क्या हाल होना था।
1: नहीं जी दिखा मस्टैनी जी एक गल और है कि फिरी असं जड़ा ऐसे अहां कच्ची कुल्लां दा जड़ा ऐसे करदे थे ना तिसियो मुरम्मत करदे थे लेकिन जालू ते प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जड़ी आई है ना
0: जी
1: इसते बाद जड़ी ऐसे पुरानियां कुल्लां दा जीर्णोद्धार हुई आ पुरानियां कुल्लां दी मुरम्मत करवाई के बधिया कने हुण बाकी कुल जड़ी ऐसे साढ़े खेत तक पूजा करदी है ता दिखा बड़ी बाकी योजना है ये और कई क्षेत्रां च जड़ा ऐसा इस योजना दा लाभ अली भी नहीं पुज्या है
0: जी दिखा ना मैं ए तुहाड़ी गल टोका दी दिखा तुहानू तां जानकारी मिली है कि ए योजना है तीए हटियाले दे माध्यम ते अपने बाकी दे किसान साथी हैं जो जिन्हां जो ये जानकारी नहीं है या पता नहीं है तो यह जानकारी पुजाना चाहते बई खेतां च पानी पुजी आंदा योजना दा फायदा तुहां चुकी सकदे कने खरी फसल ले सकदे।
1: बिल्कुल बिल्कुल कने दिखा जी इस योजना दा जड़ा ऐसा लाभ लेने ताएं असां जो अपने पंचायत स्तर पर जड़ा ऐसा संपर्क करना बड़ा जरूरी है
0: जी।
1: और अगर साड़ा एक किसान जड़ा ऐसा मिली के अगर अहां एक आवेदन करन ता बड़ी बाकी गल होनी
0: जी
1: अहां महिला मंडल दे माध्यम कने युवक मंडल दे माध्यम कने या किसान जड़े साड़े ने ते जड़ा साड़ा समूह होंदा किसान समूह है ना जी
0: जी
1: तिन्हां दे माध्यम कने भी जड़ा ऐसा अहां सामूहिक तौर पर जड़ा ऐसा इस योजना दा लाभ ले सकदे ने और अगर अहां इस योजना दा लाभ लेना है ता सानू अपने अपने आधार कार्ड देना पौने अपनी अपनी जमीना दे कागज पत्र देना पौने बैंक पासबुक देना पौनी है ना कने पासपोर्ट साइज दे फोटो भी देना पौने कने अपना अपना मोबाइल नंबर जड़ा ऐसा देना पौने और अपने नज़दीकी कृषि विभाग कार्यालय या ब्लॉक कृषि अधिकारी जे भी हैं साढ़े अहां तिन्हां कने जड़ा ऐसा संपर्क करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं ना
0: जी। तो दिखा ये बड़ी छैल जड़ी है योजना है दिखा बरसाती दा मौसम होने जड़ा ऐसा है अमूमन खत्म होने जो ही है तो खेतों च बरसाती दा पानी तो खूब है इस वेले तो हाँ जड़े निश्चिंत हैं कि साढ़े खेतों च पानी है या नहीं है, क्योंकि पता है कि फसल जो पानी जड़ा सा भगवान के बखे ते मिली आता। पर
1: जी
0: अगले कुछ महीनों बाद क्या होना कि खेतों से जालू पानी नहीं पुजना या पानी नहीं होना, तो फिर से तो हाँ क्या करना। तो इसते सजो जड़ा सा समय रेंद्या ही खरिया योजना ने जुड़ी के जड़ा सा फायदा चुकी लेना
1: बिल्कुल।
0: चाहिए।
1: कने दिखा मिस्टरानी जी, इस योजना के तहत जड़ा ऐसे अहाँ कृषि सिंचाई दे जड़े साड़े उपकरण हैं, औजार हैं, अहाँ तिन्हें भी खरीदी सकते हैं ना,
0: जी
1: जिया कि जड़ी साड़ी स्प्रिंकलर, जड़ी साड़ी फवारा, जड़ी
0: बिल्कुल
1: तकनीक
0: जी,
1: है ना,
0: ड्रिप
1: हाँ
0: सिंचाई
1: ड्रिप
0: हुई है,
1: सिंचाई हुई है,
0: बिल्कुल जी बिल्कुल।
1: इन्हें जड़े साड़े यंत्र है ना, जड़े साड़े औजार हैं, इन्हें यहाँ खरीदी सकते, कने इन्हें माध्यम कने जैसे ऐसे नए तरीके ने, आधुनिक तरीके ने जड़ा ऐसे खेत की
0: सिंचाई
1: सिंचाई
0: करी
1: करी
0: सकते।
1: सकते हैं, है ना।
0: नहीं जी तुम्हारा बिल्कुल ठीक गल बोला। तो दिखा गल ये है कि अहाँ कई बार क्या होंगे कि नलका छड़ दे तो साड़ा पानी कुछ ऐसी जगह जो चली पौंदा कि जिथू ना हाड़ी फसल होंगी ना कुछ होंगे, यानी कि स एक पानी की बर्बादी होंगी।
1: जी
0: तो इन्हों चीज़ों ने क्या होंगे कि स पौधे की जड़ा च ही पानी पुजता, कने पानी की बर्बादी भी नहीं होंगी, पानी की बचत होंगी। जड़ा पानी बचता सह हाँ कुछ होर सी पौधे जो लगाई सकते, तो ये तकनीकों का उपयोग करके हाँ जड़ा स जरूर फायदा चुकी सकते।
1: बिल्कुल। कने दूआ देखा जी, वर्षा का जड़ा पानी है तो इसका अहाँ संरक्षण करी सकते हैं ना,
0: जी
1: कने अपने खेतों जड़ा ऐसा समय पर इसकी सिंचाई करी सकते।
0: जी
1: तो ये कुछ गल्ला ने जड़ा, ये सारिया जड़िया चीज़ा ने ये इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आदियां ने, और इसके
0: दिखा
1: अंतर्गत अहाँ इसका लाभ ले ले सकते हैं
0: बिल्कुल
1: ना।
0: जी बिल्कुल। दिखा सामूहिक मिल के हाँ अपना एक कोई बड़ा जिहा तालाब खोदी सकते, तिस पानी है जो कठेरी सकते, कने जालू जी चाहिए उसे बरती सकता।
1: जी, और सब तो बड़ी गल मिस्टरानी जी ये है कि दिखा इस योजना के तहत जड़ा ऐसे किसान जो आधुनिक सिंचाई यंत्र खरीदने पर जड़ा ऐसा 45% से लेके 55% तक जड़ा ऐसा सब्सिडी भी मिलती है, यानी कि
0: बिल्कुल जी
1: अनुदान
0: बिल्कुल
1: का भी प्रावधान है ना।
0: जी
1: तो बड़ी बांकी योजना है, कने अगर कोई सोचा था कि भाई सांझो भी इस योजना का लाभ मिले तो से जरूर अपने पंचायत स्तर पर कने अपने कृषि अधिकारियों कने जड़ा ऐसा संपर्क करना है ना
0: बिल्कुल जी
1: जी। तो हूँ हाँ जड़ा ऐसा अगली गलबात ते पहले एक प्यारा दिया लोक गीत सुन देना।
0: जी

0: जी किसान साथी होता ए थी प्यारी देई लोक भेंट भजन कने इसते बाद जड़ा ऐसे हाँ भेंट वार्ता दी तरफ चलना है कने सुनने न अनुभवी किसाना दे गलवात।
1: किसान साथियों कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता दी कड़ी विच अहां दा प्रयास रहंदा कि रोज हर दिन नोईयां ते नोईयां जानकारियां अहां तुहां तक पुजाइए, चाहे वह अहां दे कृषि विज्ञानकां द्वारा दित्ती गई जानकारियां होन या फिर अहां दे उन्नत किसान बागवान साथियों कन्ने कीती गई गलबात होवे। उसी कड़ी विच अज मिंजो मौका मिला जुड़ा करदे हन मेरे कन्ने एक उन्नत किसान करदे हन इन्हां कन्ने गलबात। राम राम जी।
2: राम राम जी।
1: जी तुहां दा नाम?
2: बुद्धि सिंह।
1: कन्ने ग्राएं दा नाम?
2: एक पनियारखड़।
1: पनियारखड़ जमानाबाद।
2: जमानाबाद।
1: कन्ने ब्लॉक तुहां दा?
2: कांगड़ा।
1: बुद्धि सिंह जी ता तुहां खेतीबाड़ी करदे हैं ना?
2: हां जी हां जी हां जी।
1: किन्नी की जमीन है तुहां वाल?
2: सारी जमीन है, दो कमार।
1: ते ए सारी खेती करने काबिल है?
2: खेती करने काबिल है सर।
1: अच्छा, क्या क्या बांधे कमांदे?
2: बांधे धान, बांधे गाय, घाओ बांधे,
1: बाकी सब्जी वगैरह?
2: सब्जी लगांदा मैं। अच्छा। सब्जी हां लगांदे।
1: हां जी, जियां इब्बे कदी फसल ताना दी?
2: फसल खरी है सर।
1: कौन बी लगांदे ताना दा?
2: ए गुलाबो 834।
1: अच्छा अच्छा, देखा वे एक दो किस्म अगर हाँ लगाइया हो ना,
2: कई
1: बार क्या होंगे कि एक आधी किस्म कोई कुछ बारी पैदावार घटी भी आती
2: तो
1: उतनी जड़ी सह जड़ी भरपाई है दुई दुई किस्म हाँ जो करी जाती है ना। अच्छा, यानी कि बाहर तो लेंदे बीज है
2: ना,
1: सब्जियां भी बाहर लेंदे। जियां इससे बाद गल करते हैं खाद दी, खादा क्या
2: खाद? देसी खाद मंदी सर।
1: अच्छा, बाकी यूरिया वगैरह
2: नहीं? नहीं नहीं।
1: देखा बिल्कुल जी, हाँ बोलते हैं कि बाकी गल भी है कि देखा आए दिन बीमारियां वादा कर दी
2: वो दिन पर दिन।
1: हाँ, हाँ अगर एक ही घर देखा अगर पांच ते छे मेंबर भी अंदर ना विच मैं नहीं समझता कि कुछ कोई बीमारी नहीं होती है ना।
2: 90% दवाई निर्भर है दवाई पर।
1: हाँ जी,
2: 10% कोई होगा जो खरा होगा।
1: हाँ
2: हाँ जी, ना पथरी ऑपरेशन हो या करना शुगर थी।
1: हाँ जी
2: ठीक है।
1: हाँ जी हाँ जी,
2: 74 साल लगे।
1: अच्छा अच्छा, देखा भाई ये हाँ मैं देखा करता कि उम्र दे इतने तकाजे विच भी जड़ा सा तो हाँ देखा बिल्कुल जिसे बोलते ना हट्टे कट्टे ना कहना इतनी जमीन जड़ी से तो हाँ बाई हो ना। अच्छा, तो इससे पहले जी तो हाँ नौकरी वगैरह करते है?
2: नौकरी भी करने जिम्मेदारी थमी ही मैं सारी।
1: अच्छा,
2: 8-9 ठार पाली हड़ी में।
1: अच्छा, डंगरें दे?
2: हाँ, दो जने।
1: अच्छा,
2: ये तो लोग के बच्चे बच्चे लोग के है।
1: हाँ जी,
2: इतना काम करते हो।
1: अच्छा, तो नौकरी कुछ विभाग से की थी?
2: मैं वन विभाग से।
1: कितना अरसो हुई है रिटायर आए हो?
2: मैं 2014 से रिटायर।
1: अच्छा, 74 साल तो हाँ दी उम्र हुई है ना?
2: वो लग गया 74 में।
1: यानी कि जिस दौर में तो हाँ जी दिखा नौकरी की तो तीन दिन जितनी सड़क वगैरह भी नहीं बन गई
2: वगैरह नहीं सड़क पैदल जाना पैदल आना।
1: अच्छा, कितनी दूर जाते हैं पैदल है?
2: मैं 18 किलोमीटर जाना 18 आना 36 किलोमीटर तय करता हाँ।
1: यानी कि तू नेड़े ही
2: नेड़े ने नंदरूड़ राजल सुने ना?
1: हाँ, राजल नंदरूड़ बोर्ड क्वालू है।
2: बोर्ड क्वालू में फिर ये तरसू।
1: हाँ जी,
2: स्कोटे दे करी।
1: हाँ जी, अच्छा
2: जी तू डिमांड पाउन जी तू लिया
1: 18 किलोमीटर जाना
2: कने
1: 18 योना
2: 36 किलोमीटर तय पैदल आना पैदल जाना।
1: हाँ देखा कने
2: कने रंगा अंडनी
1: जो कि अगर वन विभाग की नौकरी दे तो बने ची अंडना पौना ना। बुद्धि सिंह जी जद तो हाँ नौकरी करते है वन विभाग च देखा भी जिया तो हाँ दसिया की बने बने आंडना क्योंकि नौकरी बने दी है ना तो तीन दिन भी जड़ा सा अग वगैरह लगती ही बना
2: जी राती राती अग बजाना जाना।
1: अच्छा, तदू भी लगती
2: है? लगती है अग बड़े भारी हूं तब नौकरी करना आसान है।
1: हाँ जी,
2: पहले नौकरी बड़ी कठिन होंगी।
1: हाँ जी हाँ। अच्छा, यानी कि जी हाँ दिखते ना तो आ बड़ी भरी बना बिच अग वगैरह लगदी उस दौर बिच भी जड़ी ज्यादा ही है ना।
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बड़ा दौर अग लगदी है जिस वेला जिस वेला हां से अग बुझाने वास्ते गब्बे छेद पाना।
1: हाँ,
2: अंडे कंडे कर देने
1: छेका करना है।
2: छेके कर दे।
1: अच्छी
2: नसरी बूटे लगाने चील लानी खैर लाना।
1: हाँ जी, ते बी वगैरह किया कर दे इकट्ठा
2: ला खैर खैर होंगे ते फलियां होनी।
1: हाँ,
2: ते से खैर
1: आपू ही करना है इकट्ठा। अच्छा,
2: मैं तो मेले बिंदे है।
1: हाँ जी
2: हाँ जी।
1: अच्छा, यानी कि तुम्हारा जो पूरा अनुभव है नर्सरियां नर्सरियां पर भी रही हो कि पौधा तैयार करना है
2: सब कुछ।
1: अच्छा जी,
2: ये अपना थे कितने सब बूटे तैयार हुए।
1: अच्छा अच्छा
2: जी, कौन भी हम बगीचा ले जाए।
1: बुद्धि सिंह जी इसके बाद तो हाँ करना हाँ गल कर दे ना पशु क्या क्या पाले तो हाँ कर है?
2: पशु जनाब एक गाय है।
1: दो दिन दी इस वेले?
2: इस वेले दिन दी
1: सोने वाली है ना। अच्छा हाँ, देखा भाई हाँ ठहरे किसान कहना अगर हाँ वाल एक अपनी एक घर एक अद्धी एक गा तो होना जरूरी है ना।
2: जरूरी है
1: क्योंकि दूध अगर घरे का चाहिए भी अगर पूरा हो जाता ना दिखा एक ही घर अगर दिन की चार चार पांच पांच बारी चाह भी बना कर दी था इतना प्योर दूध कुतू मिलना ना
2: नहीं मिलना
1: कहना अपने घरे का दुध दही है, छाह बनाई लिया, खोआ बनाई लिया, पनीर बनाई लिया, दही खाई लिया ना। कई बार जी यहाँ कोई खेती के ऐसे कैंप लगते, कोई ट्रेनिंग चल दी तो हम भी कुछ सिखलाई वगैरह ले जी रिटायर होने के बाद
2: नहीं यहाँ को ले।
1: यानी कि जड़ी तो खेती करते आए थे अपने तजर्बे करने जड़ी
2: पीढ़ी दर पीढ़ी। पहले देसी धान लाते तरह तरह के धान हो तरह तरह के बीज हो
1: दिखा। हूं तो खेती भी जी बिल्कुल जिसी यहाँ बोलते हैं आधुनिक हुई हो। हूँ दिखा जिया इतने सारे जिया कोई दवाइया आई हैं, पहले जिया धान की निदाई करते हैं
2: और बटाड़ करते हैं, इतों बटाड़ करते हैं, निदाइया करते हैं। एक एक पट्टिये हैं जो छे छे सत सत दिन लगे।

0: रहे हैं, 25 डिग्री कने काट रहे हैं 17 डिग्री, और आने वाले जड़े ऐसा है 1-2 दिन तक जड़ा ऐसा मौसम अली तक बारिश की संभावना जड़ी ऐसा बना कर दी है, कुथी कुथी जड़ा ऐसा बरखा हो सकती, कने निचले क्षेत्र जड़ा ऐसा कुछ टाइम वास्ते धुप रहनी कने कुछ टाइम वास्ते बदल रहने हैं।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, गलाने दी गल ए है कि जड़ी साड़ी काफ़ी बरसात थी सै हुण जड़ी है घटी है।
0: जी बिल्कुल, हुण कटदे जाना काम है ना जी।
1: जी कने दिखा होना हाँ अगली कोई भी जड़ी फसल लैनी है तो तिसदा हाँ जरूर अपनी खेतां च दिखी लैना, कने साफ सफाई जड़ी है सै खरे ने कर लैनी, कने खरी फसल लैनी। कने दिखा सब ते जरूरी एक गल है कि जालू भी साढ़े खेत खाली होंदे न तो सानू जड़ा सै अपनी मिट्टी दा परीक्षण जड़ा सै जरूर करवाई लेना चाहिए। तिसते
0: जी
1: पता लगता कि साड़ी मिट्टी जेड़ी है उस च कौन जे पोषक तत्व घट हैं कने कौन जे ज्यादा हैं। कई बार यहाँ क्या करते ना कि जिस चीज़ा की साड़ी मिट्टी च कमी है सह हाँ अपने खेतों च पान ना पान पर बढ़वारा वाली चीज़ा जड़ियाँ सह साते पई आदि हैं तो तिसने कोई फायदा तो हों नहीं। तो हाँ मिट्टी परीक्षण अगर करवाया होगा तो हाँ जो पता होना कि साढ़े खेतों च कैस चीज़ा की कमी है कने तिसकी हाँ पूर्ति करके जी इस खरी फसल ले सकते हैं।
0: बिल्कुल ठीक गलाया तो हाँ, खेती बाड़ी चाहे यहाँ कोई भी करनी हो, चाहे मुख्य फसल लगानी हो, साग सब्जियाँ लगानी होन,
1: जी
0: या कोई यहाँ पेड़ पौधा भी लगाना है ना जी,
1: जी
0: तो जे अगर हाँ अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाया होगा तो हाँ इसके आधार पर जड़ा ऐसा है कोई भी फसल है तो इसका चयन कर सकते, कोई भी पेड़ पौधे बगीचे वास्ते जड़ा ऐसा अगर लगाना चाहते हैं तो सभी यहाँ तो इसके आधार पर जड़ा ऐसा चयनित कर सकते हैं ना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: तां तो हाँ ठीक गलाया मिस्टरानी जी, कने उम्मीद करते हैं कि भाई साढ़े जितने भी श्रोता ने, जितने भी किसान बागवान भाई भैन है ना, तिन्हां से हर देखा जी मिट्टी परीक्षण जड़ा ऐसा घट ते घट जड़ा ऐसा 3 साल के बाद जड़ा ऐसा एक बारी जरूर करवाई लेना चाहिए है,
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: और मिट्टी परीक्षण ते ही पता लगता है कि साड़ी क्षेत्र की जड़ी मिट्टी है सै कुछ विशेष क्षेत्र या कुछ विशेष फसलों वास्ते जड़ा ऐसा फायदेमंद है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जालू हाँ मिट्टी परीक्षण करवाना है तो हाँ ऐसी मिट्टी नहीं लैनी है जड़ी रुखां दे थल्ले दी होए या बीड़ा दे बखे दी होए, हाँ साफ सुथरी मिट्टी कने दो चार जगह दी लैनी है कने फिर उस जो मिलाना है फिर उस दे हिस्से बनाने कने जिन्हें थैलिए च हाँ पाई के देनी है तो थैलिए च नमी भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कने थैलिए च एक बारी हाँ ना अंदर लिखना है एक बारी बाहर किसाने का नाँ खसरा नंबर वगैरह पूरा पता लिखना है जिसते साड़ी मिट्टी का परीक्षण जोड़ा हो हाँ जो एक स्पष्ट जानकारी जड़ी है से मिले।
0: जी बिल्कुल, तो हुण चलते चलते सुन देने एक प्यारा दिया लोक गीत।
1: जी

0: भाई वाह जी वाह, मिस्ट्रैनी जी दिखा आनंद आई है लोकगीत सुनी के, है ना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: कहने दिखा इस दे कन्ने ही जड़ा ऐसा घड़ी दी सुइयां सन जो उठने दा इशारा न करा कर दियां,
1: जी
0: पर जाने ते पहले दस दिए कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रहा अंकित धीमान और कार्यक्रम प्रस्तुति डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह,
1: उन मिंजो यानी कि मास्टरनी जो कने।
0: ग्राम सेवक जो कार्यक्रम संपन्न करने दी दिया अनुमति।
1: अच्छा
0: अच्छा जी
1: जी
0: जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 7:42 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतज़ार।

0: प्रादेशिक
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार हिमाचल। प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना 2027 का द्वितीय चरण जनसंख्या गणना 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान आपके घर आने वाले प्रगणक आपसे आधिकारिक रूप से प्रकाशित कुल 40 प्रश्न पूछेंगे। आपका हर एक सही उत्तर आने वाले कल की बेहतर नीतियों का आधार बनेगा। अपने घर आए प्रगणकों का सहयोग करें और पूर्णतः सही एवं सटीक जानकारी दर्ज कराएं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, चिकित्सा अधिकारियों को एनपीए देने पर विचार करेगी राज्य सरकार। कैंसर देखभाल संस्थानों को मजबूत करने पर 800 करोड़ रुपए होंगे खर्च। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से दिल्ली दौरे पर, प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 25 वर्ष पूरे होने को लेकर भाजपा 17 सितंबर से चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। किरतपुर मनाली फोर लेन सड़क पर देवड़ हनोगी के बीच बनी सुरंग का सफल ट्रायल पूरा, अगले 4 दिनों में सड़क खोलने की तैयारी। और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के बेहतर संचालन के लिए शिमला जिले को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार चिकित्सा अधिकारियों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस एनपीए देने पर विचार करेगी। उन्होंने आज शिमला में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में बताया कि मरीजों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी चिकित्सा महाविद्यालयों को सुदृढ़ किया जा रहा है और खाली पद चरणबद्ध ढंग से भरे जा रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश में कैंसर के मामलों में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार प्रदेश में कैंसर देखभाल संस्थानों को मजबूत करने पर 800 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसके अलावा एम्स दिल्ली की तर्ज पर अत्याधुनिक मशीनें और चिकित्सा उपकरण खरीदे जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री आज से नई दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान वे विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का 9 सितंबर को शिमला लौटने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 25 वर्ष पूरे होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज शिमला में बताया कि राज्य में ये अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे और सामाजिक सेवा से जुड़े विभिन्न कार्य किए जाएंगे। बिंदल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और 13 साल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश को विकास का मॉडल दिया है।
1: 17, 18, 19 और 20 चार दिन में हिमाचल प्रदेश में सब जगह रक्तदान शिविर लगेंगे और जितने ब्लड बैंक्स की कैपेसिटी 100% कैपेसिटी फुल करेंगे। स्कूली बच्चों को लेकर विकसित भारत की कल्पना, उसके ऊपर पेंटिंग कॉम्पिटिशन, डिबेट्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को सम्मानित करना, 25 साल सेवा समर्पण के तो 25 प्रकार के सेवा के अभियान। भारत जनता पार्टी हर मंडल में हर पोलिंग बूथ पर अलग अलग प्रकार से सेवा के अभियान।
0: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज रिकांगपियो में परियोजना सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की और किन्नौर जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जनजातीय विकास विभाग के तहत किन्नौर जिले में 78 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि से अनेक विकास कार्य किए जा रहे हैं। नेगी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत भी विकास कार्य चल रहे हैं। उन्होंने बागवानी, कृषि, स्वास्थ्य, पशुपालन और सामाजिक कल्याण विभाग को राज्य सरकार की योजनाओं का पंचायत स्तर तक व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। मंडी जिले में किरतपुर मनाली फोरलेन सड़क पर देवड़ हनोगी के बीच बनी सुरंग का आज सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस मार्ग को अगले 4 दिनों में खोलने को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
2: कुल्लू मनाली जाने वाले पर्यटकों और आम जनता के लिए राहत की खबर है। पंडोर टकोली बाईपास परियोजना के तहत आज देवड़ हनोगी टनल का सफल परीक्षण किया गया। इसके साथ ही अब इस टनल को अगले 4 दिनों में यातायात के लिए खोलने की तैयारी है। NHAI बोर्ड सदस्य विपनी शर्मा की मौजूदगी में टनल का ट्रायल रन किया गया। करीब 2600 करोड़ रूपए की इस परियोजना में कुल 10 टनल शामिल है। देवड़ हनोगी सेक्शन में 4 टनल है, जिसमें से फिलहाल 2 को यातायात के लिए खोला जाएगा। खोतीनाला के पास 45 मीटर ऊंचा और 140 मीटर लंबा पुल भी इस मार्ग का हिस्सा है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी आज इस मौके पर पहुंचे और टनल का निरीक्षण किया। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRnews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
3: आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुरू किए हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां साधारण बीमारियों के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर जैसी बीमारियों की जांच और निशुल्क इलाज भी होगा।
4: हर केंद्र पर टेलीमेडिसिन सुविधा से उपलब्ध होगा विशेषज्ञों का परामर्श, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए होगा योगा और व्यायाम प्रशिक्षण भी।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत शिमला जिले को वेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है। नई दिल्ली में हुए एक समारोह में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से जिला नोडल अधिकारी संजय कंवर को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने इस कार्य से जुड़ी पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि प्रदेश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने व स्थानीय उद्यमियों को योजना का लाभ पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करती है। सांसद कंगना रणौत ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज कुल्लू में जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर जिले में चल रही केंद्र प्रायोजित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। कंगना रणौत ने अधिकारियों को जिले के स्थानीय व प्राकृतिक उत्पादों को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश भी दिए।
5: सबसे ज्यादा तो जो हमारे केंद्र की इतनी योजनाएं हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो कोई एड देना हो या सब्सिडीज हो या उसके उपरांत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स, कैसी कितनी स्कीम्स हैं और हमारे लोगों में इतना टैलेंट है, तो यही चीज को लेकर मैंने इन्हें कंपेल भी किया अधिकारियों को कि आप लोगों के हाथ में ही हिमाचल का जो है फ्यूचर है। जितना बजट दिया है उसका 80% लगभग हो चुका है इम्प्लीमेंट, जितना बेहतर हो सके 100% करने की कोशिश करनी।
0: राज्य पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने पेंशनरों की लंबित देनदारियों को लेकर राज्य सरकार पर लोगों को गुमराह करने और विधानसभा में गलत आंकड़े प्रस्तुत करने का आरोप लगाया है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने आज धर्मशाला में कहा कि मुख्यमंत्री ने मॉनसून

0: समापन सत्र के दौरान विधानसभा में बताया कि 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों के एरियर, लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी सहित अन्य बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है, जो पूरी तरह भ्रामक है।
1: माननीय मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश, उन्होंने कहा है कि मैंने और मेरी सरकार ने 57 साल के ऊपर सभी पेंशनरों को उनके बकाया राशि की अदायगी जो है वो कर दी गई है, जबकि ये बिल्कुल सत्य से परे है। ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन अधिसूचना जो है सरकार की तरफ से नहीं की गई है कि इस पेंशनरों को उनका पूरा एरियर जिसमें लीव इन्कैशमेंट, ग्रेच्युटी एंड कम्यूटेशन की अदायगी की गई हो, सरासर गलत है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ये कह रहे हैं कि 55% जो है क्लास 3 की देनदारियां दी गई हैं और क्लास 1 और क्लास 2 की 35% जो है वो अदायगी जो है हो चुकी है, और एक जनता को गुमराह करने के लिए ये जो बयान जो है दिया गया।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू में बंजार विधानसभा क्षेत्र के पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में शिरकत की। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करने का आह्वान किया। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया और जानबूझकर चुनाव करवाने में देरी की। उन्होंने दावा किया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में लोगों ने भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किया है और अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा प्रचंड जीत हासिल करेगी। राज्य अटॉर्नी कल्याण एसोसिएशन की एक बैठक बिलासपुर में हुई, जिसमें एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों और कार्यकारी निकाय का गठन किया गया। इसमें जिला अटॉर्नी कांगड़ा एनएस चौहान को सलाहकार, जिला अटॉर्नी गृह राज्य सचिवालय नवीन चंद्र को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सहायक जिला अटॉर्नी स्वास्थ्य शिमला रोहिन बिष्ट को सचिव चुना गया। इसके अलावा भी अन्य सदस्यों का चुनाव किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चिकित्सा अधिकारियों को एनपीए देने पर विचार करेगी राज्य सरकार। कैंसर देखभाल संस्थानों को मजबूत करने पर 8 करोड़ रुपए होंगे खर्च। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से दिल्ली दौरे पर, प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 25 वर्ष पूरे होने को लेकर भाजपा 17 सितंबर से चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। किरतपुर मनाली फोर लेन सड़क पर देवड़ हनोगी के बीच बनी सुरंग का सफल ट्रायल पूरा, अगले 4 दिनों में सड़क खोलने की तैयारी। और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के बेहतर संचालन के लिए शिमला जिले को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
3: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
2: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
3: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी प्रसारित किए गए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी शिमला और एफएम शिमला से आइए अब सुनते हैं रोजगार समाचार। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार रोजगार एक्सचेंज के माध्यम से बैच वाइज प्रशिक्षण के आधार पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल के 7 पदों को भरा जाना है। प्रमुख रिक्ति इस नौकरी का विवरण इस प्रकार से है। पद एवं विभाग जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल अधीन इंजीनियर इन चीफ जल शक्ति विभाग टूटीकंडी शिमला के लिए। संपर्क व्यक्ति आप कर सकते हैं श्रीमती अनीता मेहता, रजिस्ट्रार जल शक्ति विभाग, प्रधान कार्यालय टूटीकंडी, शिमला 171005। वहां का फोन नंबर है 0177-2832-9931। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 0177-2832 9931। वेतन एवं शर्तें इस प्रकार से हैं, 2 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि के लिए 15,500 रुपये प्रति माह निश्चित वेतन, आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण करने का नियमितीकरण का प्रावधान है। इस पद के लिए कुल पद 7 हैं, सामान्य 3, सामान्य IRDP के लिए 1 पद है, सामान्य EWUS के लिए 1 पद, SC के लिए 1 पद भरा जाना है, SC BPL के लिए 1 पद भरा जाना है। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में ड्राफ्ट्समैन पद के लिए भर्ती की शर्तों का उल्लेख भी है, जिसमें मैट्रिक और 2 वर्षीय डिप्लोमा योग्यता, 18 से 45 वर्ष की आयु सीमा और गैर आदिवासी क्षेत्रों के लिए 21 सितंबर 2026 और आदिवासी क्षेत्रों के लिए 28 सितंबर 2026 की आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। पद के लिए आवश्यक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण होने के साथ साथ किसी मान्यता प्राप्त ITI संस्थान से ड्राफ्ट्समैन ट्रेड में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। रोजगार समाचार समाप्त हुए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 370।
5: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। सबरस सुनने वाले हमारे तमाम श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं श्रेया घोषाल, सोनू निगम व साथियों के गाए इस गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे गुरदास मान की आवाज में ये गीत। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं सरतिंदर सरताज की आवाज में ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM 103.4 MHz पर। रात्रि के 8:30 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत। सोनू निगम, विनोद कुमार राठौर और वह साथियों की आवाज़ों में।

बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: अंश फिल्म से ये देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज व साथियों की आवाजों में। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या और रात्रि 9 न्यूज 8:09 रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्यनिकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची, भारत का पदक पक्का। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
2: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। CBRN टोही वाहन क्षेत्रों की पहचान, निगरानी और उन्हें चिन्हित करने में सक्षम होंगे। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
3: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
1: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
4: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें अब केवल विवादों के समाधान का मंच नहीं रह गई हैं, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
5: गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज समारोह में श्री शाह ने गोवा पुलिस की सेवा और साहस की सराहना की। उन्होंने 1930 हेल्पलाइन के लिए AI आधारित वॉयस असिस्टेंट शुरू किया। श्री शाह ने 112 हेल्पलाइन पर कम हुए प्रतिक्रिया समय का उल्लेख किया और गोवा पुलिस से 2029 तक नशीले पदार्थों की समस्या खत्म करने में नेतृत्व करने का आह्वान किया। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, फर्जी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। इंडिया वेलकम्स द ब्रिक्स कंट्रीज एज द ग्रुपिंग मार्क्स द 20 ईयर्स ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 2026। ब्रिक्स समिट 2026 इज बीइंग होस्टेड इन भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, फ्रॉम 12th टू 13th सितंबर 2026 अंडर इंडियाज चेयरशिप थीम Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस LPG रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू LPG उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में LPG आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही।
9: ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो। न केवल हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले, बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें। सभी मशीनें और उपकरण भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें।
1: निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मधुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
10: न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थी या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी पीजी और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी पीजी आवासों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार हो रहा है। केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।
11: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
12: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसरो के निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज कर दिया है। बेंगलुरु में आज उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
13: इसरो इज नॉट प्राइवेट।
14: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और NCS के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है, बजट की कोई कमी नहीं है।
1: चीन में भारतीय दूतावास ने पिछले महीने हुए भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय नागरिकों की परिजनों से पहचान प्रक्रिया में सहायता के लिए DNA नमूने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि जो परिवार DNA संबंधी जानकारी देना चाहते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS प्रारूप में संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं। दूतावास इस जानकारी को संबंधित चीनी अधिकारियों को भेजेगा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजादा सिदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईतिंग से खेलेंगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय। आज रात 9:30 बजे इस फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों से इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। सवाल #AskAIR के साथ X पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज हम आपको सुनवाएंगे संगीतकार आदेश श्रीवास्तव के संगीतबद्ध किए गए कुछ गीत।

दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कलाकार से अवगत करवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी मधुर धुनों और अनूठी संगीत शैली से करोड़ों श्रोताओं के दिलों में विशेष स्थान बनाया। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध संगीतकार और गायक आदेश श्रीवास्तव की।

आदेश श्रीवास्तव का जन्म 4 सितंबर 1964 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ। बचपन से ही उन्हें संगीत में गहरी रुचि थी। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की और धीरे धीरे अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर फिल्म संगीत की दुनिया में कदम रखा। आदेश श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत 1990 के दशक में की। वर्ष 1993 में फिल्म कन्यादान से उन्होंने बतौर संगीतकार अपनी पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने अनेक फिल्मों में यादगार संगीत दिया। बागवान, चलते चलते, राजनीति, देव, कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों में उनके संगीत को खूब सराहा गया।

कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है सोनू निगम, उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति व साथियों ने।

आदेश श्रीवास्तव के दोनों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे भारतीय संगीत की मिठास को आधुनिक संगीत के साथ सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते थे। उन्होंने कई लोकप्रिय गीतों की रचना की। आदेश श्रीवास्तव ने केवल फिल्मों तक ही अपने संगीत को सीमित नहीं रखा, बल्कि देशभक्ति, भक्ति संगीत और सामाजिक सरोकारों से जुड़े गीतों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन, सोनू निगम, सुखविंदर सिंह और कई अन्य कलाकारों के साथ भी कार्य कर चुके हैं।

अब सुनते हैं कार्यक्रम गूंज पहाड़ों के। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं बंसी भारद्वाज, लेख रामपाल और मदन गौतम के गाए इस लोक भजन के साथ।

अभी आप सुन रहे थे वर्षा कटोच की आवाज़ में ये लोकगीत। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं राज प्रभाकर का गाया ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे राकेश कुमार को कार्यक्रम में। आइए अब सुनते हैं नियामत हुसैन का गाया हुआ ये लोक गीत, और ये है इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 10 बजे हैं और ये समय है कार्यक्रम पसंद आपके गीत हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम का। और हमारे स्टूडियो का नंबर तो वही है 01892224391, 01892224391। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे में। जी हाँ, खूबसूरत सा अंक लेकर फिर से हाजिर हैं हम। और आज का ये अंक सुनेंगे आप अपने रेडियो दोस्त रेनू मनकोटिया के साथ। कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बहुत अच्छा लगता है जब आप सब श्रोताओं से हम सजीव जुड़ते हैं, बातें भी होती हैं और साथ ही आपके बारे में हम जानते हैं और आपका मनोरंजन करवाते हैं खूबसूरत से गीतों के साथ, जिन्हें आप चुनते हैं हमारे द्वारा चयनित की गई फिल्मों से। तो आज भी हमारे पास कई फिल्में हैं, लेकिन फ़ोन नंबर वही है जिसे आपको मिलाना है और बात हमसे करनी है। नंबर है 01892224391। जी हाँ, एक बार हम फिर से आपको अपना नंबर बता दें 01892224391। और आज की हमारी फिल्में हैं मन की आँखें, अमर प्रेम, आनंद, ब्रह्मचारी, अभिमान, वक्त, कुर्बानी, पारसमणि, प्रेम बंधन, कश्मीर की कली, लाल दुपट्टा, मलमल का, भ्रष्टाचार, सच्चा झूठा, सच्चाई, सागर, दूध का कर्ज, तेरी मेहरबानियाँ। जी ये फिल्म लेकर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, जुड़ गए हैं कॉलर हम संग, देखते हैं कौन और कहाँ से हैं ये। हेलो,
1: हम जी योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: जी योगेश जी, आप हैं हमारे पहले कॉलर, बहुत अच्छा लगता है जब आपका कॉल आता है, कितनी शिद्दत से आप कॉल मिलाते हैं और मिलता भी है।
1: जी
0: जी बताइए कौन सी फिल्म का गीत आज हम आपको सुनवाएं।
1: पहले नंबर पर कौन सी फिल्म बताएं?
0: मन की आंखें।
1: तो इसी में से कोई प्यारा सा गीत सुनवा देंगे।
0: जी बिल्कुल, और कुछ कहना चाहेंगे?
1: बढ़िया है कार्यक्रम में जुड़ना, बातें करना, पसंद के गीत सुनना, कुल मिलाकर कहे तो रेडियो से हमेशा एक नया ऊर्जा मिलता है।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा, बहुत सारी जानकारियां भी मिलती हैं, मनोरंजन भी होता है।
1: जी
0: जी चलिए सुनवा रहे हैं हम आपको।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी, कार्यक्रम में ऐसे ही जुड़े रहिए।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी
1: जी, मैडम जी नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा ज़ोर से बोलिए प्लीज़।
1: हम बोल रहे हैं नूरपुर से, नागनी बुढ़वार से।
0: जी कौन बात कर रहे हैं?
1: विजय कुमार जी।
0: विजय जी, हाँ जी बताइए, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: कौन पिक्चर है मैडम जी आपको?
0: अमर प्रेम, आनंद, ब्रह्मचारी, अभिमान, वक्त, कुर्बानी, पारसमणि, प्रेम बंधन, कश्मीर की कली, लाल दुपट्टा मलमल का, भ्रष्टाचार, सच्चा झूठा, सच्चाई, सागर, दूध का कर्ज, तेरी मेहरबानियां।
1: सच्चा झूठा का सुना दो कोई।
0: जी और कुछ कहना चाहेंगे?
1: बस मैडम जी आपका फोन लगता रहता है वैसे।
0: जी चलिए, बहुत अच्छा लगता है, श्रोता हम संग जुड़ते हैं, बातें भी होती
1: बहुत अच्छा
0: हैं,
1: लगता है मैडम जी, टाइम पास हो जाता है, शाम के काम भी करते रहते हैं ना।
0: साथ साथ मनोरंजन भी होता रहता है। जी बिल्कुल
1: जो मंदिर में सुनते रहते हैं
0: जी। चलिए,
1: जी।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार जी।
0: जी। नमस्कार जी, कार्यक्रम है पसंद आपके गीत हमारे।
1: जी
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मैं जी वीरेंद्र भियाण, गांव देवरा, जिला हिसार, हरियाणा से बात कर रहा हूँ जी।
0: हरियाणा से जी, वीरेंद्र बताया नाम अपना।
1: गांव देवरा, जिला हिसार, हरियाणा से मैम जी।
0: जी, नाम आपने वीरेंद्र बताया अपना।
1: वीरेंद्र भियाण जी, वीरेंद्र भियाण, गांव देवरा, जिला हिसार, हरियाणा से मैम
0: जी
1: जी।
0: बिल्कुल, बताइए कौन से फिल्म का गीत सुनेंगे आज?
1: दूध का कर्ज का सुनना मैम जी, वो
0: कौन सा वाला? अच्छा,
1: है ना मैम जी, जो दीन भक्ति है वो कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले यह था मैम जी, मेरे को गीत बताएंगे पर कौन कौन से इसमें? दीन बजाता जा तेरे, ये सुनना मैम जी।
0: नहीं ये तो इस फिल्म का नहीं है।
1: इसी का मैम जी, दूध
0: नहीं
1: का बजाता जा तेरे।
0: जी, बिल्कुल याद है आपको,
1: जी, मैंने ये रोहतक आकाशवाणी पे सुना था मैम जी गीत मैंने
0: जुड़े रहते हैं आप, कॉल करते रहते हैं।
1: जी। मैं ईमेल भी करता हूँ मैम जी, ईमेल भी मेरे शामिल होते हैं और कॉल भी आपसे कई बार लगा
0: बहुत
1: लेते
0: अच्छा
1: हैं।
0: लगता है, देखो कितनी शिद्दत से हमारे संग हमारे श्रोता जुड़ते हैं, है ना?
1: कोई व्हाट्सएप पे प्रोग्राम होता है मैम जी फिल्म संगीत का, कोई व्हाट्सएप प्रोग्राम?
0: बताइए क्या करते हैं आप?
1: मैम जी पेट्रोल पंप पे टहलने ना मैम जी, और साथ में खेती बाड़ी भी करता हूँ मैम जी।
0: जी, साथ साथ मनोरंजन भी चलता रहता है।
1: हाँ जी, और आपके प्रोग्राम भी सुनते हैं मैम जी साथ में।
0: चलो, बहुत अच्छा लगता है हमें भी। कार्यक्रम में कॉल किया, धन्यवाद, सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हाँ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
0: हाँ जी, नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
0: मैडम, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से।
1: जी बताइए, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज?
0: आज फिल्म कौन सी रखी है मैडम?
1: अमर प्रेम, आनंद, ब्रह्मचारी, अभिमान, वक्त, कुर्बानी, पारसमणि, प्रेम बंधन।
0: तो वो उसमें वक्त फिल्म में एक गीत है, आगे भी जाने ना तू, गाना है ना, आगे भी
1: जी बिल्कुल
0: जाने ना तू, ऐसा गीत है ना मैडम?
1: जी जी जी जी।
0: हाँ, ये वक्त अच्छे, खैर फिल्में तो आपने जितनी भी चुनी है वो सभी बहुत अच्छी फिल्में हैं
1: जी।
0: और जो पुराने फिल्मों के जो गीत रात के समय में सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सभी की पसंद रख जी।
0: नहीं, सभी की पसंद होती है, उसके अंदर पुराने गीत भी होते हैं, नए
1: भी होते हैं। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, तो थोड़ा सा चॉइस रखनी पड़ती है, पसंद सबकी है ना, उसका ख्याल रखना पड़ता है। और बताएंगे कुछ अपने बारे में?
0: मैं मैडम, मैं हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है मेरा
1: जी,
0: और उज्जैन एक महाकालेश्वर जी की नगरी है, ज्योतिर्लिंग है उज्जैन में
1: जी बिल्कुल।
0: पर्यटन भी है यहाँ पर उज्जैन का, जो पर्यटन बाहर से तीर्थयात्री बहुत आते हैं दर्शन करने के लिए उज्जैन महाकालेश्वर
1: जी बिल्कुल।
0: और आज का दिन खास है उज्जैन के लिए
1: जी,
0: खास इसलिए है कि जो महाकालेश्वर भगवान है
1: जी,
0: वो पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं।
1: क्या बात है, ये नजारा तो और भी जी
0: बिल्कुल खूबसूरत नजारा था
1: आज का। जी जी।
0: और आज करीब 5 लाख यात्री बहुत से दर्शन करने के लिए आए थे उज्जैन में
1: जी,
0: और पालकी में भगवान महाकालेश्वर जी, जो उज्जैन के जनता है, प्रजा है यहाँ की, उनको हालचाल जानने के लिए भगवान पालकी में सवार होकर शाही सवारी के रूप में निकलते हैं
1: जी।
0: और आज अलग अलग प्रकार के 7 श्रृंगार किए गए थे, 7 पालकी निकल गई थी।
1: क्या बात है, बड़ी किस्मत वाले हो, आपको दर्शन होते हैं है ना, और बहुत अच्छा लगता है।
0: जी जी मैडम जी, ये तो बहुत ही धर्ममय नगरी है
1: बिल्कुल।
0: और शहर के सभी शांत स्वभाव के व्यक्ति रहते हैं यहाँ पर, और सभी धर्म समाज के जितने भी सभी अतिथि जो आते हैं बाहर से, उनका स्वागत करते हैं
1: जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप संग बात करके, यूं ही जुड़े रहिए और सुनिए अपनी पसंद का गीत। कार्यक्रम में कॉल किया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।

जी कार्यक्रम में स्वागत है। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है आपकी। सिग्नल में रहकर बात कीजिए।

0: पसंद आपके गीत हमारे ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लेते एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक, लौटते हैं।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतर

0: नमस्कार।
1: हेलो, नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
0: गुजरात से धीरज रबारी बात कर रहा हूँ
1: जी। बताइए, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज?
0: जो बाकी फिल्में हैं दीदी, अगर हो सके तो बताइए, क्योंकि मैं फोन लगा रहा था।
1: प्रेम बंधन, पार्समनी, सच्चाई, सागर, तेरी मेहरबानी आम, भ्रष्टाचार, कुर्बानी।
0: कुर्बानी फिल्म का आप जैसा कोई नहीं जिंदगी में आए, वही गाना अगर हो सके तो सुनवाएगी
1: जी बिल्कुल, हम सुनवाएंगे इस फिल्म का गीत। और कुछ बताना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कुछ?
0: जी। दीदी, सावन महीना हमारे यहाँ अमास से शुरू होता है, अमास के बाद, और भारत के कई राज्यों में सावन महीना या और कोई महीना पूनम के बाद शुरू होता है। तो यही बदलाव है भारत की संस्कृति में, परंपरागत यानी अलग अलग रिवाज होते, अलग अलग पहनावे होते, उसमें भारतीय संस्कृति यानी सम्मिलित है दीदी
1: जी। चलिए, बहुत अच्छा लगता है हमें आपसे भी जानकारियाँ मिलती हैं
0: जी।
1: जी। कार्यक्रम में यूं ही जुड़े रहिए, सुनिए अपनी पसंद का गीत। कार्यक्रम का कॉल करने के लिए शुक्रिया,
0: धन्यवाद आपका।

0: पसंद आपके गीत हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: इच्छत अग्रवाल बोल रहा हूँ, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: जी बताइए, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज आप?
1: मैम मुझे सुनवा दी है आन मेरा सजना का, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।
0: कौन सा गीत?
1: कोई नजराना लेकर आया है दीवाना तेरे लिए।
0: जी पसंद तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन जो आज हमने आपके लिए फिल्में चयनित करी हैं वो हैं अमर

0: प्रेम आनंद ब्रह्मचारी अभिमान पारसमनी प्रेम बंधन कश्मीर की गली लाल दुपट्टा मलमल का भ्रष्टाचार सच्चाई सागर तेरी मेहरबानियां।
1: कश्मीर कली का कौन सा गाना है मैडम
0: जी? आप कौन सा सुनना पसंद करेंगे?
1: एक दीवाना वाला है मैडम, शम्मी कपूर का याद नहीं आ रहा है।
0: दीवाना हुआ बादल?
1: नहीं नहीं नहीं कोई दूसरा है, एक और।
0: दीवाना तो एक ही है।
1: कश्मीर की गली में एक बहुत बढ़िया गाना है,
0: सारे बहुत बढ़िया है, तारीफ करूं?
1: आजकल तेरे मेरे चर्चे प्यार के,
0: ये तो ब्रह्मचारी फिल्म का गीत है, वो सुनेंगे
1: हाँ
0: आप?
1: जी यही सुनवा दीजिए। नहीं मैं वही बोला कि ब्रह्मचारी का सुनवा दीजिए।
0: अच्छा चलिए ठीक है, फिर हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में कॉल किया, बहुत अच्छा लगा, यूं ही जुड़े रहिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी।
0: जी कार्यक्रम में कॉल किया, धन्यवाद।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की मिलीजुली आवाज़ों में ये गीत आपके रेडियो सेट्स पर ब्रह्मचारी फिल्म से।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: हाँ जी, संजय बात कर रहा हूँ।
0: संजीव,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: कहाँ से?
1: बैनास से जी।
0: जी बताइए, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज?
1: तेरी मेहरबानी है
0: कौन सा गीत सुनेंगे?

0: कोई भी सुना दो अपनी मर्जी से जी।
1: जी, और कुछ बताना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से?
0: बस मैम आजकल मौसम ठीक हो गया जी, बढ़िया हो गया।
1: जी,
0: हाँ जी हाँ जी।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सुनिए अपनी पसंद का गीत।
0: ठीक, धन्यवाद।
1: कार्यक्रम में

0: हेलो
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम जी, मैं जलंधर से पॉल बोल रहा हूँ।
0: जलंधर से कॉल
1: पॉल बोल रहा हूँ।
0: पॉल बोल रहे हो जी?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज इस कार्यक्रम के?
1: जी तो मैडम सुना दीजिए मुझे, फिल्म का नाम है वक्त। वक्त का टाइटल सॉन्ग है वक्त की हर शय गुलाम। वक्त की हर शय।
0: वक्त फिल्म से तो हम सुनवा चुके हैं गीत।
1: अभी कौन सी फिल्म?
0: अभी है अमर प्रेम, आनंद अभिमान, पारसमणि, प्रेम बंधन।
1: प्रेम पारसमणि का सुना दीजिए
0: जी। बिल्कुल, कार्यक्रम में कॉल किया, बहुत अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहेंगे?
1: हाँ बिल्कुल जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे देखो अभी बरसात का मौसम तो तकरीबन निकल ही चुका है, फिर भी हमें पर्यावरण का बहुत ख्याल रखना चाहिए, कोई ना कोई पेड़ जरूर लगाना चाहिए।
0: जी बिल्कुल।
1: ये ऐसा है कि देखो कितने इधर जैसे नेपाल में कितनी बाढ़ आई है
0: जी जी।
1: हमारे वो पेड़ कटते जा रहे हैं, तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ अपना योगदान जरूर देना चाहिए, ये पेड़ पौधों को महत्व देनी चाहिए हमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं संग साझा करी है। बिल्कुल, पेड़ लगाने चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए।
1: जी
0: पॉल जी, कार्यक्रम में कॉल किया, बहुत अच्छा लगा। जुड़े रहिए यूं ही आकाशवाणी धर्मशाला के साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: हेलो
2: हेलो रेनू जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कैसे हैं?
2: बहुत बढ़िया रेनू जी, आप आज आपने फोन उठाने में बहुत देर कर दी।
1: फोन ही आपका अभी मिला तो क्या करें। और बताइए कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया है जी, आप सुनाइए, ठीक ठाक हो?
1: बिल्कुल ठीक हैं। दे दीजिए परिचय अपने श्रोताओं को भी।
2: मैं बोल रहा हूँ जी, पंजाब के जिला होशियारपुर, तहसील मुकेरिया के गांव महतापुर से, महेंद्र सिंह राणा
1: जी। राणा जी, बताइए कौन से फिल्म का गीत सुनवाएं आज आपको?
2: रेनू जी, आपने आज देर कर दी, इसलिए मैं आपकी पसंद का ही गाना सुनूंगा और आप सभी श्रोताओं को भी सुनाना चाहता हूँ, जो आप अच्छा समझेंगे वो ही सुना दी।
1: जी बिल्कुल, फिर भी फिल्में हैं अमर प्रेम, आनंद, अभिमान, प्रेम बंधन, कश्मीर की कली।
2: फिल्में जो हैं बहुत बढ़िया हैं। अगर अभिमान फिल्म का सुना दीजिएगा, अमिताभ बच्चन और जया भादरी के ऊपर फिल्माया गया है वो गाना, कोई भी सुना दीजिए।
1: जी बिल्कुल, और कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से?
2: कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कहना क्या है, अब समय कम है, और भी श्रोता होंगे। देखिए, जीवन में कोई भी काम करना है उसको सोच समझ कर करिए, और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहिए, प्यार से रहिए, और जो भी अपना कार्य है वो समय अनुसार करिए। बहुत बातें तो बहुत है, लेकिन जब टॉपिक होगा उसके ऊपर बात होती है तो फिर मजा आता है बात करने के लिए।
1: जी बिल्कुल, फिर भी आपने अच्छी जानकारी दी, कार्यक्रम में कॉल किया, धन्यवाद।
2: ठीक है रेणु जी, धन्यवाद आपका
1: जी।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार जी। आप हैं हमारे इस कार्यक्रम के आखिरी कॉलर, कौन बात कर
1: मैडम
0: रहे
1: जी
0: हैं?
1: 10 बजे से ही लगा हूँ, नहीं मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ जम्मू सैना कॉलोनी से, केशव शर्मा जी।
0: केशव जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: मैडम बहुत
0: चलिए, कब
1: दिनों के
0: से
1: बाद मिला
0: आप
1: है
0: कर
1: फोन।
0: रहे थे कोशिश, तो आपकी कोशिश जो है वो कामयाब हो चुकी
1: मैडम
0: है।
1: तकरीबन हर बार मेरी आखिरी कॉल ही लगती है जी।
0: चलिए, कोई बात नहीं, लग तो गई, कई तो अभी भी लाइन
1: चलो
0: में
1: मैडम,
0: हैं, कोशिश कर
1: अब
0: रहे
1: दो तीन
0: हैं।
1: हफ्ते हो गए नहीं लग रही थी।
0: जी, बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं, जल्दी से
1: मैडम
0: बता
1: सच्चाई
0: दीजिए।
1: फिल्म का हो गया जहाँ भी रह गया है,
0: कौन सी फिल्म का?
1: सच्चाई का, 100 बरस की
0: नहीं,
1: जिंदगी से
0: अभी
1: अच्छी है
0: नहीं
1: प्यार।
0: हुआ जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा जो है गीत आपने चूज़ किया है, और अभी हम आपको सुनवाएंगे, ठीक है जी? कार्यक्रम में कॉल किया, बहुत अच्छा लगा। सुनिए अपनी पसंद का गीत।
1: ओके मैडम, थैंक यू।
0: शुक्रिया जी।

बहुत सारी कॉल्स अभी भी हमें आ रही हैं, लेकिन समय की कमी के कारण अभी हम कॉल शामिल नहीं कर पाएंगे। चलते चलते हम आपको बता दें, कार्यक्रम प्रस्तुत करता डॉक्टर जितेंद्र पॉल सिंह और हमें तकनीक के सहयोग मिला अंकित धीमान से। अब अपने रेडियो दोस्त रेणु मनकोटिया को दीजिए अनुमति। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: रही से।
1: रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
1: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
3: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी ढील देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीटों और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। दक्षिण लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत हो गई है। कफर रोमाने गांव में एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले में 11 लोग मारे गए जिनमें 2 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Defense Acquisition Council, DAC, has cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the defense forces. Our correspondent reports that the approval was taken during a meeting of the council held today under the chairmanship of Defense Minister Rajnath Singh.
0: The council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear CBRN recce vehicles, high mobility vehicles HMV, self-propelled mechanical mine layers MML, advanced light helicopters ALH, trawl tanks and Sarvatra bridge system for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudhra radars, design and development and subsequent procurement of marine gas turbines MGT. Arudhra radars will replace the existing air route surveillance radars at various naval air stations, and MGT, a warship propulsion system, will reduce dependency on foreign vendors. Meanwhile, for the Indian Air Force, approval was granted to various proposals to enhance the warfighting capability. Approval was also accorded for procuring ground-based multipurpose jammer and installing Defence Forces secure access card system. The Defence Ministry said 98% of total procurement will be made from the Indian industry. The CBRN recce vehicles will be capable of detecting, identifying, monitoring and marking of areas contaminated with CBRN agents. The HMVs will enhance operational capabilities, logistic supports and mobility in challenging terrains. With Rishu, Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
4: Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra tomorrow. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. He will also dedicate to the nation three important sections of the Western Dedicated Freight Corridor WDFC, covering 326 route kilometers. Briefing media personnel at Ahmedabad Airport today, Railway Minister Ashwini Vaishnaw emphasized that the eastern and western dedicated freight corridors will serve as a crucial backbone for the country's transport and logistics sector. The Prime Minister will also flag off freight train services from New Sanand, New Makarpura, New Umbargaon and New JNPT Mumbai. The Prime Minister will also lay the foundation stone for three railway projects costing more than 9,700 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah today chaired the 28th meeting of the Western Zonal Council at Panaji in Goa. Addressing the gathering, Mr. Shah said there are no longer any disputes amongst the states of the Western region, which is a major achievement. He emphasized that the zonal councils have evolved from forums for dispute resolution into platforms for monitoring the implementation of public welfare schemes. Mr. Shah said that all the issues discussed in today's meeting were related to the monitoring. He noted that several disputes between states over rivers have also been resolved in the zonal council. The meeting was attended by Goa Chief Minister Pramod Sawant, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, and Administrator of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Praful K. Patel. Union Minister of State for Petroleum and Natural Gas Suresh Gopi today said that the centre has asked the oil marketing companies, OMCs, to uniformly implement the revised LPG refill booking interval of 25 days in both urban and rural areas immediately. In a social media post, Mr. Gopi said that in view of the current LPG supply situation improving and the significant reduction in refill backlog, the central government has relaxed this restriction. He said, now all domestic LPG consumers, regardless of urban or rural, can book refills at an interval of 25 days. The Election Commission today announced bipoll to Nagaon Lok Sabha seat in Assam. It has also announced assembly bipolls for two seats each in Tamil Nadu and West Bengal and one seat in Puducherry. Reigning world champion Sheetal Devi has confirmed